FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 2 जुलाई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थयात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल

0: का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं क्षमा का महत्व पर विचार।
2: क्रोध पाप का मूल है, इसे हम सब अनुभव करते हैं। क्रोध में हिंसा का वास होता है और हिंसा विनाश की जननी है। हिंसा के वातावरण में घर परिवार, समाज, यहाँ तक कि राष्ट्र भी विनष्ट हो जाता है। क्रोध को जीतने का एकमात्र उपाय है क्षमा भाव। महाभारत में क्षमा का महत्व प्रकट करते हुए कहा गया है, द्वाभिमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरितिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्। तात्पर्य यह है, ऊंचे स्वर्गादि लोगों में 2 प्रकार के व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। एक तो वह व्यक्ति जो दरिद्र व निर्धन होता हुआ भी दूसरे को कुछ देता है, और दूसरा वह व्यक्ति जो सामर्थ्यवान एवं शक्तिशाली होते हुए भी दूसरों के प्रति क्षमा भाव बनाए रखे। क्षमा धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध जैनाचार्य आचार्य कुंभकुंड ने कहा है, को हुपत्तिस्स पुनो बहिरंगम यदि हवे विसखादम अनकुनदि किंच विकोहो तस्स क्षमा हो दिधम नोति। तात्पर्य यह है कि क्रोध की उत्पत्ति का बाहरी पर्याप्त कारण होते हुए भी क्रोध का भाव मन में उठे ही नहीं, ऐसी मानसिक शांति वाला व्यक्ति ही महान धार्मिक गुण क्षमा का धारक कहा जा सकता है। महाभारत के प्रसिद्ध चरित्र नायक चरितपात्र तथा महान कुशल नीतिज्ञ महात्मा विदुर जी ने क्षमा के महात्म्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है, क्षमा गुणो यशक्तानाम शक्तानाम भूषणम क्षमा शांति खड़गो करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा। अर्थात क्षमा जहाँ दुर्बल व्यक्तियों के लिए आवश्यक व उपयोगी गुण है, वहाँ वह समर्थ व शक्तिशाली लोगों का सुंदर आभूषण भी है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका कोई दुर्जन विदार ही क्या सकता है। प्राचीन भारत के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने भी क्षमा के विषय में सुंदर विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं, क्षमा तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न च तृष्णा परो व्याधिः न च धर्मो दयापरः। अर्थात जैसे तृष्णा के समान कोई व्याधि या बीमारी नहीं होती, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और संतोष के समान कोई सुख नहीं होता, वैसे ही क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में शांति व क्षमा पर जोर देते हुए कहा था, नहीं वेरेण वेराणि सम्मन्ति कदाचन अवेरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। तात्पर्य है, यह एक सनातन धर्म अर्थात अटल नियम है कि वैर से वैर की समाप्ति नहीं की जा सकती। वैर से तो वैर की परंपरा बढ़ेगी ही। शत्रुता या वैर को समाप्त करने का यही उपाय है कि वैरी या शत्रु के प्रति अपने मन से शत्रुता के दुर्भाव को ही हटा दिया जाए। क्षमा गुण रूपी वृक्ष का पौधा निरभिमानता व सहनशीलता की भूमि में ही पनप सकता है, इसलिए महाभारत में कहा गया है, अतिवादांस्तिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत्। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि कोई कुछ बुरा भला कहे तो उस पर क्रोध करने की बजाय सहनशीलता का ही प्रदर्शन करे, किसी भी परिस्थिति में अभिमान को प्रकट न करे, और कोई ऐसी बात कह भी दे जिस पर क्रोध आना स्वाभाविक हो तो कहने वाले को प्रिय व हितकारी वचन ही कहे। वस्तुतः

0: क्षमा तो सत्पुरुषों का एक स्वाभाविक गुण है, इसीलिए महाभारत में कहा गया है अक्षमाया क्षमायाश्च प्रियाणि हा प्रियाणि च क्षमते सम्मतः साधु साध्ववाप्नोति सत्यवाक्। अर्थात वही व्यक्ति सत्पुरुषों की श्रेणी में परिगणित होता है और सत्य का साधक कहलाने का अधिकारी होता है जो न सहने लायक व्यवहारों में अप्रिय वचनों को सुनकर भी क्षमाशील रहता है और पूर्ण रूप से अवचलित रहता है।
1: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे क्षमा का महत्व पर विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

कृष्ण मुरारी की छवि में ऐसा अद्भुत प्यार समाया है, जिसने देखा प्रेम से उनको उसने सारा जग भुलाया है। उनकी मुरली की एक तान मन को मोहित कर जाती है। श्याम की छाया, श्याम की कृपा की छाया में हर सोने राह मुस्कुराती है।

श्री राम चरणों में झुकते ही मन को विश्राम मिल जाता है, भटके हुए इस जीवन को सच्चा धाम मिल जाता है। जहाँ राम के चरणों की भक्ति हृदय में उतर जाती है, वहाँ हर एक सांस मर्यादा और प्रेम से भर जाती है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मत कर मोह तू जगत से हरि भजन को मान रे, ये माया का मेला झूठा प्रभु नाम पहचान रे। धन दौलत सब यही रहेगा साथ न कुछ भी जाएगा, हरि नाम का सच्चा सहारा ही भवसागर से पार लगाएगा।

सुबह सुबह ले शिव का नाम, मन को सच्चा आराम मिले, भोले की छाया में हर पल शुभ परिणाम मिले। जटाधारी का स्मरण करते ही मन निर्मल हो जाता है। महादेव का नाम सुबह सुबह जीवन को शिवमय बनाता है।

मैं तो प्रेम दीवानी प्रभु की और न दूजा कोई, तेरे चरणों में पाया सुख जो जग में मिला ना होई। सांस सांस में तेरा नाम, नैनों में तेरा धाम, अब तो मेरा जीवन ये सारा हो गया है प्रभु, बस तेरे नाम।

इसी भजन के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने सूर्य गायत्री, लालिति मनशाव, अनूप जलोटा, ए हरिहरन और अनुपमा देशपांडे के गाय भजन सुने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं आज की बात। आज की बात सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 2 जुलाई और आइए जानते हैं इतिहास में आज के दिन की खासियत। श्रोताओं, हर साल 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं और ब्रह्मांड में पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, ये दिन पहली बार 2001 में UFO शोधकर्ता हक्तान अक्दोगन द्वारा मनाया गया था। 2 जुलाई की तारीख चुनने का मुख्य कारण 1947 की प्रसिद्ध रॉसवेल घटना है। इस दिन न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक रहस्यमय वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसने दुनिया भर के अंतरिक्ष प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। श्रोताओं, ये दिवस आम जनता को ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने की ओर सरकारों से UFO और UAP से जुड़ी गुप्त फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

श्रोताओं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की आज पुण्यतिथि है। इनका संक्षिप्त शासनकाल 1756 से 1757 आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव पड़ी। श्रोताओं, अप्रैल 1756 में अपने नाना नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद युवा सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी अनुमति के बिना कलकत्ता में किलेबंदी करने और मनमाने तरीके से कर लगाने से रोका। नवाब के खिलाफ ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने एक गहरी साजिश रची। उन्होंने नवाब के मुख्य सेनापति मिर्जाफर को भारी धन और नवाब का ताज देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में नवाब की सेना के बड़े हिस्से ने मिर्जाफर के इशारे पर युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हुई। युद्ध के बाद नवाब को पकड़ लिया गया और 2 जुलाई 1757 को क्रूरतापूर्वक इनकी हत्या कर दी गई। श्रोताओं, लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम विद्या बिंदु सिंह का जन्म 2 जुलाई 1945 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, लोकगीत, हर विषय पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको अवधी लोक साहित्य के लिए सराहना मिली है। इसमें अवधी भाषा के लोकगीत, मुहावरे, राम से जुड़े कई ऐसे प्रसंग भी हैं जिनको सिर्फ कहा और सुना जाता रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वधुमेध, सच के पांव, अमर बल्लरी, कांटू कवन, वापस लौटे नीर, पलछिन, तुमसे ही कहना है और हम पत्थर नहीं हुए आदि। साहित्य में इनके योगदान हेतु इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्रोताओं, भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने मुख्यतः बंगाली, ओडिया और हिंदी फिल्मों में गाने गाए। इनकी पहली हिंदी फिल्म अंबर थी, जो 1984 में रिलीज हुई थी। श्रोता, मोहम्मद अजीज ने पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के लिए मर्द टांगे वाला गीत गाया था। मोहम्मद अजीज ने अलग अलग भाषाओं में 20,000 से अधिक गाने गाए। खुदगर्ज फिल्म का मशहूर गाना आपके आ जाने से अजीज साहब ने ही गाया था। श्रोता, मोहम्मद अजीज ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति जैसी मशहूर गायिकाओं के साथ युगल गीतों में अपनी आवाज दी। इनके प्रसिद्ध गीत हैं आपके आ जाने से, कागज कलम दवा तला, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, मेरी तो अनमोल रतन, मायने में लखन और तुझे रब ने बनाया होगा आदि। 27 नवंबर 2018 को मोहम्मद अजीज इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्रोताओं, अमेरिकी उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और पत्रकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 21 जुलाई 1899 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इनकी आर्थिक और अल्पसंख्यक शैली, जिसे हिमशैल सिद्धांत कहा जाता था, इसका 20वीं शताब्दी की कथाओं पर एक मजबूत प्रभाव पड़ा। 1954 में इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फॉर होम द बेल टॉल्स, द रिवर एंड इन टू द ट्रीज, इन ओवर टाइम, सन ऑल्सो राइजेज, मैन विदाउट वुमन और द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका आदि। 2 जुलाई 1961 को अर्नेस्ट हेमिंग्वे का निधन हो गया। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बचपन का वो दौर याद कीजिए जब भारत का मैच होता था और हम सब रेडियो से कान सटाकर बैठ जाते थे और बैकग्राउंड से आवाज आती थी, गेंद हवा में है और ये रहा गगनचुंबी छक्का। श्रोताओं, मैदान पर खिलाड़ी दौड़ता था लेकिन धड़कने घर बैठे करोड़ों श्रोताओं की बढ़ जाती थी। श्रोताओं, खेल का मैदान चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो या फिर ओलंपिक का, उस रोमांच को, उस जीत और हार के आंसुओं को शब्दों में पिरोकर हमारे घरों तक जो पहुंचाते हैं उन्हें हम कहते हैं खेल पत्रकार यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। श्रोताओं, आज 2 जुलाई को पूरी दुनिया विश्व खेल पत्रकार दिवस मना रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि खेल की दुनिया के इन अंपायरों और कमेंटरों के इस दिन की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई थी। श्रोताओं, इस दिन का इतिहास पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। बात है साल 1924 की, जब पेरिस में ओलंपिक खेल चल रहे थे। उसी दौरान दुनिया भर से आए खेल पत्रकारों ने महसूस किया कि खेलों को बढ़ावा देने और पत्रकारों के अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए और इसी सोच के साथ 2 जुलाई 1924 को

नेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके ठीक 70 साल बाद यानी साल 1994 में इस संस्था की वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने की घोषणा की गई। तब से लेकर आज तक हर साल 2 जुलाई को ये दिन मनाया जा रहा है ताकि खेल पत्रकारों के काम को सराहा जा सके और नई पीढ़ी को खेल पत्रकारिता को एक बेहतरीन करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया जा सके। श्रोताओं, एक खेल पत्रकार की जिंदगी बाहर से जितनी चमकीली और ग्लैमरस लगती है, कैमरे और माइक के पीछे की हकीकत उतनी ही कड़ी मेहनत से भरी होती है। जब खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाते हैं तो खेल पत्रकार स्टेडियम के कोने में बैठकर हर एक सेकंड की गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं। चाहे कड़कड़ाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड, वे बिना रुके बिना थके रिपोर्टिंग करते हैं। श्रोताओं, आज साल 2026 के इस दौर में जहां पल पल में डिजिटल मीडिया पर खबरें बदलती हैं, एक खेल पत्रकार पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबर देने का भारी दबाव होता है। मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी आराम करने चले जाते हैं तब ये पत्रकार रात रात भर जाकर विश्लेषण लिखते हैं, खिलाड़ियों के इंटरव्यू लेते हैं और आंकड़ों का ताना बाना बुनते हैं। वे सिर्फ खेल नहीं दिखाते, वे खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी को दुनिया के सामने लेकर आते हैं। श्रोताओं, जब बात खेल पत्रकारिता की हो तो आकाशवाणी का जिक्र किए बिना ये बात अधूरी है। दूरदर्शन और इंटरनेट के आ जाने से बहुत पहले आकाशवाणी ने ही भारत के कोने कोने में खेल को पहुंचाया और अनेक ऐसे महान कमेंटर हैं जिनकी आवाज में देश के करोड़ों लोगों को खेल का दीवाना बनाया। इन्होंने अपनी आवाज से रेडियो सुनने वालों की बंदाखों के सामने पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। श्रोताओं, आज का ये दिन उन सभी दिग्गजों को भी नमन करने का दिन है जिन्होंने खेल पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दी। श्रोताओं, आज खेल पत्रकार सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं रह गया बल्कि हमारी महिला पत्रकार भी खेल के मैदान में बेहतरीन और बेपाक रिपोर्टिंग करके क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। श्रोताओं, आज आप समाचार पत्रों में खेल का पन्ना पढ़ें या टीवी पर कोई मैच देखें तो खेल के उन नायकों के साथ साथ कलम और माइक के इन सिपाहियों को भी मन ही मन शुक्रिया जरूर कहिएगा। तो श्रोताओं, चलते चलते ये खूबसूरत पंक्तियाँ हमारे उन पत्रकारों के लिए, मैदान की हर हलचल को जो शब्दों में ढाल देते हैं, खिलाड़ी के हर जज्बे को जो नया मुकाम देते हैं। सलाम है खेल पत्रकारिता के उन जाबाजों को जो हार जीत के हर लम्हे को इतिहास बना देते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विविधा समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृसूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन्ड कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनाङ्कात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और

0: अर्धकुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज अपराह्न 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अमल एंटनी का सुगम संगीत और मार्गी मधु का लोक संगीत। श्रोताओं, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से 142वां प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:23 पर और शलसर कार्यक्रम में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दोपहर 2 बजे। प्रातः 7:40 पर हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वन महोत्सव पर पर्यावरण प्रेमी व स्तंभकार श्री कमल कुमार जोशी से संजय जोशी की भेंट वार्ता। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 8:30 पर। मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सब रंगों का सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दोपहर 1:15 पर और सब रस रात्रि 8:00। दोपहर 12:30 पर अर्पण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा वन रहेंगे तो हम रहेंगे। साथ ही सुनिएगा धरा के श्रृंगार का उत्सव वन महोत्सव विषय पर सुश्री हेमा नेगी व दीपा मिश्रा वनारक्षी अल्मोड़ा वन प्रभाग से मंजू बोरा की बातचीत। दोपहर 1:30 पर सुनिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1319वीं कड़ी। दोपहर 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां एवं खेती विषय पर डॉक्टर शिवदयाल की वार्ता।

शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा विश्व खेल पत्रकार दिवस। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा विश्व खेल पत्रकार दिवस। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शाम 7:00 किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा धान के खेत में खाद की मात्रा व मिट्टी की जांच और खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, चर्चा का विषय होगा वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता। धरोहर कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 9:30। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में सुबह 9:05 पर। सुरबहर कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में सुबह 11:00। मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12:00। एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में अपराह्न 3:00। फिल्म संगीत कार्यक्रम में शाम 7:40 पर और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री राम चरितमानस से 142वां प्रसंग।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवा कर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं

ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

0: श्री रामचरितमानस से अभी आप सुन रहे थे 142वां प्रसंग। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। अब समाचार रिलीज किए जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रदेश के 66 स्थानों में राज्यस्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत संचालित परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश। और देहरादून के जिलाधिकारी ने कोरोनेशन अस्पताल के औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी ताकि चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित डॉक्टर ऑफ द ईयर सम्मान समारोह में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के अंत तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए अलग कैडर भी बनाया जाएगा। समारोह में इस वर्ष 32 चिकित्सकों को

0: डॉक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से 3 चिकित्सकों को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड और 3 चिकित्सकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कल देहरादून में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक केवल रोगों का उपचार नहीं करते बल्कि समाज में विश्वास और नई आशा का संचार भी करते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका त्याग सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और लगभग 12 लाख मरीजों को 2,300 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सकों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी चिकित्सक के साथ हिंसा या अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चमोली जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ने इस वर्ष पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद दर्ज की है। घाटी खुलने के बाद से एक माह के भीतर 7,294 पर्यटक यहां पहुंचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है।
1: पिछले एक माह में 7,260 भारतीय और 34 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी पहुंचे। प्रवेश शुल्क से लगभग 11,06,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष जून माह में 3,898 पर्यटक आए थे और लगभग 7,80,000 रुपए का राजस्व मिला था। वन विभाग के अनुसार इन दिनों घाटी में विभिन्न दुर्लभ हिमालयी पुष्पों के खिलने से प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। पार्क प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। प्रवेश द्वार पर पर्यटकों को प्लास्टिक मुक्त यात्रा और पार्क के नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। वन विभाग का कहना है कि मानसून के दौरान जुलाई और अगस्त में फूलों की घाटी अपनी पूर्ण रंगत में होती है। ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से डॉक्टर विनोद पोखरियाल।
0: प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत संचालित परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कल देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर आवासीय वातावरण देना है।
2: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कल रात कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी, अव्यवस्था और कई अनियमितताएं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की संयुक्त समिति गठित कर रिपोर्ट तलब की गई है। निरीक्षण के दौरान आईसीयू में एयर कंडीशनर बंद मिला जबकि दवाओं के स्टॉक रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर में भी कई खामियां पाई गई। जिलाधिकारी ने अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने वार्डों में गंदगी, फटे कंबल, लिफ्ट में सीसीटीवी की अनुपस्थिति और अन्य व्यवस्थागत कमियों पर भी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अस्पताल की सभी कमियों को तत्काल दूर करने तथा मरीजों को बेहतर और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हरेला पर्व के तहत इस बार देहरादून जिले में 15,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जुलाई से शुरू होने वाला हरेला अभियान एक माह तक चलेगा। इस दौरान पौधारोपण के माध्यम से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान का कहना है कि यह अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन बनेगा। इसके लिए सभी विभागों को रोपण स्थलों का चयन कर माइक्रो स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की निगरानी के लिए विशेष हरित कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। वन विभाग के अनुसार लगाए जाने वाले पौधों में 50% फलदार और चारा प्रजाति के होंगे तथा उनके संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी अगले 5 वर्षों तक तय की जाएगी। सभी विभागों को 10 जुलाई तक गड्ढों की खुदाई, जैविक खाद, ट्री गार्ड और पौधों के परिवहन की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक इस वर्ष कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों को 25 जुलाई तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने विद्युत, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, कांवड़ पटरी मार्ग की झाड़ियों की कटाई, पेड़ों की लोपिंग तथा अन्य तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर सड़क से निर्माण सामग्री हटाने के लिए भी कहा गया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने तथा सभी विभागों के समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश में अल्पसंख्यक प्राधिकरण बोर्ड के गठन को लेकर सभी समाचार पत्रों के ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, एम राष्ट्र एक शिक्षा की दिशा में उत्तराखंड ने बढ़ाए कदम। अमर उजाला ने लिखा, मदरसा बोर्ड खत्म, शिक्षा प्राधिकरण देगा नए मौके। प्रदेश में परिवहन को लेकर प्रकाशित खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, रोडवेज को 814 नई बसें खरीदने को मंजूरी। प्रदेश में झमाझम बारिश जारी है। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, 5 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में SIR की प्रगति पर नवोदय टाइम्स ने लिखा है, SIR अब मतदाता सूची पर दावों और आपत्ति का दौर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज प्रदेश के 66 स्थानों में राज्य स्तरीय मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी। चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत संचालित परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश। और देहरादून के जिलाधिकारी ने कोरोनेशन अस्पताल के औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डूंगर राम और गंगा राम के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: डोंगर राम और गंगा राम के गाए से जोड़े के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा लोक मंजरी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वन महोत्सव पर पर्यावरण प्रेमी व स्तंभकार श्री कमल कुमार जोशी से संजय जोशी की भेंट वार्ता।
1: श्रोताओ, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पर्यावरण प्रेमी और उत्तराखंड सेवा नीति में पूर्व कार्यरत, साथ ही धार्मिक पर्यटन के लेखक, गांवों की संस्थाओं और विद्यालयों से जुड़कर पर्यावरण जागरूकता अभियानों में शामिल होकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, तो ऐसे ऊर्जावान हमारे बीच कमल कुमार जोशी जी हैं। जोशी जी, हम बातचीत करेंगे आज क्योंकि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो सप्ताह मनाया जाता है वो वनोत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो वनों का क्या महत्व है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ हमारे उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में घूमे हैं। बात यहीं से शुरू कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वनों का क्या महत्व है।
2: जहाँ तक वनों के महत्व की बात है, वो उत्तराखंड में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। वन ही है तभी हमारा पर्यावरण है, वन है तभी हमारी जलवायु का संतुलन है। वन से ही वर्षा होती है, वन ही जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी, उसको बनाए रखते हैं, और वन से ही हमारा जो तापमान है वह एक संतुलित होता है
1: जी। जब ये वन महोत्सव मनाते हैं तो उस वक्त ये सीज़न ऐसा होता है जब सारी संस्थाएं जुड़ करके जगह जगह प्लांटेशन का कार्य करती हैं, और सभी लोग इस सप्ताह आपको जुड़ते मिलेंगे, मीडिया भी कवरेज देगा उसको। लेकिन एक तरफ हम वनों के बढ़ाने की बात करते हैं, वन जो जिनका की क्षेत्रफल कम होते जा रहा है दिनों दिन, और जब वनाग्नि की घटना होती है तो वो एक अलग ही दृश्य होता है।
2: सवाल बहुत अच्छा है। जब 1950 में

0: वन महोत्सव को मनाने की शुरुआत हुई, तब अलग से कोई पर्यावरण मंत्रालय नहीं होता था, एक कृषि एवं खाद्य मंत्रालय होता था
1: जी हाँ।
0: तो के एम मुंशी जी थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। उस समय जो वन का क्षेत्रफल था, भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 14% था, और अभी वर्तमान में जो बताया जाता है लगभग 25% के आसपास बताया जाता है। तो ये थोड़ा वन क्षेत्र तो इससे बढ़ा होगा, जो वन महोत्सव हमने पेड़ लगाए थे सालों में, इसमें कोई तथ्य है ये। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ से हम पेड़ लगाते हैं और ये जो महोत्सव मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से पेड़ बहुत कट रहे हैं जो आवश्यकताओं के लिए विकास के नाम पर
1: जी।
0: और एक बात ये मुझे लगती है, क्या कहेंगे, विरोधाभास भी कह सकते हैं, कि जैसे कि वन महोत्सव है ना, कोई महोत्सव होता है तो लोगों का जुड़ाव उसमें होना आवश्यक है, जैसे लोगों का महोत्सव होना चाहिए। लेकिन वन महोत्सव मुझे जो लगता है ज्यादा एक सरकार का या वन विभाग का उत्सव बन के रह जाता है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, जो अपने आप मनाते हैं लोग अपने आप, यहाँ तक कि जैसे तीर्थाटन है,
1: अंदर से आते हैं मनाने के लिए, अंदर से आता है,
0: कहते हैं मन से नहीं आएगी ना तो वो चीज उतना होती नहीं टिकाऊ। जैसे हम अभी टारगेट होते हैं हम लोगों के, इतने पेड़ लगाएंगे, इतने लाख, ये तो टारगेट्स पे, लेकिन कितने लगे इसका महत्व नहीं है, कि बचे कितना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे पेड़ हमने आज लगाया तो उसका बहुत ही कम सर्वाइव होता है, बहुत ही हो सकता है 10% हो, 20% हो, लेकिन जो पेड़ कट रहे हैं वो कोई 50 साल पुराने हैं, कोई 100 साल या उससे भी ज्यादा पुराने बड़े पेड़ हैं।
1: जी हाँ।
0: तो ये एक विडंबना कहें या फिर विरोधाभास कहें।
1: जी देखिए, एक बहुत अच्छी शुरुआत तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी की, एक पेड़ माँ के नाम पर, एक छोटी शुरुआत उसको मानेंगे। और आज यहाँ पर तो लाखों करोड़ों की संख्या में सैपलिंग लगाए जाएंगे वन महोत्सव के दौरान। बात वही आती है कि एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं, एक तरफ जो भयावह वनाग्नि हम देखते हैं हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की, तो वो बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है।
0: बिल्कुल, जहाँ तक वनाग्नि की बात है तो इसमें देखते देखते पता कुछ ही दिनों में बहुत ही बड़ा वन क्षेत्र खत्म हो जाता है। और वनों के अलावा पेड़ हैं, नीचे झाड़ियाँ हैं, फिर उसमें जो वन्य जीव हैं उन सब का, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको क्या होता है कि जैसे जागरूकता लोगों में कमी, जैसे अभी बात आई ना कि जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि जंगल उनके हैं
1: जी,
0: पहले शायद ये भावना थी जब वन विभाग और सरकार नहीं थी, इतने वन कानून नहीं थे। अब जैसे जैसे हमने जंगलों को बचाने के लिए वन कानून बनाए, लेकिन लोगों को उससे जंगलों से अलग कर दिया इन कानूनों ने, क्योंकि विभाग आ गया अलग से, तो लोगों को लगा कि जंगल तो वन विभाग के हैं। और उन्होंने भी ऐसा जताया लोगों को कि जंगल के मालिक हम हैं, तो अगर तुम्हें अपने जंगल से जो कि उनके गांव में चाहिए बुनियादी आवश्यकता के, आपको लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, हक हकूक हैं जो पहले से चले आए थे वो सब सीमित हो गए या कम हो गए या खत्म हो गए। अब लोगों को क्या हुआ कि आपको सूखी लकड़ी भी लानी है, आप नहीं ला सकते, तो फिर आपका लगाव कैसे होगा, जो आपसे कोई संबंध खत्म हो जाएगा किसी चीज से। फिर अचानक जंगलों में आग लगी, तब जो सरकार या वन विभाग कहते हैं लोगों से कि आप आग बुझाओ, तो लोग नहीं जाते लोगों का, क्योंकि जुड़ाव ही नहीं है
1: जी। हम अल्मोड़ा के क्षेत्र के आसपास देखते हैं जब वनाग्नि होती है तो सामने चाहे वो कसार देवी का जंगल हो, चाहे शाही देवी का जंगल हो, अक्सर धुआं उठता रहता है, बुरा सा भी लगता है। कुछ कंट्रोल की बात भी की जाती है, आप कहेंगे कि सरकारी महकमा अपनी तरफ से प्रयास भी करता रहता होगा, लेकिन आज बुझी तो कल दोबारा शुरू हो जाती है। तो
0: इस पे ऐसा है कि जैसे आग लग गई तो आग लगने से बचाना बहुत आसान है, जैसे अगर लोग शामिल होंगे तो आग लगेगी नहीं, क्योंकि जो भी आग लगाने वाला होगा उसको देखेंगे वो, और उनमें समझ भी ऐसी पैदा होगी या होनी चाहिए कि जंगलों को आग से बचाना है। और ये भी होता है कि जैसे आग लग गई तो स्थानीय कोई लोग हैं वो तत्काल वहाँ जा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं, और जब आप शुरुआत में बुझा सकेंगे तो संभव है, लेकिन जब आग भड़क गई, फैल गई, तो फिर आपके लिए संभव नहीं होगा। अगर वन विभाग वाले आएंगे वो बिल्कुल स्थानीय तो होते नहीं है, उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा पहुंचने में, और तब तक आग बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, फिर बहुत ज़्यादा संसाधन, बहुत ज़्यादा समय उसमें व्यय हो जाता है और जंगल नष्ट हो जाते हैं।
1: सरकार द्वारा ऐसे लोगों को भी पुरस्कृत किया गया जिन्होंने अकेले दम पर एक उजड़े हुए इलाके को चमन बना दिया, जंगल बना दिया। तो ऐसे लोग भी इस संसार में हैं, इस भारतवर्ष में हैं,
0: बहुत लोग हैं। उत्तराखंड में भी बहुत लोगों में ऐसे जानता हूँ। एक तो टिहरी गढ़वाल में थे, अब वो नहीं है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, उनके संबंध में ऐसे कहा जाता था कि 1 करोड़ पेड़ लगाए उन्होंने, हो सकता है कि लाखों में ही होंगे, लेकिन उन्होंने लगाए थे। उनसे मैं मिला भी था बहुत साल पहले, तब बूढ़े थे, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पेड़ों को बचाने का काम शुरू किया तो बहुत से स्थानीय लोग भी उनसे नाराज हो गए थे और उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए थे लोगों ने।

0: हमला करके, क्योंकि जंगल में फिर वो कहते थे कि मवेशियों को मत ले जाओ, तो लोग कहते तो ले जाते थे तो ऐसे झगड़ा हो जाता था, लोगों ने उन पर हमले भी किए। और यहाँ जगत सिंह जंगली थे कर्णप्रयाग में, और ये पिथौरागढ़ के पास डीडी हाट में एक वो दामोदर सिंह राठौर जी थे
1: जी,
0: वो सेना में थे पहले भारतीय सेना में, उन्होंने भी लाखों पेड़ लगाए थे अपने इलाके में, बहुत अच्छा जंगल उन्होंने बनाया था।
1: देखिए जंगल है तो जलवायु है, नहीं तो आजकल जिस जलवायु परिवर्तन की भयावह से हम गुजर रहे हैं और एक्सट्रीम रेनफॉल हम कहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, ये सब कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं। एक छोटी सी बात करता हूँ, और कि जब ये हम चार धाम यात्रा की बात करते हैं और हाईवे को चौड़ीकरण की बात आती है, सरकार के अपने प्रोजेक्ट हैं, उस दौरान भी पेड़ों की कटान हो रही है।
0: बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा हुई है, मेरे ख्याल से इतने हजारों पेड़ कटे हैं, जैसे गंगोत्री में जाएँ, केदारनाथ की तरफ भी आप देखें, और यही वही भूमि है उत्तराखंड जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए, लोग पेड़ों से चिपक गए थे ऐसा बताया जाता था एक्चुअल में जो भूमि हो। हालांकि जो सच में बहुत लोग कहते हैं कि ये पेड़ों को बचाने से ज़्यादा अपने जो हकों के लिए था चिपको आंदोलन, लेकिन आज कोई ऐसी आवाज़ वहाँ से नहीं उठती और जब लोकल लोगों की, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सड़क चौड़ी होंगी तो रोजगार आएगा, पर्यटन आएगा, विकास आएगा, तो लेकिन ये बहुत ही विडम्बना है, बहुत ही खराब स्थिति है कि पेड़ इतने ज़्यादा जब कट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिसको क्षति की भरपाई नहीं हो सकती।
1: देखिए पेड़ है तो हम पता चलता है कि हमारे यहाँ की एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, जो हमारा जैव विविधता का भी संरक्षण रहता है, हम कहते हैं हमारी जो मृदा होती है उसका भी क्षरण कम होता है,
0: बिल्कुल,
1: और एक जो वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता है, ये सब इनके बेनिफिट्स हैं जो है, तो थोड़ा सा हमें इसे विस्तार, आपने गांव गांव में काम किया इस मामले में, तो आप बताएं जरा।
0: जैसे लोगों को समझने भी चाहिए ये चीजें, जहाँ जहाँ जैसे कहते हैं ना कि जंगल है वहाँ पानी ज्यादा है, तो इस बारे में कभी कभी लोगों में थोड़ी भ्रांति हो जाती है, गाँव में भी पढ़े लिखे लोगों में भी हो जाती है, लोग कहते हैं कि बांस के पेड़ अपनी जड़ों से पानी छोड़ते हैं इसलिए पानी ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है जहाँ पेड़ होंगे तो वहाँ जब वर्षा होती है तो पानी तो उससे ही आता है ना, तो पेड़ों पर पहले आएगा फिर धीरे धीरे टपक के जमीन में आता है, इसके अलावा जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं जमीन में भिज जाती हैं, तो एक तरह से ह्यूमस होती है तो वो एक स्पंज जैसी बन जाते हैं, तो पानी को सोखने की क्षमता जमीन की बहुत बढ़ जाती है, तो जंगल में खूब पानी होगा, मृदा होगी। और इसके अलावा पहाड़ों में जो खेती है वो भी जंगलों के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि जंगल से ही आपको खाद मिलती है, जंगलों से फिर पानी बढ़ता है, पानी के स्रोत होते हैं, ऐसे ही अगर बैल, पहले अब तो कम हो गए बैल, लेकिन जैसे जुताई के लिए बैल चाहिए तो उनको भी खाने के लिए जो भोजन मिलेगा जंगलों से ही मिलेगा, या मकान बनाने के लिए लकड़ी है, जलाने के लिए लकड़ी है
1: जी,
0: कितना ही भी चाहे कम करें, अभी कम हो गया है ये अब क्योंकि गैस आ गई है गाँव में, ट्रैक्टर आ गए, लेकिन अभी भी जंगलों के बिना पहाड़ों में गाँव का जीवन संभव जैसा नहीं
1: जी। हमारे नौले हैं वो भी सूख रहे हैं, और उसके पीछे देखा जाए तो वो ये कि पेड़ अंधाधुंध कटान हुए और फिर नौला कहाँ जीवित रहेगा, क्योंकि आपने ग्रामीण क्षेत्र में काफी काम किया तो लोगों से आप मिले भी होंगे, बातचीत भी होगी, पर्यावरण जागरूकता के लिए आप लोगों को जाते थे, तो क्या समझाते थे, कैसे लोग और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता था?
0: तो पहले से यहाँ पर थोड़ा आंदोलन हुए जैसे चिपको आदि, तो लोगों में थोड़ी जागरूकता तो है, बल्कि गढ़वाल में काफी ज्यादा दिखती है पेड़ों को बचाने की
1: जी,
0: तो बहुत जगह, लेकिन कहीं कहीं ये अति भी ऐसी हो जाती थी कि लोग जंगल को बचाते थे, लेकिन इसलिए बचाते थे कि लोगों को दिखा सके बाहर के लोगों की, देखो हमारे गांव का इतना अच्छा जंगल है, लेकिन ये भी शायद ठीक नहीं है, जो एक सही दृष्टिकोण है संतुलित वो ये होना चाहिए कि पेड़ को उपयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसे उपयोग होना चाहिए टिकाऊ उपयोग कहते हैं, जिसमें कि आपका बचा रहे जो मूलधन बचा रहे उसके ब्याज को हम खर्च करते हैं जैसे तो उतना ही जंगल को काटना ही चाहिए ताकि खत्म नहीं हो जंगल का विनाश, तो ये सोच आवश्यक है। और इसके अलावा जैसे किताबों में बच्चों ने पढ़ते ना स्कूल की, तो जंगल का क्या महत्व है, तो बच्चे उसको ज़्यादा सीखते थे, हमने देखा गांव में कि जंगल क्यों होने चाहिए, तो वो कहेंगे जंगल से ऑक्सीजन मिलता है हमें, इसके आगे को नहीं जाते थे, लेकिन जैसे तत्कालिक किसी गांव की महिला से आप पूछेंगे जंगल क्यों बचाने चाहिए, तो वो बता सकती है कि जंगल से मुझे गाय के लिए पत्तियाँ मिलती है, घास मिलती है, और जंगल से जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, ये मिलती है, तो ये समझ थोड़ी आवश्यक होती है लोगों को समझाना कि क्यों बचाना है, क्योंकि बिना बात के नहीं बचाएगा, जैसे कोई कहते भी हैं कि ना मुर्गी को दाना खिलाते हैं लेकिन कौवे को नहीं खिलाते, तो इसीलिए जंगल को लोग तब बचाएंगे जब जंगलों से उनको कुछ मिलेगा
1: जी।
0: चेपको में जैसे गाँव की महिलाएं कहती थी कि जंगल हमारा मायका है, तो शायद ये मायका इसलिए होगा कि जब जब हमें कुछ चाहिए मायके से, जैसे कोई महिला लाती है अपने,
1: ऐसे प्रयास तो और भी वे में कई, जब माइका की बात आती है
0: मैथी आंदोलन,
1: हाँ मैथी, मैं उसी बात कर रहा था कि जब हाँ
0: वो ये जो ग्वालदब के पास थे एक वो शिक्षक
1: कल्याण सिंह,
0: तो वो शिक्षक थे वहाँ जीव विज्ञान के, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन चलाया मैथी नाम से, तो इसमें जब से कोई गाँव की लड़की है उसकी शादी होती थी तो शादी के समय वो दूल्हा दुल्हन मिलकर पेड़ लगाते थे और उसके मायके के लोग उस पेड़ को बचाते थे। इसके अलावा जो गांव की लड़कियां होती थी बाकी, तो इनके एक सम गांव में मैथी संगठन बने थे, तो वो भी पांच शालाएं बनाते थे, पेड़ लगाते थे। तो जैसे आपने कहा एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो लगभग वैसे ही भावनात्मक आंदोलन था और काफी इससे जंगल बढ़े और मतलब लोगों में इंटरेस्ट हुआ भावनात्मक। फिर बाद में उनको पद्मश्री सम्मान मिला था कल्याण सिंह जी को।
1: जी जी, तो ऐसी इसी तरह के लोगों की जो इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ते हैं, मैं कहूँगा उसी से कुछ जंगल बचते भी दिखते हैं और बढ़ते भी दिखते हैं हमारे ना।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वही बात आती है कि वन विभाग कहता है जंगल हमारा है और वहाँ के निवासी जो हैं उनके लिए वो जंगल पराया हो
0: जाता है। जब वो कहेंगे जंगल हमारा है, फिर आग जब लगती है तो उस समय वो लोगों से कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना।
1: तो अब वो समय आ गया है कि जब यहाँ पे सरकार या विभाग को लोगों के साथ मिलके चलने की जरूरत है, कुछ सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, कुछ हमारे कानूनों को भी ढीला करने की जरूरत पड़ेगी।
0: और ये बहुत ही विगत वर्षों में भी जब अंग्रेजों का शासन था तब भी बहुत जंगलों की समस्या आई थी, बहुत इसको लेके एक ग्रीवेंसेस कमेटी बनी थी, फर्स्ट ग्रीवेंसेस कमेटी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी और सब लोग थे। फिर उनकी जो रिपोर्ट आई 1921 में, उसके आधार पर फिर वन पंचायतें बनी 1931 में, तो थोड़े थोड़े अधिकार भी लोगों को दिए गए वन पंचायतों में ज़्यादा।
1: ऑल वेदर रोड की बात आती है, हजारों की संख्या में पेड़ कटते हैं हल्द्वानी में अभी बीच में, आपने देखा चौड़ीकरण हुए तो कहीं कहीं पे तो वो जैसे विदेशों में टेक्नोलॉजी लेकर के आया कि जड़ से ही पेड़ को निकाला गया है, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है और दूसरे के स्थापित किया गया।
0: लेकिन पता नहीं तो जीवित बचेंगे कि नहीं, ये भी एक सवाल होता है ना ट्रांसप्लांट करके, और बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे अभी शायद गंगोत्री में भी जितने पेड़ कटे उनमें से कुछ को शायद ऐसे करने वाले थे वो
1: जी,
0: लेकिन फिर उनको कितना सर्वाइव होंगे क्या होंगे बड़ा मुश्किल।
1: ये एक यहाँ पर हिंदुस्तान के परिवेश में स्टडी की जरूरत है, वैसे विदेशों में तो सर्वाइव करते
0: हैं। अच्छा तो है कि जितना ना काटा जाए वो सबसे अच्छा तो यही है कि कम से कम काटा जाए,
1: लेकिन अब विकास के नाम पर कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ती ही है कि थोड़ा बहुत कटान जरूरत पड़ती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि
0: क्योंकि विकास को है कैसे ये भी समझना, विकास भी बड़ी एक कठिन है समझना
1: जी हाँ,
0: क्योंकि सबके लिए अलग अलग विकास हो जाता है। जैसे अल्मोड़ा में ही आप देखें तो लोगों से पूछें विकास क्या है तो बहुत लोग कहते हैं यहाँ मॉल बन गया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो कितना विकास हो गया है, लेकिन बहुत से लोग को लगता है कि ये तो सब विनाश हो गया है अल्मोड़ा का।
1: बिल्कुल, हमने तो यहाँ पर दृष्टिकोण हो जाता है, यहाँ पर हरा भरा देखा था इस इलाके को, हम कह सकते हैं
0: बिल्कुल, जिन्होंने भी बचपन से देखा
1: जी, तो आज जो है काफी दूर से अगर ऊपर से देखें तो आपको सीमेंट और कंक्रीट के ही जंगल नजर आएगा।
0: बहुत लोगों को ये भी विकास लगता है बहुत लोगों को
1: जी। बच्चों को जो बताना है हमने, तो बच्चों को किस परिप्रेक्ष्य में बताएं कि इस वन महोत्सव का क्या महत्व है, कैसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हम तो जी लिए हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी तो कुछ चाहिए, बेहतर है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें।
0: अच्छा था कि बहुत जितने आसान ढंग से हम उन्हें बताएं, आसान शब्दों में, बहुत ही कठिन ऐसी कोई शब्दावलियां नहीं हो कि जंगल का क्या महत्व है, और वो किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए बल्कि जो बच्चा देख रहा है अपने आसपास उसको समझे, बल्कि सिखाना नहीं है कि उसको हमने ठूस दिया कि ज्ञान, तो जो जो बच्चा देख रहा है और जो अनुभव कर रहा है उसको दैनिक जीवन में जंगलों का महत्व वो समझाना चाहिए, एक तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है।
1: तो ये जो प्रयास अभी हम देखेंगे 1-7 तारीख के बीच में जो कुछ होगा, जगह जगह होगा, प्लांटेशन का कार्य होगा, वृक्षारोपण का कार्य होगा, हम समझते हैं इस वृक्षारोपण को हम और आगे ले जा सकें और वो जो भी हम वृक्षारोपण करें ज्यादा से ज्यादा हमारे वो पेड़ जीवित रहे
0: और लोगों के महत्व के भी होने चाहिए कौन सी प्रजाति के हैं। हालांकि अब समझा जाने लगा है कि चौड़ी पत्ती के पेड़ अब ज्यादा लगते हैं, चीड़ अब शायद बहुत कम हो गया है या बंद ही हो गया प्लांटेशन उनका
1: जी,
0: तो ऐसे ही जो जो महत्व के पेड़ है वो लगने चाहिए, लेकिन उनकी देखभाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लगा देंगे संख्या हो जाएगी कि हम कहेंगे कि देखो हमने एक दिन में इतने पेड़ लगा दिए या एक सप्ताह में इतने पेड़, लेकिन अगर बचेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है उसका। अभी तक जितने पेड़ लग गए हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर वो सब बचे होते तो आज जगह ही नहीं होती पेड़ों को लगाने की।
1: आज विकास के नाम पर हमारी सड़कें गांव-गांव तक पहुंच गई, लेकिन वहां पे भी नुकसान हुआ है, पेड़ों को नुकसान है तभी वो सड़कें पहुंची, तो वहां पर भी प्लांटेशन की जरूरत है और खासकर सड़कों के नजदीक प्लांटेशन, ये बहुत जरूरी मुझे लगता है, बहुत जरूरी है क्योंकि छाया उन्हीं से
0: भी, तापमान कहते हैं वैश्विक तापमान बढ़ गया, लेकिन जहां जहां आप देखेंगे अभी भी कई पेड़ हैं तो वहां पे तापमान बहुत कम होता है, और जहां जहां अभी नए जंगल भी कहीं बने हैं, जैसे मुझे जानकारी है कि हैदराबाद के पास एक कान्हा शांतिवनम नाम से बना है रेन फॉरेस्ट, कुछ साल पहले ही बनाया, लेकिन वहां अब ऐसे तथ्य आए हैं, उन्होंने स्टडी भी की है कि इससे तापमान बहुत कम हो गया है वहां का।
1: तो कमल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो कुछ पर्यावरण जागरूकता के संबंध में बात की और हमारे वन महोत्सव को लेकर के कुछ भ्रांतियां अक्सर हमारे साथ रहती थी, हम सोचते थे कार्य हो रहा है लेकिन कितना कुछ अच्छा हो रहा है कितना बुरा हो रहा है, वो भी तथ्य आपने लोगों के सामने रखे। आपका जानकारी के लिए बहुत

0: आपको आमंत्रित किया, आपने बहुत धन्यवाद आपको।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वन महोत्सव पर पर्यावरण प्रेमी व स्तंभकार श्री कमल कुमार जोशी से भेंट वार्ता। भेंट करता थे संजय जोशी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 16.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमेरिका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं, लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए, जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged.

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी कृष्णा चक्रवर्ती का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबला संगत की थी कुमार लाल मिश्रा ने और तानपुरा पर थे ध्रुव जी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के हस्तांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को

0: दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। पहली नवंबर से 31 जनवरी तक आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को छोड़कर विध्वंस कार्य और धूल उत्पन्न करने वाले खुले निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और ये 28 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह आज बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी के इस सफर में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी वादे और बिना किसी शर्त के भी बेहद गहरे होते हैं, जहां दूरी मायने नहीं रखती, बस एक अनकहा सा खिंचाव दिलों को करीब रखता है। इसी खूबसूरत एहसास को हम कहते हैं राबता। राबता जिसका मतलब होता है एक गहरा रूहानी और अनकहा रिश्ता या फिर कनेक्शन। श्रोताओं, रोज सुबह बिना एक दूसरे को देखे सिर्फ इन हवा की तरंगों और हमारी इस आवाज के सहारे जो हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ये हमारे और आपके बीच का एक रूहानी राबता ही तो है। तो आइए इसी खूबसूरत जुड़ाव के साथ शुरू करते हैं गीत निर्झर कार्यक्रम का ये सुरीला सफर और रुख करते हैं आपकी पसंद के सदाबहार नगमों की ओर।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में एजेंट विनोद फिल्म से। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का था और संगीत प्रीतम का। फरमाइश करता थे बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा खुश मूड़त। गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता, संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। मधुबनी से कुशवेश्वर प्रकांति गुप्ता, दादा ठाकुर, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुड़ी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एम के गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता ने। श्रोताओं लीजिए अब पेश है खुदगर्ज फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में। इंदिवर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी।

जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और इनके परिवार के सभी सदस्य। यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो लीजिए, आप सभी के फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं खुदगर्ज फिल्म का ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं परमर्शी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ग्राम बगुड़वा पथरिया से नरेम नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर, अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली, बेबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार, अंश पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल का लिखा गीत। आवाजें हैं के और जयेश गांधी की। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए मोहरा फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है बिजू शाह ने और इस गीत के इंतजार में है दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। भटिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर सिमरन, एकम दमन और अभिजोत। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा पाठक। नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू और बीके सुरगनैया। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में मोहरा फिल्म का ये गीत।

अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर। श्रोताओं, लीजिए अब पेश है सोहेल सेन के संगीत निर्देशन में कौसर मुनीर का लिखा गीत। आवाजें हैं मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक के। फिल्म का नाम है एक था टाइगर। इस गीत के इंतजार में हैं छत्तीसगढ़ से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर और ज्योति ठाकुर और रयांश ठाकुर। गंज डुंडवारा से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्ज़ा नसरीन बेगम। राजनगर कांति निकेतन से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा, गोल्डी, मास्टर रुद्र गुप्ता। राजनगर गांधी चौक से रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, पलक पंखुड़ी, माधवी, साध्वी, हैप्पी, रिद्धि, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति जी, शालू, दीप, शिखा और अर्चना। तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर पेश है एक था टाइगर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, लीजिए अब पेश है समीर के बोलों पर नदीम श्रवण की तर्ज कसूर फिल्म के लिए। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, मकेड़ी अल्मोड़ा से शुभांगी सुनील जीत गंगा रूपाली प्रार्थना तन्मय वामिका वानिया दिया और तेजस, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया कविता महोबिया विशाल विवेक सोनू मोनू रानू संजू देव रमेश पंचोली और उद्यम खुशनसीब, सरगुजा मेनपाट से सोनियम थापा सोनम थापा रेशमा थापा अदीबा थापा, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार अकरम आसमा बेलदार, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता मालाकार मुस्कान मालाकार जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर पेश है कसूर फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं परमर्शी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। श्रोताओं, लीजिए अब पेश है द ट्रेन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया, कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, अफजाल इब्राहिम, बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है द ट्रेन फिल्म का ये गीत।

गीत निर्जर कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के लिए बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल, जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और सर्वद देशमुख, वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, मालती चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आन फिल्म का गीत। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में शब्द रचना समीर की है।

कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौर की। फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत। फरमाइश करता है नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमा ताई डोंगर दिवे, सीमा ताई डोंगर दिवे, रीमा ताई डोंगर दिवे, दीक्षा ताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे। मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अंसारी। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक कमरकर, प्राची करमकर और तनु करमकर।

जसविंदर नरूला और रूपमा राठौर के गाए होगी प्यार की जीत फिल्म के किसी गीत के साथ ही श्रोताओं आज के गीत निर्झर कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के

0: तिरुवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं शादाब लाहौरी के कलाम से। फनकार हैं जसवंत सिंह।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सतरंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज में ये रगमा।

शुभ मुद्गल के गाए इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2024 तक 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। सैनिक कल्याण सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि उपनल कर्मियों के लिए संशोधित शासनादेश के अनुसार समान पद समान वेतन का लाभ पाने वालों के लिए कट ऑफ डेट अब 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति के हिसाब से इन्हें चरणबद्ध तरीके से समान पद व समान वेतन प्रदान करेगी। कर्मचारी जिस पद के सापेक्ष कार्यरत हैं उन्हें उसी के अनुरूप न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ता दिया जाएगा। शासनादेश ने यह भी स्पष्ट किया कि उपनल कर्मियों से संबंधित अन्य सभी विषय व भविष्य में उत्पन्न होने वाले विषयों पर मंत्रिमंडल की उप समिति विचार करते हुए अग्रिम कार्रवाई पर संस्तुतियाँ करेंगी। प्रदेश में मानसून जनित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। सभी 13 जिलों के 66 स्थानों पर यह मॉक अभ्यास किया जा रहा है, जिनमें अधिकांश स्थान पहली बार शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर रहे हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करना, उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा वास्तविक आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारी को परखना है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के माध्यम से विभिन्न विभागों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाए। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर व टिहरी जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में आज सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। चमोली जिले में लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी से आगे गुलाबकोटी के पास मलबा आने से बंद है। प्रशासन ने मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन ने यात्रियों को भरोसा दिया है कि जल्द मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। राज्य आपदा प्राधिकरण ने चारधाम यात्रियों को मौसम का ताज़ा अपडेट लेने के बाद यात्रा करने की सलाह दी है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों से दूर रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर कल देहरादून में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक केवल रोगों का उपचार नहीं करते बल्कि समाज में विश्वास और नई आशा का संचार भी करते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका

त्याग सदैव प्रेरणादायी रहेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत संचालित परियोजनाओं में आधारभूत सुविधाओं के कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कल देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर आवासीय वातावरण भी देना है।

0: आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। सचिव आवास ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर आवासीय वातावरण भी देना है। हरेला पर्व के तहत इस बार देहरादून जिले में 1,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जुलाई से शुरू होने वाला हरेला अभियान एक माह तक चलेगा। इस दौरान पौधारोपण के माध्यम से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान का कहना है कि यह अभियान केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन बनेगा। इसके लिए सभी विभागों को रोपण स्थलों का चयन कर माइक्रो स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है शीर्षक गीत पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, हमारा आज का शीर्षक है दीवाना।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मौसम का मिजाज कुछ ज़्यादा ही हसीन है। रास्ते में ठंडी हवाओं का एक ऐसा झोंका चला कि मन बिना ही किसी बात के मुस्कुरा उठा। श्रोताओं, मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि जुबान पर बस एक ही शब्द बार बार आ रहा है, दीवाना। श्रोताओं, ये शब्द सुनने में जितना सादा है इसका एहसास उतना ही गहरा है। जब कोई इस दुनिया की सारी फिक्र छोड़कर, सारी समझदारी को किनारे रखकर सिर्फ अपने दिल की सुनने लगे तो दुनिया उसे दीवाना कहती है। और सच कहूँ श्रोताओं, तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा खुद का दीवाना होना बेहद ज़रूरी है।

श्रोताओं, इस दीवानगी से अछूता तो कोई भी नहीं है। हम और आप भी तो एक दूसरे के दीवाने ही हैं। जरा सोचिए, सुबह की इस पहली चाय के साथ बिना एक दूसरे को देखे सिर्फ इस आवाज और रेडियो की तरंगों के सहारे हम सब पिछले इतने सालों से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, ये आकाशवाणी के लिए आपका दीवानापन ही तो है जो आपको हर सुबह रेडियो ऑन करने पर मजबूर कर देता है। और हमारा दीवानापन ये है कि मौसम चाहे कैसा भी हो, हम अपनी पूरी दुनिया समेट कर इस माइक के सामने बैठते हैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए। प्यार, संगीत और रेडियो, इन तीनों की तासीर एक जैसी है। जो भी इनके संपर्क में आता है वो बस इनका दीवाना बनकर रह जाता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, जब बात दीवाना शब्द की हो तो हमारी संगीत की दुनिया में इस शब्द ने कितनी धूम मचाई हुई है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब रफ़ी साहब गाते हैं कि दीवाना हुआ बादल, तो ऐसा लगता है जैसे सचमुच आसमान में मोहब्बत की बारिश होने वाली है। वहीं जब मुकेश जी की आवाज़ में गूंजता है दीवानों से ये मत पूछो, तो दिल के एक अजीब से सुकून से भर जाता है। और किशोर दा का वो अंदाज भरा कौन भूल सकता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। श्रोताओं, इस शब्द में एक ऐसा जादू है कि जब ये शब्द किसी गाने से जुड़ता है तो गाना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है।

तो श्रोताओं, आज के इस हसीन सुबह में अपनी सारी समझदारी को थोड़े वक्त के लिए छुट्टी दे दीजिए। इस मौसम के दीवाने बनिए और सबसे ज़रूरी, अपने ज़िंदगी के दीवाने बनिए। कुछ तो बात है इस मौसम की इन हवाओं में, वरना यूं ही नहीं ये दिल दीवाना होता। और आइए अब सुनते हैं वो गीत जिसमें दीवाने शब्द की मिठास घुली हुई है।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने दीवाना, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली और परदेस फिल्मों के गीत सुने। इसी गीत के साथ ही आज के सुरबहर कार्यक्रम से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सुर बहार अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। श्रोता सुबह के 11 बजे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म क्रांति से। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा, सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया गीत। फिल्म का नाम है रिफ्यूजी।

ये नदियाँ जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का गीत, गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फौजी भाइयों, पत्थर के सनम फिल्म के इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर का गाया सुर फिल्म का ये नगमा। नगमा निगार हैं निदा फाजली, मौसिकार MM करीम।

और जी भाई, उस सुर फिल्म के इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में जावेद अख्तर का लिखा आनंद राज आनंद का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म का नाम है एक था दिल एक थी धड़कन।

फौजी भाइयों, एक था दिल एक थी धड़कन फिल्म के इस दो गाने के साथ ही आज का सैनिकों के लिए फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।

सैनिकों के लिए अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोतो लीजिए, अब प्रस्तुत है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं कमला देवी के गाए इस हुड़किया बोल के साथ।

कमला देवी के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के बाद आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अंजनी काला और मीनाक्षी काला के स्वर में ये गढ़वाली लोकगीत।

अभी आपने संवित स्वरों में ये लोकगीत सुना। ये कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं मुनि टमटा का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

मनी टमटा के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोकसुर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

मेरी पसंद के एक और अंक के साथ हाजिर हूँ मैं रोशनी वालिया। सभी श्रोताओं को मेरा सास्नेह अभिवादन। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज़ की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं लेकर आई हूँ उन्हीं के गाए चंद गीत। मोहम्मद अजीज़ बॉलीवुड और ओडिशी फिल्मों में अपने गायन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वर्ष 1985 की फिल्म मर्द के हिट गीत मर्द तांगे वाला से बड़ा ब्रेक मिलने से पहले रेस्टोरेंट में गायन से अपना करियर शुरू किया था। 2 जुलाई सन 1954 को कलकत्ता में जन्मे मोहम्मद अजीज़ को मुन्ना अजीज़ के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने विभिन्न शैलियों और भाषाओं में हजारों गाने गाए। अक्सर अमिताभ बच्चन, गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों के लिए उन्होंने गीत गाए हैं।

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर।

टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।

भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। तुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है।

श्रोताओ, सईद मोहम्मद अज़ीज़ उन नबी के रूप में जन्मे मोहम्मद अज़ीज़ बचपन से ही संगीत के शौकीन थे। उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत कोलकाता के गालिब नाम के एक रेस्टोरेंट में गायन से की थी। वो 1984 में मुंबई आए। सफलता तब मिली जब संगीत निर्देशक अनु मलिक ने उनसे फिल्म मर्द के लिए गाना गवाया। ये गाना बहुत सफल रहा और कई लोगों का मानना था कि इसे शब्बीर कुमार ने गाया था।

श्रोतो, मोहम्मद अजीज ने 1980 और 90 के दशक में लाल दुपट्टा मलमल का और आपके आ जाने से जैसे कई हिट गाने गाए। उन्होंने कई लोकप्रिय अभिनेताओं के लिए गाने गाए और कई जाने माने संगीत निर्देशकों के साथ काम किया।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद, और आज के इस सफ़र में मैं हूँ आपकी हम सफ़र रोशनी। श्रोतो, आज हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायक मोहम्मद अज़ीज़ के गाए चंद फिल्में की। मोहम्मद अज़ीज़ उड़िया फिल्म उद्योग में भी काफ़ी सक्रिय रहे और उन्होंने कई प्रसिद्ध भजन और फिल्मी गीत गाए। उनके काम में 10 से ज़्यादा विभिन्न भारतीय भाषाओं में भक्ति गीत और फिल्म संगीत दोनों शामिल थे।

श्रोता, मोहम्मद अजीज एक बेहद लोकप्रिय और विपुल गायक थे, जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा और व्यापक श्रोताओं से जुड़ने की क्षमता के लिए याद किया जाता है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्टेज शो भी किए। वर्ष 2018 में 64 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया।

दोस्तों मोहम्मद अजीज वो सुरीला गायक जिसने अपनी आवाज से 80 और 90 के दशक में लोगों का ध्यान अपनी तरफ ऐसा खींचा कि लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। मोहम्मद रफ़ी के गाने गा गा कर बड़े हुए मोहम्मद अजीज को लोगों ने महान गायक मोहम्मद रफ़ी के समकक्ष मानना शुरू कर दिया था।

श्रोताओं, मेरी पसंद में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अज़ीज़ के गाए चंद गीत। आज जिन गीतों को हमने आपको सुनवाया था, उनकी फिल्में थी मर्द, बीवी हो तो ऐसी, लाल दुपट्टा, मलमल का, राम अवतार, त्रिदेव और खतरों के खिलाड़ी। एक बार पुनः उस महान कलाकार को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ अपनी रेडियो सखी रोशनी को दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाज़त। अगले अंक में फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

मेरी पसंद अभिश्रुता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब पहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: ए पण कार्यक्रम सुनने सब रेडिओ दगड़ियों को मैं मंजू बोरा प्यार भरी नमस्कार स्वागत छु दगड़ियों अपू सब जानियाक अपू मन पसंद कार्यक्रम ए पण आजक अंक में दगड़ियों यो वन महोत्सव अर्थात वनुक उत्सव यह हमारे देश भारत में मनाए जानवल एक यस वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव छो जो कि जुलाई महीनक पहले सप्ताह में मनाई जा यह एक यस महान पारंपरिक भारतीय उत्सव छो जो कि वृक्षारोपणक माध्यमल धरती माता सम्मान धरती माता दग प्रेम करनक और प्रकृतिक सुंदरता प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की अवधारणा का हमले जी बढ़ावा दियो दगड़ो जस की हम बात करनो कि बन रोला तो हम रूल कवे पूरी धरती और विक जीवन पर्यावरण जो सब कुछ यो ऊपर निर्भर साफ हाओ पानी बिना जीवन संभव नहीं है सकन जान डाइव उठनक अभाव हूँ चारों तरफ घर है घर देखने वहाँ कस उमस जा लागे ने गौजो बुझन जस चितायु हरी भरी डाना काना साफ स्वस्थ नौ हरी भरी खेत खलिहान और एक संपन्न और स्वस्थ जीवनक आधार जो यह बात को तो सब माननी दगड़े हरी भरी डाइवोट कभी झन काटिया है सको तो खुद लय और नन तिनु को लय पेड़ लगनक लीजिए नन नन जस बागवानी करनक लीजिए प्रेरित करिया तब तो चारों तरफ हरियाली हल और हम स्वस्थ रोल और यही बात में हम चर्चा आप लोगों दगा आगे ल करते रोल अब कार्यक्रम में आगे पहले सुन लो यह संदेश
1: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
2: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
1: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
2: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा वो भी स्टाइपेंड के साथ।
1: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर
2: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दगड़ियों अल्ले हम सुनो जी प्रहलाद सिंह मेहरा गाई ये लोकगीत। अब कार्यक्रम में आगे सुनो एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय जो धराग श्रृंगारक उत्सव वन महोत्सव और यह मैं हमारे दगड़ बातचीत करने लग रही हेमाने की कनिष्ठ सहायक दीपा मिश्रा वन आरक्षी अलमाड़ वन प्रभाग अलमाड़ वटी।
1: दित बोलियो दगड़ियो हमार भारत देश विविधता भरी देश छो। यहाँ हर मेहनत जो पहल दिन हूँ पहल पैठ हूँ उगो संक्रांतिक रूप में मनाई जा जिसकी अब बरसातक मौसम शुरू होने वाल छो और हमार देश में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाई जाने तो इसी के जुलाई प्रथम सप्ताह में मनाई जा वन महोत्सव सप्ताह या कह हम सामान्य भाषा में पेड़ों त्योहार लगा सकनु। ये मैं कहूँ की जब बरसात शुरू है तो मानसूनक दगड़ दगड़े मानसूनक आगमन में जो हमार माठ हूँ जो हमारे भूमि छू जो हमारे पृथ्वी छू मैं पर्याप्त मात्रा में नमी है जाए और यह मौसम में जब कहें कोई पौध लगाई जानी वृक्षारोपण करी जा तो को पर्याप्त मात्रा में अनुकूल वातावरण मिल जाए कि वो आप जड़ को मजबूत बना सको। कभी यह विषय में और ज्यादा गैर गैर जानकारी लेने के लिए हमल करी एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता अलमाड़ वन प्रभाग अलमाड़ बटी जमा हमारे दगह सब पहली बात करने लग रही हेमा नेगी कनिष्ठ सहायक वन प्रभाग अलमाड़। मैम सब पहले तो आपको स्वागत छू हमारे कार्यक्रम अपनक आजक अंक में। नमस्कार
2: सबो पहली। नमस्कार मैडम।
1: मैम सबो पहले तो हम आज एक चर्चा के विषय में ये जान चूल कि ये वन महोत्सव सप्ताह छू के और ये कदिन बटी मनाई जान लग रहा।
2: वन महोत्सव सप्ताह यशु की पेड़ पौधों में बड़ों में जो हमारे वन विभाग छू को वन विभाग में जो हम पर्यावरण छू को बचाने जी प्रयास करने जी सरकार द्वारा 1950 बटी श्री के एम मुंशी जी छी उन द्वारा ये शुरू करी को उसी तो 1947 में मनानी है पर जो नियमित रूप से मनाना शुरुआत छू वो छू 1950 बटी एक मनानी पेड़ पौधों रक्षा लीजिए पर्यावरण रक्षा लीजिए तो वन महोत्सव जुलाई प्रथम सप्ताह में मनाई जा।
1: मैम जब आबुल बात के जानू हुनाला की बहुत है कार्यक्रम हमारे यहाँ मनाई जानी चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या चाहे हमारे यह पहाड़क महनों के अनुसार हो या पंचांग अनुसार हो तो के न के कार्यक्रम पिछाड़ के न के उद्देश्य हो तो जरूर यह वन महोत्सव अनुण पिछाड़ के उद्देश्य होना। अब तो यहाँ वन प्रभाग अलमाड़ में एक कनिष्ठ सहायक पद में छा तो हमको बताओ कि यह उद्देश्य के छन।
2: वन महोत्सव उद्देश्य यही छू वन पर्यावरण जो हम वन छी क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य छू तो यहाँ वनों के सब जो हमारे ऊंच पूरे दिनचर्या या जो अर्थव्यवस्था छू वनों पर वनों पर ही निर्धारित छू तो वनों को बचाने वाले जी लोगों को जागरूक करो सुबह पहले तो लोगों को जागरूक करना पड़ो लोगों को जागरूक करना और वन यो वन महोत्सव में पर्यावरण में पौधारोपण करना और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने तत्व छू उनको रोकना यही सब प्रयास करी जाए ज्यादातर लोगों को मैं जागरूक करी जाए कि पेड़ पौधों

0: लगाओ और उन्हें रक्षा करो, उन्हें देखभाल करो टाइम टाइम पर।
1: मैम ये तो वन प्रभाग अलमारक द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम हगा कि अब वो लोग जन जन जागरूक कर छा कि हमारे के कर्तव्य जिन हमको के करना चाहिए। मैम आजकल हम देखनो कि हमारे पहाड़ मेले जब पर्यटन सीजन हो या हमारा ग्रामीण दीद बैनी होनी कदबार या सुने कि खेतों में वो जो झाड़ पात हूँ को जलाई जाए या कई लोग अपन पिकनिक मनवाना लीजिए वन में जाने वहाँ पिकनिक में उनके बने दी आग लगा दी वी बाद उन्होंने सोचा कि हम आग को बुझे हेलो नहीं मैं हेलो वो घरों आ जाने अगर एक आध चिंगारी ले रह गई जब वो हमारे वन संपदा का नुकसान पूजा दू। अब नुकसान हो गए अगर हमको पत्ते चलना हो वहाँ धूं उठ रहा हो वहाँ आग लग रहा है तो ये मैं हमको क्या कदम उठूं चाहिए नहीं और कहाँ संपर्क करना चाहिए और क्या सावधानी धरन चाहिए।
0: अलमड़ा वन प्रभाग में तो सब पहले 6 रेंज आए नी जो पूरे अलमड़ जिले छो 6 हमारे रेंजों में बांटी रहो 6 रेंजों में बांटी बात क्यों की हर रेंज में सेक्शन में बांटी रहो सेक्शन में बांटे बीट आनी तो हर बीट में हमारे फॉरेस्ट गार्ड छी सेक्शन में वन दरोगा छी तो हर एक आगल जी क्रू स्टेशन बनाई रहनी उनमें हम जो ग्रामीण छी वो नजदीकी क्रू स्टेशन में संपर्क कर सकनी जेल आग बुझा जी टीम पहुंच जाओ और एक टोल फ्री नंबर छू और अलमड़ा के मास्टर कंट्रोल रूम छू उमे फोन करबा हम बता सकनो फिर यामटी जो बीट में आग लग रहा है उन्हें वन बीट अधिकारी को फोन करबे जानकारी दी जाए फिर टीम पहुंची ग्रामीण सहयोग वो आग को बुझाई जाए टाइम पर और वहाँ जो कार्यक्रम छी वह रिपोर्ट ला मार दे जाए कि तू टाइम पर आग लग रही है बुजुर्गो कने तो ऊपर पूर ध्यान दे जाए आप तो सेटेलाइट ले आग मतलब निवारण जी पूर प्रयास की जानी देहरादून में ही हमको रिपोर्टिंग मिल जाए डिविजन में कि यह क्षेत्र में आग लग रहा कने तो फिर हमला यामटी अपन जो फील्ड में काम करने के आदमी उनको यामटी फोन करबे जानकारी देनो की आग लग रहा कने ग्रामीण ले उनसे संपर्क कर सकनी क्रू स्टेशन हर क्षेत्र में बनी रहो।
1: मैम ये तो अबुल भल जानकारी दे कि हर ग्रामीण इलाके में क्रू स्टेशन बन रही कभी तो ये लीजिए जो गाँव वासी छे जैसे आम जनता आगे मान लीजिए आपकी मैं एक ग्रामीण बैंड छू और मैं कभी बार में ज्यादा जानकारी नहीं छू तो मैं पहले कहे संपर्क करूँ अपन ग्राम में कहे थी संपर्क करूँ जब मेरे पास के फोन निहल के निहल जब तो के फोन नंबर या सार्वजनिक छे जब हम बात कर सकू या पहले मैं आपको ग्रामीण स्तर में कह दे बात करना पड़े
0: जो हमारे ग्रामीण का कोई बैंड है नहीं तो उनको जो हम फॉरेस्ट गार्ड छी या वन बीट अधिकारी छी उन्हें संपर्क प्रधानों तक है जो गांव प्रधान छी वन पंचायत छो तो गांव जो बैणी छी उन तक जुड़ी रहनी वन पंचायत माध्यम समिति बनी रहनी तो सब हमारे जो वन बीट अधिकारी छी उन तक सब जुड़ी रहनी उन पर नंबर रहो फिर लगे के पहला नंबर है ना प्रधान को बता सकनी हूँ जो गांव प्रधान छी उन हमारे वन बीट अधिकारी को फोन करबे जानकारी देनी तो फिर टाइम पर पहुंच जानी वह पहले अगर कोई बैणी पर संपर्क नहीं चो वह पहले देहरादून या सैटेलाइट एक ऐप ला बन रहा हूँ उत्तराखंड फॉरेस्ट ऐप कने मैं गांव वाले कर सकनी वो ऐप डाउनलोड करबे मैं जानकारी दे सकनी वामटी वह पाली के हमारे जो वन बीट अधिकारी उन पर जानकारी पहुंच जाएगी यहाँ आग लग रहा है अगर पता सटाइटल काम नहीं कर या कोई जानकारी नहीं पहुंच पाए तो जो गांव प्रधान छी वह हम संपर्क करबे गांव बैणी भूल जुल छी उन तक संपर्क करबे जानकारी दी सकनी की यहाँ आग लग रहा है टीम में टाइम पर पहुंचे।
1: मैम जिसके अल हम बात करने लग रहे वन महोत्सव सप्ताह में अब वन जो छन वो हमारे देश का संपदा छन और अगर हम अपने देश भारत तक बात करो तो हमारे भारत में तो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों और भारत देश है गौनुल बन रहा और गौनुल साने है हमारे वन संपदा और वन संपदा में कई औषधीय पेड़ पौधे ले मिलने हमको और कई प्रकार जड़ी बूटी ले मिलने हमको और कई प्रकार हमको वहाँ पशु संबंधी चारा ला मिलो तो यह लीजिए हम वन का अपन संपदा का दिनों अगर हम अपन ग्रामीण क्षेत्र बात करू तो गैस सिलेंडर चूल तो अब आ रही पहली बटी तो हम चूल्हे में खाना बनोने रहे और जंगल बटी जलूनी वाला हम लकड़ियों है तो यह संपदा हमारे नष्ट नहीं हो तो यह लीजिए मैम मैं जान जानू की अगर कत्ती हमारे अगल बगल जंगो छन चीड़ा पेड़ छन पिरूल झड़ो और आग लग गए तो पहल कदम हमारे क्यों चाहे क्या हमारे पास जो हथियार छू हाथ में एक सिकड़ हो गए दातुल हो गए या हम जो लुकुट पहन रही तो हमको कैसी सावधानी रहना चाहिए हम लोग उभत करे परेशान है जानो ना हाथला बुजुर्ग भजनो धब धब कभी तो ये कदुक सुरक्षित छो और ये मैं हमको करण की चाहे कि लेकिन एल अबुड़ और मेरे बात का हमारे रेडियो दगड़े सुन लग रहे और ज्यादातर ये कार्यक्रम ग्रामीण बेणिया के लीजिए हूँ तो क्या सावधानी रहना चाहिए कि आकर सिद्ध हाथल बुजुर्ग चाहे या उभत करे के और या नियम छिन या कोई सावधानी छू जक बरत भेर हम आग में झुलसन हबेर बच सकनो।
0: दीदी सभापति तो भत्ता भल प्रश्न करो तो मूल जो यह बहुत जरूरी छू क्योंकि उत्तराखंड जो अर्थव्यवस्था छो वो छो मनी ऑर्डर ही क्योंकि आदिम बिहार जा कमा और श्रेणी जो बहनी है नी वही घर पर अब सब देखभाल करनी तो जाहिर से बात छू बणपन तो श्रेणिया जाल तो उन्होंने देखो छू उन पर दातुल और जोड़ डॉल तो दातुल जब आग लगाना टाइम आ जब माथ माथ जंगल अपना आग लग रहा हूँ तो मांग काटून करनी हम तो अगर आप दातुल पली के एक रेखा जब पारदल पीरू को हटा तिराई ही लिहाल एक रेखा पारदल या इतना ये करनी पली बे गौनोपन की अगर माधवा आग अरसो तो तिराई बल पीरू साफ कर जल क्यों होगी रेखा जब पड़ जाए और आग तिराई नहीं फैलन पर यह हो कि अब एक नई वन विभाग का उछू कि पीरू एकत्रीकरण छू मैं कतु गांव श्रेणी हूँ जुड़ रही तो पलिका हूँ पीरू को इकट्ठे कर बे जल बिजली निर्माण हो को बेचने वाला फायदा ला कमानी श्रेणी भत्ते तो उमला जुड़ सकनी जल पीरू पलिका हर जाल क्योंकि ज्यादातर कारण तो आग लगाना पीरू ला छू और यही छू की अगर मांग हांग काट दिला टाइम पर साफ पड़ ला बड़ बड़ अगर कोई श्रेणी जो बटांग साफ करते हुए जाओ और जहाँ तक आग में अगर आग लग

0: तो फिर ले आधा का बच्चों को सिद्ध उम्र नहीं जान चाहे की आग जंगला आग बहुत खतरनाक छू तो उम्र जाना पहली सिद्ध हाथल तो नहीं बुझान छू मैं अगर कोई शॉकट आओ छू तो मैं ये करूँ छू की वह गए फांग तोड़ बे वेल बुझा सकनी या कोई डाव छू भीम डाव जो तुमको डाव मिलो बड़पन ऊपर एक उतार बो जो मैं पतेल सकर है नी वेल कोई झपकान छू हाथल हो गए या कपड़ा हो गए नहीं बुझान चाहे और आगत पहले देखो चाहिए ऐसे कोई पहाड़ी में आग लगा छो वहाँ नहीं जान चाहे भिओपन के लिए उम्र आगल तो बच रहा है भिओ में घुरी बोले कतुबा दुर्घटना है सकी तो सब पहले यही करूँ छू पहले देखो तो हम कथा जी करने और यार ये करूँ की जो पतेल है नहीं उन्होंने बुझान चाहे उनको जो झुकड़ तो उठा
1: अब ये क्रम में मैं अब हूँ ये जानू चाहूँ की जैसे हम आम नागरिक और हमारे की जिम्मेदारी होनी चाहिए
0: सुबह पहले तो आग नहीं लगाना चाहे तो सुबह पहले तो गवला लिया करूँ की ऐसा कोई सोच नहीं पड़े जब वो पराव वराव उन पर आग लगा देने इसका छोड़ जाए नहीं आग लगाना चाहे साफ सफाई जो लगाना चाहो तो मैं ध्यान जोड़ छू की हम अगर आग लगा छो आप क्षेत्र में तो वो पूरा बुझान छू इसका छोड़ नहीं जान छो गोपन और गवाल पता आग लगा शुरुआत पे अगर वो गवाल पहुंच जाए नहीं वहाँ ग्रामीण भागीदारी अगर दिखाला जब तो आग पाली के निमी जाल टाइम पर वहाँ पहुंच जाओ निमर जो जैसे कि वन विभाग वाल आल बुझाल करने वो तो ऊपर प्रयास कर ला पर हमारा वो तो सबू का छू वन तो सबू का चीज बनपन तो सब जाए नहीं तो वह पली जब वहाँ थोड़ा अगर हम पली के साफ सफाई कर दू जब आग नहीं लागो ध्यान दो अगर शुरुआत में ही तो वह ध्यान दू छू
1: मैम अपन बहुत भल भल बात हमको बताई और अपन कीमती वक्त हमको दे तो ये अगली जी अब अपन कार्यक्रम तरह हम खूब खूब धन्यवाद दो और ये क्रम में अब अखिल हमारे दगा जुड़ गई दीपा मिश्रा यहाँ वन प्रभाग अलमाड़ में वन आरक्षी सिंह सबू और पहले तो मैम आप स्वागत करनू अपन आज अंक में नमस्कार
2: नमस्कार मैडम
1: मैम जिसकी अल्लाह थोड़ी देर पहले हम बात करी हेमा मैडम दगा जो यहाँ कनिष्ठ सहायक छन और आपको यहाँ वन प्रभाग अलमाड़ में वन आरक्षी छा जिसकी मैम हम 1 जुलाई बटी 7 जुलाई तक प्रथम सप्ताह में जुलाई वन महोत्सव सप्ताह मनोनू तो यह वन महोत्सव सप्ताह अंतर्गत और के कार्यक्रम यहाँ बटी चलाई जानी पहले उन कार्यक्रम को नाम आप हमको बता ला
2: दीदी ये में दो कार्यक्रम बहुत मुख्य छन एक तो छो हराऊ हरेला एक से एक पेड़ में मां नाम
1: तो ये में जो हरेला हरियाली कार्यक्रम छू ये में के हूँ
2: हरेला जो छू ये 16 जुलाई बटी मनाई जा ये बटी हमारे सब तीर्थ त्योहार शुरू होनी जो हराव त्योहार हूँ उला मुख्य हूँ ये मैं 7 या 8 9 अनाज हम बोनू और ये 16 जुलाई में काटी जा उन बटी हम हराव कार्यक्रम शुरू कर नू ये विभिन्न प्रकार पौध लगोनू और ये पूरा 1 महीने तक लगातार होते रहू
1: जो दूसरा छू एक पेड़ माँ के नाम ये अंतर्गत के कार्यक्रम होने
2: एक पेड़ माँ के नाम जो छू ये 2 साल लगभग बटी पहले बड़े चन्नो ये मैं हर व्यक्ति आपू मैं नाम एक पौध लगून छे वो पौध लगा भी रखवाली करण छू सिंचाई करण छू और ये वजलल वो आपू माँ के हमेशा आपू पास अनुभव करो
1: मैम जैसे आप बता की एक पेड़ माँ के नाम ये तो कार्यक्रम नाम हगो और एक पौध जो लगाए जा वो आपू मैं नामक लगाए जा वृक्ष का अपन मैं समान मान बेर देखभाल करू कभी और उसको अनुभव कर सकू कभी तो मैम यह कार्यक्रम को सफल बनोक लीजिए एक जागरूकता फैलोक लीजिए अब कहाँ जा छा और यह लीजिए के कार्यक्रम आयोजित की जानी
2: मैम ये प्रोग्राम लीजिए हम विद्यालय कॉलेज हर जगह जानू हमारे क्षेत्र पर वन क्षेत्र अधिकारी छन वन पीड़ अधिकारी छन या फायर ब्रांच जो भी छन उन्हें हम गोष्ठी द्वारा व्हाट्सएप द्वारा मोबाइल द्वारा सब जगह करनू और उबाज उनको हरा में हम पौधा निःशुल्क वितरण करनू और इनमें सबसे ज्यादा पौधा हम कोशिश करनू की अधिक से अधिक हम चारा प्रजाति और फलदार प्रजाति रोपित करूँ वो इसलिए करूँ की चारा प्रजाति जो छू वो हमारे गोर बछनों का काम हूँ उनका खोना लीजिए और जो फलदार पौधे वो हमारे जो आजकल सुनना चाह जो जंगल में वन जो हमारे जो पहाड़ मतलब गाँव तर उड़ी वो अपना खान पाना ज्यादा उड़ी वो जरा उनके जब ये लगून तो उनमें जो फल आल वो खाल और जो कि वो आवासी तरफ नक्का मार
1: हाँ मैम ये बात तो बिल्कुल आप ठीक है कि जो चारा पत्ती वाला पेड़ पौध हल डायबोटी हल तो वो हमारे जानवरों के लिए हजल लेकिन हमारे ग्रामीण जो दिदबणी छे वो आप आजीविका के लीजिए गोर बाछे भैंस बाकर इन्हें पालन करनी और उन्हें लीजिए चार चे बिल्कुल सही बात है हाँ अगर वन विभाग द्वारा यह पहल करी जान लग रहा है कि हमको वनों में दूर जबेर फलदार वृक्ष लगून छिन कबेर तो यह चीज कम हजल कि बानर भल और बाघ यह हमार आवासीय स्थानों में नियार तो मैम यह जो फलदार वृक्ष लगून पहल हर है वन प्रभाग अलमार द्वारा तो यह आज तारीख में कदू सफल हर है
2: मैम इसमें सफल तो लगभग लगभग होने लग रहे क्योंकि यह छू फलदार पौध जो लागनी जब वो उनका होने में तो बहुत टाइम लागू फिर फल होने बहुत टाइम लागू ये मैं यह छू की सिंचाई मेन तो ऐसी की जब हम फलदार पौध लगून वो मेन सिंचाई है इसके अलावा उनके देख रेख बहुत जरूरत छू फलदार पौध खेते रहोल तब तो आयल तो न अगले साल 10 साल बाद 12 साल बाद यह बहुत फल उपलब्धि हम उनके होल जो हिसाब से उनके फल फूल वही जंगल में मिल जाए
1: मैम जैसकी हम बात करनो वन महोत्सव सप्ताह में हमारे के भागीदारी हो चाहे तो यह सफलता के पिछड़े हम सब अपन के कर्तव्य हो चाहे
2: मैम जो हम पेड़ पौधे डाव जो हम लगून ये मैं केवल वन विभाग का जिम्मेदारी नहीं छू ये मैं सब सब समझना चाहे की ये सब नगर छू क्योंकि हवा पानी फल फूल सब चाहे और यह वजह जो हम सब जंगल में लगून उम्र जैसे मतलब कोई भैबेणी हमारे जंगल में घास पतल हूँ जानी तो उन्होंने जब मतलब कल कोई पेड़ दिख लो नाना डाव हाउ वह पानी मिल लो थोड़ा सा थावला

0: जब बढ़ावे जिसके बाहर से पान आल तो था सो पानो रुकल और जो उल्ला कोई चुटाए गाड़ गधर छू था सो हसो को तो उमे आचवी या कोई गमला उस पानला उमे खाल कर सकूं तो यह वजह इसी हम अब सब भागीता दे सकनु तब हम सब हरिला कार्यक्रम का सफल बढ़ा सकूं।
1: मैम अपन अपन कीमती वक्त हमको दे और भल भल जानकारी ला हमारे दगा साझा करी तो अपना कार्यक्रम अतरब आप उगला खूब खूब धन्यवाद।
2: दगड़ियों अल्लाह हमुल सुनी या क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता जैक विषय छी धराक श्रृंगारक उत्सव वन महोत्सव जमा हमर दगा बातचीत करण लागरा छी हेमा नेगी कनिष्ठ सहायक व दीपा मिश्रा वन आरक्षी अलमाड़ वन प्रभाग अलमाड़ बटी। अब कार्यक्रम में अखिल बढ़ो दगड़ियों अल्पसंख्यकों के लिए योजना में आज हम बात करुल बेरोजगार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्वरोजगार योजना के बारे में। दगड़े उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बेरोजगार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करी गई और यह योजना का उद्देश्य यह छी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय उत्तराखंडक स्थायी निवासी छन उनको ऋण राशि 25% अनुदान प्रदान करी जो और यह अनुदान 1,00,000 रुपये बटी 10,00,000 रुपये तक ऋण में स्वरोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए उपलब्ध जो। दगड़े यह लाभ यह छू कि यमें 25% तक जो अनुदान दे जाल वो 25,000 रुपये ले सकूँ और 2,50,000 रुपये ले सकूँ और यह योजना का लाभ जब ऋण ले जाल तब मिलल और यह ऋण पर ब्याज जो छू वो बैंकक जो मौजूदा प्रचलित दर छन वी का अनुसार ले जाल। अब जब ऋण ले छू तो वी जो पात्रता छू वो यह छू कि आवेदक उत्तराखंडक स्थायी निवासी हो जाए और आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय में होना चाहिए। वीक आयु 18-55 वर्ष के बीच में होना चाहिए और जो वार्षिक पारिवारिक आय छो वो 2,50,000 रुपये सकर नहीं होना चाहिए और आवेदक बीपीएल परिवार सदस्य ले होना चाहिए। और अगर यह लाभ लेने के लिए लाभार्थी चयनक लीजिए विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करी जा आवेदक आवेदन पत्रक दगड़ दगड़ आय प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड बैंक खाता विवरण और प्रस्तावित योजना परियोजना रिपोर्ट संलग्न करण पड़े और यह सब लगे भेर भरी हुई आवेदन पत्र संबंधित जिलक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जम करण हल। फिर मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्षता में एक समिति है जैक द्वारा इनमें साक्षात्कार आयोजन करी जा जो साक्षात्कार में सफल उम्मीदवार हल वीक ऋणक स्वीकृति बैंक में भेजी जाए। बैंक में स्वीकृत होने के बाद जब सब औपचारिकता पूर्ण है जाए तब अनुदानक राशि 25% जारी करने के लिए आवेदन पत्र या निगम मुख्यालय हो भेजी जाए वहाँ बटी प्रबंध निदेशक स्वीकृति के बाद अनुदान राशि जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। जैक बाद जिला कार्यालय लाभार्थी हिस्सक 15% प्राप्त करने के बाद कुल राशि 40% संबंधित बैंक का हस्तांतरित करो। जैक बाद बैंक आवेदक का ऋण जारी करो। दगड़े जो ले यह जानकारी आप लोग लेन चाचा वीक संबंधित कार्यालय या वेबसाइट में जबेर भत्त कर सकता और अपन स्वरोजगार का आरंभ कर भेर और अपन नई दिशा के लिए तय कर सकता जरूर। यह जो ले योजना सरकार द्वारा चल रही इन लाभ हमको लेना चाहिए।

छुट्टों भैयागास लागो रे असर छमा भी छुट्टों भैयागास लागो रे असर छमा धरती की बुझ गे प्यास धरती की बुझ गे

कभत छुझुण मुण कभत खते का कभत छुझुण मुण कभत खते का कभे घाम जो दगड़ी मारू छो फसका कभे घाम जो दगड़ी

तगड़े रमेश जोशी गाई या लोकगीत गाय दगाय अब आजक एपणक अंक बटी दियो आ गया। दगड़े हो आजक एपणक अंक प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत। दगड़े आगिल कार्यक्रम में नई नई विषयों के लिए फिर भेंट है। अब दीदियो आ गया। नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम अर्पण सुन रही थीं। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में

0: औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहले मुख्य समाचार। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए राज्य में की जा रही मॉक ड्रिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इसका निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं और आपदा राहत कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। आवास सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। कार्यदायी संस्थाओं को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष फड़काई ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल की जा रही है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन होने, घरों में मलबा घुसने, नदियों का जलस्तर बढ़ने और सड़कों के बंद होने जैसी स्थिति में विभिन्न विभागों और एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्य किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। वहीं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि जिले के 5 स्थानों पर यह अभ्यास किया जा रहा है।
1: मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पे 5 लोकेशंस हैं जो हमें मिली हैं, और जिसमें से लैंडस्लाइड जोन भी है, एक दो नई लोकेशन भी है, और सभी जगह पे हमारा बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जैसी घटना की सूचना प्राप्त होती है तो टीम कितना इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंटली कम समय में पहुंच पाती है अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ, और वहाँ पे जो भी हताहत है या घायल है या जिनको रेस्क्यू किया जाना है उनको मिनिमम टाइम में आपकी व्यवस्थाएं कितना पीछे से आप होल्डिंग कर पाते हैं, तो उसमें हमारा सारा व्यवस्थाएं ठीक है। टीम जो गैप हमें लग रहा है वो गैप स्टेट लेवल पे भी देखे जाते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको मॉनिटर करते हैं, अपनी टीम्स को उसी अनुसार फिर हम लोग जो इसका फीडबैक होता है हम ग्रुप्स के माध्यम से उनको सूचित करते हैं।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ 61 लाख रुपए की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच केबल से वंचित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे बंच केबल कार्य के लिए 4 करोड़ 92 लाख रुपए की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम धराली, हर्षल तथा तहसील डुंडा, चिन्यालीसौण, बड़कोट और मोरी क्षेत्र में आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए 3 लाख रुपए प्रति भवन की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से 3 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका शासन आदेश भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड में मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी गई है। योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के लिए मजदूरी दर 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्राम्य विकास विभाग के सचिव धीराज करब्याल ने बताया कि नई योजना में 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका और आपदा न्यूनीकरण के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 91.57% सक्रिय श्रमिकों की EKYC पूरी हो चुकी है। शेष जॉब कार्ड धारकों से एक सप्ताह के भीतर संबंधित ग्राम पंचायत या विकासखंड कार्यालय में EKYC कराने का आग्रह किया गया है। मनरेगा के तहत जिन श्रमिकों की EKYC हो चुकी है उनके वर्तमान जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे। श्री गर्ब्याल ने कहा कि मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों को नई योजना में अनुमन्य कार्यों के अनुसार समाहित किया जाएगा। इसके लिए सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
2: देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।

0: प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने की दिशा में आवास विभाग ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। इसी क्रम में विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में किए जा रहे बाह्य विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवासों का निर्माण पूरा होने के बाद भी अगर बाह्य विकास कार्य लंबित रहते हैं तो लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए सभी एजेंसियां समन्वित रूप से कार्य करते हुए शेष कार्यों को तेजी से पूरा करें। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित विद्युत, जलापूर्ति और सड़क निर्माण के सभी लंबित कार्य आगामी 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक एजेंसी को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजनाओं की नियमित निगरानी पर भी विशेष जोर दिया गया। सचिव आवास ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लाभार्थियों को केवल आवास ही नहीं बल्कि सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
0: केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष फड़काई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभागों की कार्य योजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए वहां के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहां पर अभी आयोजित की गई थी जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहां से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर यहाँ से भी उसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है और लाइवलीहुड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंप्रूवमेंट, उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज है वो टूरिज्म आधारित वहाँ पर जो वर्क है वो ज्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म उसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें लिया गया, उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें, उसको ग्रो करवाएं।
0: चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोहाघाट में एक संस्था के सहयोग से आधुनिक पशु चिकित्सालय उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त पशु चिकित्सालय की स्थापना पशु कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों से पालतू पशुओं के साथ ही घायल और बेसहारा पशुओं को भी गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा मिलेगी।
3: इससे हमारे यहाँ के जितने पशु प्रेमी हैं उन सभी को लाभ मिलेगा, पशुओं को लाभ मिलेगा और जैसा अभी मैंने यहाँ पे भ्रमण किया सभी प्रकार की चिकित्सकीय जो उपकरण है वो यहाँ उपलब्ध है। चिकित्सकीय परामर्श भी ट्रेन प्रशिक्षित जो डॉक्टर हैं उनके माध्यम से यहाँ पे दिया जाएगा और जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी देखरेख कर रहे हैं। अलग से आपने एक स्वान केंद्र भी यहाँ पे बना रखा है जहाँ पे निराश्रित स्वान है उनको रखा जाता है तो एक बड़ा ही सराहनीय पहल है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए राज्य में की जा रही मॉक ड्रिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इसका निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं और आपदा राहत कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की, कार्यदायी संस्थाओं को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष फड़काई ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार।
1: FM 14.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। निजी पेश है सुगम संगीत। श्रोताओ, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं कतिल शिफई के इस खलाम के साथ। फनकार हैं गुलाम अली।

अभी आपने गुलाम अली को सुना। आइए कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं निदा फाजली का कलाम। फनकार हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर।

गुलाम अली की गई इस गजल के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1319वीं कड़ी।

0: उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
0: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा, लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है।
0: और
1: हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश

0: ही रहेगी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास।
3: कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है।
2: अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
3: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
5: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
3: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
6: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
3: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
4: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
7: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
3: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
7: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
3: क्यों दे दूं?
7: क्यों दे दो?

0: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है
1: भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो।
5: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
6: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे। मुझे न्याय चाहिए।
6: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
6: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
6: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
6: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
8: ये हंस कैसे बताएगा?
9: गद्दी में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।

0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
1: महाराज की जय हो।
2: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
3: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
4: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।

0: था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
1: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
0: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था, आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
2: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
3: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
2: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
3: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
4: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
5: हम अच्छे हैं।
4: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
5: जी हम तैयार हैं।
4: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
5: आदित्य L1 के बारे में?
6: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
3: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
4: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
2: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
4: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
3: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
4: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
3: जी, मेरा नाम श्रुति है।
4: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
7: सूर्य ग्रह है या तारा?
4: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
3: सर मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
4: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
5: अच्छा सर।
2: सर मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
3: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
4: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
2: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
4: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
3: विशाल गैसों का गोला?
2: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
4: शाबाश, समझ गए ना?
5: जी सर।
3: सर जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
2: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
4: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान

0: जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
1: जी सर।
0: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य ज्ञान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
0: हाँ, सही कहा। आदित्य ज्ञान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
3: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
0: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
3: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
0: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
2: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
3: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
2: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1319वीं कड़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया। श्रोतो लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं पूरन चंद्र दानू का गाया एक और कुमाऊनी लोकगीत।

0: श्रोताओं, इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 हुए हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे

0: फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग

0: हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के

0: तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। किसान भाइयों, आज की जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां एवं वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिव दयाल।
4: किसान भाइयों, सोयाबीन एक दलहनी फसल है, लेकिन तिलहनी फसलों में भी सोयाबीन का एक विशेष स्थान है। सोयाबीन में 20% तेल व 40% प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए सोयाबीन एक श्रेष्ठ एवं सस्ता स्रोत है, क्योंकि 1 किलोग्राम सोयाबीन से उतनी ही प्रोटीन प्राप्त होती है जितने की 12 किलोग्राम दूध या 3.5 किलोग्राम अंडे

या 2 किलोग्राम मांस या 6 किलोग्राम चावल से प्राप्त होती है। उत्तराखंड में सोयाबीन खरीफ की मुख्य तिलहनी फसल है, लेकिन सोयाबीन की उत्पादन क्षमता का 50% उपज भी किसान भाई नहीं ले पाते, जिसका मुख्य कारण उसकी खेती वैज्ञानिक विधि से नहीं करना है। किसान भाइयों, किसी भी फसल की पैदावार वृद्धि में प्रजातियों का विशेष महत्व होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कई प्रजातियों का विकास किया गया है। शिलाजीत, BL-Soya 2, BL-Soya 21, BL-Soya 47, BL-Soya 59 एवं BL-Soya 63 निचले एवं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं एवं उनसे लगभग 45 से 55 किलोग्राम प्रति नाली उपज प्राप्त हो सकती है। प्रजाति BL-Soya 47, BL-Soya 59 एवं BL-Soya 63 जीवाणु स्पाट अवरोधी किस्में हैं। इसके अतिरिक्त PS-1024, PS-1042 एवं PS-1092 प्रजातियों से लगभग 60 किलोग्राम प्रति नाली उपज प्राप्त हो सकती है तथा ये प्रजातियां पीला चित्तवर्ण एवं जीवाणु स्पाट अवरोधी भी हैं। 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए PRS-1 प्रजाति उपयुक्त है। यह लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है तथा औसत उत्पादन 40 किलोग्राम प्रति नाली है। किसान भाइयों, पर्वतीय क्षेत्रों में काला सोयाबीन, जिसको स्थानीय भाषा में भट्ट कहते हैं, की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है। स्थानीय प्रजाति का उत्पादन कम होता है। BL-Soya 65 प्रजाति विकसित हुई है, जिसका दाना काला, गोल एवं उत्पादकता 22 से 28 किलोग्राम प्रति नाली है। यह लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसको समतल एवं भुरभुरा बना देना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई का उपयुक्त समय मई के अंतिम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक है। विलम्ब से बुआई करने से उपज कम मिलती है। बुआई के लिए बीज की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति नाली पर्याप्त होता है। बीज जनित रोगों से बचाव हेतु सोयाबीन बीज को 2 ग्राम थीरम 75 WP तथा 1 ग्राम कार्बंडाजिम 50 WP को मिलाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। सोयाबीन दलहनी फसल होने के कारण इसको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, जिससे वायुमंडलीय नत्रजन उपलब्ध हो सके। इसके लिए लगभग 250 मिलीलीटर साफ एवं ठंडे पानी में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का घोल बनाकर इस मिश्रण को 30 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर हल्की परत बन जाए। इसके बाद बीज को 10 से 15 मिनट छाया में सुखाकर बुआई करें। तेज धूप में बीज को उपचार एवं सुखाना नहीं चाहिए, नहीं तो जीवाणु के मरने की आशंका रहती है। ऐसे खेतों में जहां सोयाबीन की खेती पहली बार अथवा काफ़ी समय बाद की जा रही हो, वहां राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि फफूंदी नाशक दवा तथा राइजोबियम कल्चर को एक साथ मिलाकर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले फफूंदी नाशक से उसके बाद राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। बीज की बुआई हल के पीछे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लाइन से करें तथा लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जमने के पश्चात 15 से 20 दिन के अंदर घने पौधों को निकालकर पौधों की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। फसल की भरपूर पैदावार के लिए उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है। उर्वरकों को मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग करना चाहिए। यदि यह परीक्षण न कराया गया हो तो उन्नतशील प्रजातियों के लिए 400 ग्राम नत्रजन, 1600 ग्राम फास्फोरस तथा 800 ग्राम पोटास प्रति नाली प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा अंतिम जुताई में हल के पीछे कुणों में प्रयोग करें। बोने के 30 से 35 दिन बाद सोयाबीन के एक या दो पौधों को उखाड़ कर देखें
की जड़ों

में ग्रंथियां बनी हैं या नहीं। यदि ग्रंथियां नहीं पड़ी हैं तो फूल आने के पूर्व 600 ग्राम नत्रजन प्रति नाली की दर से प्रयोग करना चाहिए। लगभग 2 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद डालने से जड़ों में ग्रंथियां अच्छी बनती हैं तथा उपज भी अच्छी मिलती है। जिन खेतों में जस्टे की कमी हो वहां पर 100 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति नाली डालना चाहिए। सोयाबीन की अधिक उपज के लिए 500 ग्राम सल्फर प्रति नाली डालना चाहिए। सोयाबीन खरीफ फसल होने के कारण खरपतवार का नियंत्रण जरूरी है। उसके लिए बुआई से 20 से 25 दिन बाद प्रथम निराई अवश्य कर देनी चाहिए।

0: निराई करनी चाहिए। खरपतवार नाशी रसायन एलाक्लोर 50 ईसी की 40 मिलीलीटर या मेटाक्लोर 50 ईसी की 20 ग्राम दवा प्रति नाली की दर से 16 से 20 लीटर पानी में घोलकर बुआई से 48 घंटे के भीतर छिड़काव कर देना चाहिए। यदि खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना हो तो क्यूजोला फास इथाइल 5 ईसी की 1 ग्राम दवा 16 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। वर्षा ना हो तो फूल आने और फली बनते समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई अवश्य करें, साथ ही उचित जल निकास का प्रबंधन करना भी आवश्यक है। किसान भाइयों, अधिक पैदावार हेतु कीटों एवं बीमारियों का निदान भी आवश्यक है। सोयाबीन को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट पत्ती काटने वाला कमला कीट है। इसके शरीर पर पीले या भूरे रंग के रोएं होते हैं। इसका प्रकोप जुलाई अगस्त माह में अधिकतम होता है। प्रारंभ में जब ये पत्तियों को खाती हैं तो सूढ़ियों सहित प्रभावित पौधे या पत्तियों को सावधानी से अलग कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके रोकथाम हेतु लेमडा साई हेलोथ्रीन 5 ईसी की 5 मिलीलीटर दवा या ट्राइजोफास 40 ईसी की 15 मिलीलीटर दवा 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त छेदक मक्खी 70 से 80% एवं गार्डिल बीटल 10 से 30% तक तने के भीतर खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके नियंत्रण हेतु एंडोस्का कार्ब 15.8 ईसी की 7 मिलीलीटर या साइपरमेथ्रिन 10 ईसी की 10 मिलीलीटर दवा 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन में कई बीमारियों का प्रकोप भी होता है। प्रारंभ में बीज विगलन एवं पौध अंगमारी रोग फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बचाव हेतु बुआई पूर्व बीज शोधन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीला मोजेक एवं पर्णचित्ती नामक बीमारियां भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। पीला मोजेक बीमारी सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलती है। इसके नियंत्रण हेतु कार्बोफ्यूरान 3G की 1 किलोग्राम दवा प्रति नाली की दर से खेत में मिलाएं। पर्णचित्ती रोग में पत्तियों एवं दूसरे बाहरी भागों पर बैंगनी भूरे किनारे वाले असंख्य धब्बे बन जाते हैं तथा अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां समय से पूर्व ही गिर जाती हैं। इसके नियंत्रण हेतु सहनशील किस्मों का प्रयोग करें तथा फफूंदी नाशक थायराम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए एवं पत्तियों पर 20 ग्राम कार्बंडाजीम या 40 ग्राम मैंकोजेब का 20 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: पर्वतीय क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां एवं वैज्ञानिक खेती। अभी किसान भाई डॉक्टर शिव दयाल से इस विषय पर जानकारी ले रहे थे और अब इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर।

अमल एंटनी सुगम संगीत और मार्गी मधु लोक संगीत, ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सायं 6:30 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 2:45 पर फिल्म संगीत एक ही फनकार में हमारे आज के फनकार होंगे अभिनेता, संवाद, पटकथा और निर्देशक महेश कौल। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे अपराह्न 3:00।

अपराह्न 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिएगा

साइन 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे महिपाल सिंह मेहता। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनते हैं शाम 5:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा विश्व खेल पत्रकार दिवस। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहता है साइन 5:45। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व खेल पत्रकार दिवस पर। भक्ति संगीत में कुछ भक्ति रचनाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं संध्या 6:41 पर। आज के कलाकार होंगे अनुपमा देश पांडे और अनूप जलोटा।

संध्या 7 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। आज की बातें होंगी धान के खेत में खाद की मात्रा और मिट्टी की जांच विषय पर, और आज की सलाह होगी खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर। साथ ही चर्चा सुनिएगा वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता, और वृहद स्तर पर ब्रोकली उत्पादन करते प्रगतिशील कृषक प्रकाश चंद्र उपाध्याय से भेंट वार्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे। भेंट करता होंगे प्रमोद पांडे। समय याद रखिएगा 7 बजे कार्यक्रम किसान वाणी।

कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम धरोहर प्रसारित किया जाएगा और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। संध्या 7:40 पर और पुनः रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। श्रोतो, एक ही फनकार में हमारे आज के कलाकार हैं अभिनेता, पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक महेश कौल। 10 अप्रैल सन 1911 को जन्मे महेश कौल भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से एक फिल्म निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रमुख फिल्में हैं तलाक, जीवन ज्योति, दीवाना और सपनों का सौदागर। दोस्तों, हेमा मालिनी जब अपनी पहली फिल्म सपनों का सौदागर में आई तब वे मात्र 16 वर्ष की थी और उनके हीरो थे अपने समय के शोमैन राज कपूर। तब फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उन्हें नाम दिया गया ड्रीम गर्ल और इस ड्रीम गर्ल को पहली बार पर्दे पर उतारा जोधपुर में जन्मे फिल्म निर्देशक महेश कौल ने। खास बात यह है कि तब हेमा मालिनी को अभिनय बिल्कुल नहीं आता था और उन्हें अभिनय का पहला पाठ पढ़ाया था महेश कौल ने। तो आइए सुनते हैं हेमा मालिनी पर फिल्माया गया महेश कौल द्वारा निर्देशित फिल्म सपनों का सौदागर से ये खूबसूरत नगमा।
1: It's tough.

तो महेश कौल ने फिल्म जीवन ज्योति में शम्मी कपूर को ब्रेक दिया, जिसमें वे पहली बार शमशेर राज कपूर से शम्मी कपूर बने। जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुए राजेंद्र कुमार को भी महेश कौल ने फिल्म तलाक में पहली बार हीरो बनाया। हास्य अभिनेता महमूद को उन्होंने फिल्म अभिमान में ब्रेक दिया और फिल्म नौजवान में वे प्रेमनाथ को लेकर आए। फिल्म नौजवान का एस डी बर्मन के संगीत से सजा और लता मंगेशकर का गाया एक गीत आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। तो आइए सुनते हैं वो खूबसूरत गीत।

श्रोता महेश कौल फिल्मों में गीत और संवाद लिखने के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म नया संसार से अभिनेता के रूप में की। महेश कौल बैंक की नौकरी और पत्रकारिता को छोड़कर मुंबई आए थे। उनके निर्देशक के रूप में पहली फिल्म अंगूरी आई। उन्हें पहचान मिली फिल्म गोपीनाथ से, जिसमें लीड रोल में राज कपूर थे। उन्होंने नूतन के साथ फिल्म आखिरी दाव बनाई और फिर अभिनय में लौट आए। गुरुदत्त की चर्चित फिल्म कागज के फूल में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन उनकी भूमिका में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं था। विजय आनंद की फिल्म तेरे मेरे सपने में उन्होंने देवानंद के साथ काम किया।

तो महेश कौल ने कोई 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्में की, जिनमें 15 फिल्मों का निर्देशन किया, 3 में अभिनय किया, 3 फिल्मों की कहानी लिखी और 5 फिल्मों का निर्माण किया। दोस्तों कहते हैं कि अपने आखिरी दिनों में जब वे नानावटी अस्पताल में भर्ती थे तो बेहोशी की हालत में भी बड़बड़ाते थे। लाइट ऑन कैमरा एक्शन, उनका 2 जुलाई सन 1972 को निधन हुआ। उनकी आखिरी फिल्म संजीव कुमार अभिनीत अग्निरेखा थी, जो उनके निधन के बाद 1973 में रिलीज हुई। आइए चलते चलते आपको सुनवाते हैं अग्निरेखा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, ये था आज का महेश कौल की पुण्यतिथि पर आधारित उन्हें हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि स्वरूप एक ही फनकार कार्यक्रम। और अब इसी के साथ अपनी रेडियो सखी रोशनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

एक ही फनकार अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। लीजिए अब पेश है सदाबहार फिल्मी गीत।

दोस्तों, बॉलीवुड में आज के दौर में ऐसे कई अभिनेता अभिनेत्रियां हैं जो गायकी के क्षेत्र में भी उस्ताद हैं, मगर 40 और 50 के दशक में ऐसी महिला कलाकार की कल्पना करना मुश्किल था। और उस दौर में एक अदाकारा ऐसी आई जिनके अदाओं में गजब की नज़ाकत शामिल थी। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया की, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। वो पास रहें या दूर रहें, नुक्ता ची है गमे दिल और दिले नादा तुझे हुआ क्या है जैसे उनके गाए गीत

सुनकर आज भी जहन में सुरैया की तस्वीर उभर आती है। उन्हें भारत से बेइंतहा प्यार था। इसका सबूत है कि जब 1947 में विभाजन के समय उनके वालिदान पाकिस्तान की नागरिकता लेकर भारत छोड़ गए, तब भी सुरैया भारत में ही रहीं।

श्रोताओ, गीता दत्त एक महान गायिका थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मेरा नाम चिंचिंचू, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, यह है मुंबई मेरी जान जैसे कई खूबसूरत गाने दिए। वो अगर ऐसे ही गाती रहती तो उन्हें वो पहचान ज़रूर मिलती जिसके वो काबिल थी। मगर गुरु दत्त में उलझी गीता दत्त इतना टूट चुकी थी कि उन्होंने अपने सपने को ही पीछे छोड़ दिया। गीता घोष रॉय चौधरी को लोगों ने जाना तो गुरु दत्त की पत्नी गीता दत्त के रूप में। आइए अब आपको सुनवाते हैं गीता दत्त का गाया हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये सदाबहार गीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। आइए अब बात करते हैं मशहूर कॉमेडियन और पार्श्व गायिका उमा देवी खत्री की। उनके मोटे होने के कारण वे फिल्मी दुनिया में टुनटुन के नाम से जानी जाती थीं। 11 जुलाई 1930 को यूपी के भारत में जन्मी उमा देवी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनका एक 9 वर्ष बड़ा भाई था हरी, जो उनका ख्याल रखता था, लेकिन कुछ समय बाद उसका भी निधन हो गया। टुनटुन को बचपन से गाने का शौक था और वे मुंबई आकर सिंगर बनना चाहती थीं। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें जब भी गाने का मौका मिलेगा

तो वे नौशाद के लिए गाएंगी। और एक दिन चुपचाप रिश्तेदारों से भागकर मुंबई आ गई। मुंबई में सीधे संगीत निर्देशक नौशाद अली के पास गई। इन्होंने नौशाद साहब से कहा था कि वो गा सकती हैं और अगर उन्होंने उन्हें काम नहीं दिया तो वे सागर में डूबकर जान दे देंगी। नौशाद ने उन्हें सुना और उसी समय काम दे दिया। उनका पहला गीत फिल्म दर्द में अफसाना लिख रही हूँ था, जो सुपर हिट हुआ और टुनटुन की किस्मत चमक गई। टुनटुन का ये गाना एक पाकिस्तानी अख्तर अब्बास काजी को इतना पसंद आया कि वो अपना मुल्क छोड़कर भारत आ गए और टुनटुन से शादी कर ली। तो आइए सुनते हैं ऐसे जादुई गीत को।

दोस्तों, वर्ष 1930 और 40 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक भारतीय शास्त्रीय गायिका और पार्श्व गायिका थी जहराबाई अम्बालेवाली। वो 1944 में रतन के हिट संगीत से अखियां मिला के, जिया भरमा के और ए दीवानी के गीतों में अपनी भारी आवाज़ वाले गायन के लिए जानी जाती थीं। अनमोल घड़ी में शमशाद बेगम के साथ जुगलबंदी गीत उड़न खटोले पे उड़ जाऊं भी उनके मशहूर गीतों में से एक हैं। राजकुमारी शमशाद बेगम और अमीर बाई कर्नाटकी के साथ वे हिंदी फिल्म उद्योग में पार्श्व गायकों की पहली पीढ़ी में शामिल थीं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

तो 14 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जन्मी शमशाद बेगम, वे एक ऐसी भारतीय गायिका थीं जो हिंदी सिनेमा उद्योग में आरंभिक पार्श्व गायिका के रूप में आईं। शमशाद बेगम एक बहुमुखी कलाकारा थीं जिन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल और पंजाबी भाषाओं में लगभग 6000 से भी अधिक गीत गाए। 23 अप्रैल सन 2013 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन वे हमारी स्मृतियों में और अपने इन गीतों के जरिए हमारे जहन में आज भी जिंदा हैं। उन्हें वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आइए कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम और चीतलकर का गाया पतंगा फिल्म का ये खूबसूरत सदाबहार गीत।

श्रोताओ, आइए चलते चलते बात करते हैं गायक, संगीतकार, अभिनेता अमित कुमार की। लेजेंड सिंगर किशोर कुमार और गुहा ठाकुरता के बेटे अमित कुमार 70 के दशक से बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों में संगीतमय योगदान दे रहे हैं। खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाने वाले अमित जी एक रियलिटी शो पर सवाल उठाकर काफ़ी सुर्खियों में आए थे। वे अपने पिता की तरह जब भी स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, समा बांध देते हैं। अमित कुमार के अनुसार उनका करियर समंदर की लहरों की तरह है, जो कभी ऊपर और कभी नीचे होती रहती हैं। बहरहाल, इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं अमित कुमार का गाया तेरी कसम फिल्म का ये सदाबहार गीत। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, ये था आज का सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम। और अब इसी गीत के साथ अपने रेडियो सखी रोशनी वालिया को दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाज़त। कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे, तब तक के लिए कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार।

सदाबहार फिल्मी गीत अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। अपनी सायंकालीन सभा में अपराह्न 4 पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए।
0: जी, फिर तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स में ज्वाइन किया। जी
0: जी, तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें, उसमें एनडीबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एम्बुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था, बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
0: अच्छा, हाँ। तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: जनरल ड्यूटी जी, जी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए।
0: जी
1: हाँ। और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ। जी
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
1: सलोनबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत?
1: अच्छा, थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत।
0: अच्छा,
1: हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई ग्राम
0: बटालियन।
1: जी जी।
0: अच्छा
1: जी, जी।
0: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
0: अच्छा।
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई।
0: अच्छा,
1: असम में आ गई, हॉली में। जी
0: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
1: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्शुंग में मेरी पोस्टिंग
0: जी
1: है।
0: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
1: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
0: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, 50, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
0: जी
1: जी हाँ। लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज़ को हम याद
0: अच्छा
1: करते हैं।
0: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था?
1: जी
0: जी। तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं?
1: जी, क्योंकि इसे बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में।
0: जी
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
0: यानी कि जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ,
0: इन्फॉर्मेशन
1: जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है।
0: जी जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई एसएसबी ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?

0: अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसका फॉर्म, मार्केट में फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी, तो ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
1: जी। सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑवर बिलेविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माय ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से, जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी, ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर, आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब एसएसबी ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
0: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
1: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें,
0: फोर्स से ही मैंने
1: जी। आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये
1: जी। अच्छा। इसमें
0: कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
1: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
0: सिखाया जाता है
1: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा हार्श और ज़्यादा टफ होती है?
0: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं।
1: अच्छा।
0: खाना। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है, कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
1: अच्छा,
0: चलने से लेके हर चीज। और
1: अच्छा।
0: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल।
1: अच्छा।
0: से कैसे लड़ना है,
1: यानी कि पूरा
0: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
1: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
0: जी,
1: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
0: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी जंगल।
1: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
0: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है।
1: अच्छा।
0: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
1: तो एक लीटर पानी में,
0: 1 लीटर पानी में,
1: और वो भी 72 घंटे,
0: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम।
1: अच्छा। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
0: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है।
1: 1 महीना?
0: जी।
1: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको

0: फील, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
1: अच्छा। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर ये?
0: ये ट्रेनिंग करीब एक मंथ का होता है।
1: एक महीना?
0: जी जी जी जी।
1: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
0: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
1: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है।
0: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
1: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
0: जी जी जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
1: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
0: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
1: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
0: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
1: अच्छा।
0: अचानक सब चीज़ होता है,
1: पहले से नहीं बताते हैं?
0: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
1: ओके, हाँ, एक तरह से ड्रिल, ड्रिल,
0: ड्रिल, ड्रिल, हाँ,
1: अच्छा।
0: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है। जी,
1: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
0: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
1: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
0: तो पूरी टीम को एक जैसा
1: मोटिवेटेड रखना,
0: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप में इनको ढाला जाता है।
1: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
1: जी,
0: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
1: जी, आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं, रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी जी जी,
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
1: अच्छा
0: करना है, जी उसके
1: अच्छा
0: उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीज़ें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है,
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना।
1: जी जी,
0: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जी
1: सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए। जी
1: सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आप को मैं पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
0: जी,
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है, और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद, और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो, और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।

आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात. हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचरस और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं. आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर. शाहिद आपके साथ.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार 2D पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1-star और 2-star वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजीडी चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद वंदे।

0: मातरम यश चिन्ह हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीश पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से छत्तीसगढ़,
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर आपसे,
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से,
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से, जय हिंद कह रहे हैं आपको,
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है कैसे जा सकते हैं और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएँ अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है हमारा जो यंग जनरेशन है उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच सकता है तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा
0: जी। बिल्कुल सर, एक मैसेज है जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी, जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय। अंजलि लोध फ्रॉम गमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने,
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल के तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है।

0: योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 16.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:05 में है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शैल स्वर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं महिपाल सिंह मेहता और पान सिंह बिष्ट का गाया लोकगीत। श्रोता, हमारी इस सभा के सभी कार्यक्रम इस समय आप मीडियम वेव 187.3 मीटर अर्थात 1602 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र और 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर FM केंद्र बागेश्वर से भी सुन रहे हैं।

महिपाल सिंह मेहता और पान सिंह बिष्ट के गाए से लोकगीत के साथ शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नज़र हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात्रि 10 बजे सुनेगा क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संध्या 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 7:30 पर सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही समय पश्चात संध्या 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। उत्तरायण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 5:45। संध्या 6:41 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। किसान भाई किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा बृहद स्तर पर ब्रोकली उत्पादन करते प्रगतिशील कृषक प्रकाश चंद्र उपाध्याय से भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे प्रमोद पांडे। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। सबरस कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धरोहर। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। हमारी कल प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु। तत्पश्चात 6:10 पर आराधना कार्यक्रम के तहत सुनिएगा कुछ भजन। आज की बात कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:40। 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। श्री रामचरित मानस गान पाठ से कल का प्रसंग आप सुनेंगे कल सुबह 7:10 पर। कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी में प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे कमलेश कुमार के गाए कुछ लोकगीत। प्रातः 7:50 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत निर्झर हम आपके

लेकर आएंगे कल सुबह 9:05 पर। 10:05 पर सुनेगा कार्यक्रम सबरंग और 10:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरबहार। फौजी भाई सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए कल सुबह 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे कुमावनी गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12:00। 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम घर संसार। कल इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय होंगे संतुलित जीवन सफल जीवन, सुरक्षित वन तो सुरक्षित हम। सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर। 1:30 पर आप सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1320वीं कड़ी। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे दिन में 2:00। 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में कल सुनिएगा भंडार गृहों में अनाज सुरक्षा विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी रेणु सनवार। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 2:45 पर एक ही फनकार कार्यक्रम में और अपराह्न 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम के तहत। हमारी कल सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00। 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोतीराम का गाया लोकगीत। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और संध्या 6:50 पर आप सुनते हैं गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे संध्या 5:15 पर। 5:45 पर होगा कार्यक्रम उत्तरायण। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम जगत। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में। रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर में और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम के तहत। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8:00। कल रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे आज के शेष और कल दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज हम सब मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। ये दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस उन खेल पत्रकारों के सम्मान में मनाया जाता है जो खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को निष्पक्ष, सटीक और रोचक ढंग से हमारे सामने लाते हैं। दोस्तों, इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1994 में अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार संघ की स्थापना के वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। दोस्तों, खेल पत्रकार केवल मैच का परिणाम बताने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वो खिलाड़ियों के संघर्ष, उनकी मेहनत, उपलब्धियों और खेल भावना की प्रेरणादायक कहानियों को भी समाज तक पहुंचाते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की सही और विश्वसनीय जानकारी भी प्राप्त होती है। आज के डिजिटल युग में खेल पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब समाचार पत्रों के साथ साथ टीवी, रेडियो, विभिन्न वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से भी खेल समाचार तुरंत लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिससे खेलों के प्रति युवाओं की रुचि और बढ़ी है और नई प्रतिभाओं को पहचान मिलने में भी सहायता मिली है। दोस्तों, हालांकि खेल पत्रकारों के सामने भी कई चुनौतियाँ होती है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण ईमानदारी और समर्पण

0: के साथ अपना कार्य करते हैं। भारत में आज खेल पत्रकारिता ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, शूटिंग, अन्य सभी खेलों को मीडिया के माध्यम से व्यापक पहचान मिल रही है। तो दोस्तों, ये दिवस हमें ये संदेश देता है कि खेल पत्रकार समाज और खेल जगत के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु है। तो आइए इस अवसर पर सभी खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान दें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।
1: अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
2: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
1: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
2: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
1: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
2: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में जानकारी हमारी उंगलियों पर है, लेकिन हर जानकारी सही हो ये ज़रूरी नहीं। सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों खबरें वायरल होती हैं, जिनमें से कुछ सच होती हैं और कुछ केवल अफवाह। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज का युवा सही खबरों तक कैसे पहुँचे और फेक न्यूज़ से खुद को कैसे बचाए। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर और अधिक जानते हैं और सुनाते हैं आपको हमारी युवा साथी गुंजन के साथ हुई ये भेंट वार्ता।
6: सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है गुंजन आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में। तो गुंजन, इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, आप हमें और हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
7: जी नमस्कार, मेरा नाम गुंजन है और मैं यही अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ।
6: जी गुंजन, बिल्कुल। तो गुंजन, जैसा कि देखो अभी डिजिटल युग चल रहा है, तो डिजिटल युग ने खबरों तक पहुंचना बेहद आसान बना दिया है, लेकिन सही जानकारी चुनना पहले से ज़्यादा बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में युवाओं के लिए सही खबरों तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है?
7: जी देखिए, आज सूचना का युग है, जहां हर पल हज़ारों खबरें हमारे मोबाइल तक पहुँचती हैं। ऐसे में सही खबर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी हो गया है। सही जानकारी व्यक्ति को जागरूक बनाती है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। गलत खबरें समाज में भ्रम, डर और अफवाह फैलाने का काम करती है। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए उनकी सोच सही जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। यदि युवा केवल वायरल पोस्ट पर भरोसा करेंगे तो वे गलत दिशा में जा सकते हैं। और सही खबरें न केवल ज्ञान बढ़ाती है बल्कि समाज और लोकतंत्र को भी मजबूत बनाती है। इसलिए मेरे ख्याल से खबरों की सत्यता को समझना आज हर युवा की जिम्मेदारी है।
6: जी गुंजन, आपने बहुत ही सही बात कही है कि सही जानकारी जो है व्यक्ति को जागरूक बनाती है और उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए आज के समय में ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि युवा वर्ग जो है सही खबरों तक अपनी पहुंच बनाए।

0: और किसी भी अनजान और अफवाहों पर भरोसा आसानी से ना करें। गुंजन, आप साथ ही ये भी बताइए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर खबर पर क्या भरोसा कर लेना सही है?
1: जी बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर खबर सही नहीं होती है और कई बार तो बिना किसी प्रमाण के पोस्ट वायरल हो जाती है। कुछ लोग लाइक्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए भ्रामक जानकारी भी साझा करते हैं, इसलिए किसी भी खबर को सच मानने से पहले उसके स्रोत की जानकारी करनी चाहिए। यदि वही खबर कई विश्वसनीय समाचार माध्यमों से भी प्रकाशित हुई है तो उस पर भरोसा करना उचित होगा, वरना ऐसे नहीं करना चाहिए। केवल किसी वीडियो या तस्वीर को देखकर निष्कर्ष तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जागरूक युवा वही है जो जानकारी की पुष्टि करने के बाद ही अपनी राय बनाता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही, और सभी युवाओं के लिए ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि सभी युवा वर्ग और सभी व्यक्ति जो भी समाचार सुनते हैं या सूचनाओं का उपभोग करते हैं वो सही जानकारी की पुष्टि करें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचे। गुंजन, देखिए, किसी भी खबर की सच्चाई परखने के लिए युवा कौन कौन से आसान तरीके अपना सकते हैं, या आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई खबर जो है वो सच है या फिर खाली एक अफवाह है?
1: देखिए, सबसे पहले तो खबर के सोर्स को देखें कि वो विश्वसनीय है भी या नहीं। खबर की तारीख अवश्य जांचें, क्योंकि कई पुरानी खबरें नए संदर्भ में वायरल कर दी जाती है। यदि कोई तस्वीर या वीडियो हो तो उसे अन्य समाचार माध्यमों से मिलाकर देखें। खबर का शीर्षक पढ़ने के साथ पूरी खबर भी पढ़नी चाहिए। यदि किसी जानकारी पर संदेह हो तो तथ्य जांच करने वाले विश्वसनीय प्लेटफॉर्म की मदद ली जा सकती है। बिना पुष्टि किए किसी संदेश को आगे भेजने से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हमें बहुत बड़ी गलत जानकारी से बचा सकती है।
0: जी बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है कि कोई भी खबर देखने से पहले ये बात चेक कर ले कि वो किस तारीख की है, किस सोर्स से वो खबर आई हुई है, और उस खबर की हेडलाइन के साथ साथ उसके अंदर की पूरी जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। गुंजन, आप बताइए कि युवाओं को समाचार पढ़ने या फिर देखने की आदत को कैसे विकसित करना चाहिए?
1: देखिए, युवाओं को प्रतिदिन कुछ समय विश्वसनीय समाचारों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। केवल मनोरंजन आधारित सामग्री देखने के बजाय देश, विज्ञान, शिक्षा, खेल और रोजगार से जुड़ी खबरों पर भी ध्यान देना चाहिए। अलग अलग माध्यमों से जानकारी लेने पर विषय की बेहतर समझ बनती है। समाचार पढ़ते समय यह भी सोचना चाहिए कि उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नियमित रूप से खबरें पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमें हेल्प मिलती है। ये आदत जो है व्यक्ति को जिम्मेदार और एक जागरूक नागरिक बनाती है।
0: जी गुंजन, बिल्कुल सही बात आपने कही है। जो बच्चे, जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो समाचार पढ़ें और नई नई जानकारियाँ हर चीज़ के बारे में प्राप्त करें। गुंजन, आप ये बताइए कि आप खुद एक युवा हैं तो फेक न्यूज़ से समाज पर और युवाओं पर स्पेशली क्या प्रभाव पड़ता है?
1: देखिए, फेक न्यूज़ जो है वो लोगों में ना बहुत ज़्यादा भ्रम और अविश्वास पैदा करती है। कई बार इससे सामाजिक तनाव और अफवाहें फैल जाती है। यदि युवा गलत जानकारी पर विश्वास कर ले तो उनकी सोच और निर्णय दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं, और कई बार झूठी खबरें किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं। गलत जानकारी समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी करती है, इसलिए फेक न्यूज़ से बचना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि एक जागरूक समाज वही है जो सच और झूठ में अंतर करना जानता हो।
0: जी बिल्कुल सही बात है। अंत में गुंजन, आप हमारे युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी जिससे वे सही खबरों तक अपनी पहुंच बनाएं और हमेशा खबर के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास करें?
1: देखिए, आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और हर कोई सूचना का उपभोक्ता भी है, साथ ही उसे साझा करने वाला भी है। तो मेरा संदेश यही है कि हर खबर को आंख बंद करके स्वीकार ना करें। पहले सोचें, फिर जांचें और उसके बाद ही विश्वास करें। केवल वायरल होने से कोई जानकारी सही नहीं हो जाती, क्योंकि विश्वसनीय समाचार सोर्स से जुड़े और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बना। बिना पुष्टि किए किसी भी संदेश को आगे ना भेजें। डिजिटल दुनिया में जिम्मेदार व्यवहार ही सबसे बड़ी जागरूकता है। यदि आज का

0: युवा सही जानकारी को महत्व देगा तो वह स्वयं भी सशक्त बनेगा और समाज को भी सही दिशा देने में अपनी भूमिका निभाएगा।
1: जी कुंजन, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ साझा की है कि एक सशक्त युवा ही और एक समझदार युवा ही समाज को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो कुंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चलिए दोस्तों, ये तो थी कुंजन के साथ हुई भेंट वार्ता। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के अंक रोजगार समाचार की ओर और देते हैं जानकारी इस सप्ताह निकले कुछ प्रमुख रोजगारों की। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट अफसरों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कुल 769 पदों पर रिक्तियां जारी की हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर। दोस्तों, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में TGT लिफ्ट ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर आवेदन जारी। कुल 1969 पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने विभिन्न सरकारी बैंकों में IT ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी समेत अन्य पदों पर भर्तियां जारी की हैं। कुल 745 पदों पर रिक्तियां जारी की गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बरौनी रिफाइनरी यूनिट में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरने हेतु आवेदन मांगे हैं। कुल 432 रिक्त पद हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 899 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। आवेदन डाक द्वारा किया जाएगा और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें वेबसाइट bro.gov.in पर। दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में इंजीनियर समेत अन्य पदों पर आवेदन जारी। कुल 175 पदों पर आवेदन जारी किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई है और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट nhsrcl.in पर। चलिए दोस्तों, रोजगार समाचार में बस इतना ही। अब करते हैं कार्यक्रम में आपका मनोरंजन और सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की तरफ और डालते हैं नज़र आज यानी 2 जुलाई को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाणा के किले पर हमला किया था। तब उस दुर्ग पर कान्हड़ देव के भतीजे चौहान सरदार शीतल देव का कब्जा था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की हत्या की गई थी। आज के दिन वर्ष 1777 में अमेरिका के वारमोंट शहर में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। दोस्तों, वर्ष

1940 में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह भड़काने के आरोप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1940 में हिटलर ने ब्रिटेन पर हमले का आदेश देते हुए ऑपरेशन सी लायन की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन वर्ष 1983 में स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कल्पक्कम में काम करना शुरू किया था।

2002 में स्टीव फोसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1948 में प्रसिद्ध जन कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें रोज पूछते हैं हम आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, भारत में GST कब लागू हुई थी? जिसका सही उत्तर है 1 जुलाई वर्ष 2017 में। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन और सहानवास अब्बासी। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया। SM जावेद गुमला झारखंड से। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है?

अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत छू आपु सभी लोग न कार्यक्रम में। कार्यक्रम में रोजे की चार आपू लोगों दगड़ बातचीत करूल और आपू लोगों के जानकारी दियुल और दगड़ है आपू लोगों मनोरंजन ले करूल कुमाऊनी और गढ़ वाली लोकगीतों दगड़। श्रोताओं कार्यक्रम में सबसे पहली बात करनू आजक महत्वपूर्ण दिवस पर। श्रोताओं आज विश्व खेल पत्रकार दिवस छू और हर साल 2 जुलाई हूँ विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाई जा। यह दिन खेल पत्रकारों की मेहनत समर्पण और समाज में उनकी भूमिका के सम्मानित करने के लिए मनाई जा। श्रोताओं पत्रकारिता हर क्षेत्र में अपन महत्वपूर्ण योगदान हूँ, लेकिन अगर बात करी जाओ खेल पत्रकारिता की तो खेल पत्रकारिता खेलों दुनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका पूरी करे। यह केवल खेलों जानकारी नहीं दिन बल्कि खेल और खिलाड़ी

समाजीकरण और खेल पत्रकारों के सामने उणी वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करण छु। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन दुनी भर खेल पत्रकारों के एक मंच पर लुणक दगड़ दगड़ उनर अधिकारों का रक्षा करण और पत्रकारिता क्षेत्र में गुणवत्ता और नैतिकता के बढ़ावा देने के लिए काम करूं। श्रोतम, वर्तमान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन 160 है ज्यादा देशों पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने लग रहा। और अगर बात करी जाओ हमर देश है तो हमर देश में खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा करी जा, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशनक सदस्य संगठन छू। श्रोताओं, खेल पत्रकारिता खेलों के एक नई आयामक रूप में प्रस्तुत कर रखो, जहां दर्शक खेलों का आनंद लेना दगड़ दगड़ उनर पछिले कहानियों के, उनर संघर्षों के और खेलों उपलब्धियों के लिए आसानी समझ जानी। और श्रोताओं, जैसी जैसी बखत अघिल बढ़न फैटो और हम डिजिटल युग तरफ अखिल बढ़न लागरिया, उसी उसी के हम सबू में जो ले खेल प्रेमी छे, चाहे जैके जो ले खेल पसंद हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, हम सब अपन अपन पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में जाननक बारे में ले उत्सुक रुनु। तो खेल पत्रकारिता के माध्यम हमू के हमर पसंदीदा खेलों दगड़ दगड़ हमर पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में ले जानकारी मिल जाए। तो खेल पत्रकार हर आयाम पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के पूर करनी, उन हर जाग पर खेल खिलाड़ियों इंटरव्यू लेनी, उनर बारे में हमू तक जानकारी पूजनी, जैल हमू के कह न कह अपन खिलाड़ियों के बारे में, उनर निजी जीवन के बारे में, या कतुक बार उनर खेल संबंधी उनर जो ले रणनीति होनी उनर बारे में भली भा हमू के जानकारी मिल जाए। और यैल दर्शक खेलों के बारे में जागरूक ले रुनी और यल के हो कि अलग अलग खेलों बटी प्रेरित है बेर खेलों के अपन जीवन में शामिल करणक मौक ले दर्शकों के या फिर हमू के मिल जा। श्रोताओं, यह दिवसक अवसर पर बहुत से समाचार एजेंसी अपन खेल पत्रकारों के सम्मानित करणक लीजिए अलग अलग कार्यक्रमों के लिए आयोजन करनी और उनरी उपलब्धियों के लीजिए उन्हों के सम्मानित ले करनी। और वास्तव में श्रोताओं, खेल पत्रकारों के सम्मान मिलन, चाहे कोई ले पत्रकार छे उनके सम्मान मिलन बहुत आवश्यक छू, किले की उन हर तरीके हम लोगों तक हर संभव जानकारी पूजने कोशिश करनी, हर संभव जानकारी के हमके दिनी और सटीक जानकारी हमके देने कोशिश करनी। तो यह लीजिए उनर सम्मान करण ले बहुत आवश्यक छू।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आप कार्यक्रम में अघिल बढ़नू और बात करनू वन महोत्सव। श्रोताओं, पूर देश भर में 1 जुलाई बटी 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाई जान लाग रहो। और श्रोताओं, ये शुरुआत 1 जुलाई 1950 में करी गए और यके शुरू करो भारतक तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जूल। श्रोताओं, हर साल जुलाई महीनक पहल हफ्ते में वन महोत्सव मनाई जा और यो वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता एक ठुल उत्सव छू। श्रोताओं, वन महोत्सव मनोनक मुख्य उद्देश्य पेड़ पौध लगुण तो छुई दगड़ में नागरिकों के यकलिजी जागरूक करण यक एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छू। और श्रोताओं, यो बात हम सब जानू कि पेड़ पौध जंगो पर्यावरण हमर लिजी कतुक आवश्यक छे, उनर कतुक भूमिका हमर जीवन में छू। लेकिन श्रोताओं, वीक बाद ले बदलते बखत दगड़ हम रोज यह देखनू कि लगातार पेड़ों कटान होने लाग रहो, लगातार जंगलों क्षेत्रफल कम होने लाग रहो, तो यह जलवायु परिवर्तन जस गंभीर समस्या हमर समण में ठाड़ होने लाग रही। और श्रोताओं, एक पर्यावरण दिवस के अवसर पर या फिर वन महोत्सवों के अवसर पर कुछ पेड़ लगवेर उनके छोड़ देण और अगिल साल फिर से कुछ पेड़ लगे देण, यह कोई समझदारी काम नहीं है। हम सबू है जरूरी कर्तव्य यह छू कि हम जोले पेड़ के लगुनु वीक रक्षा हमुके जरूर करण छे। अगर हम पेड़ लगुण में सक्षम नहतू तो एक लगाई हुई पेड़ के बचुड़क प्रयास हमुके जरूर करण छे। अगर हम पेड़ यह वन महोत्सव में पहली तो हमुके कोशिश करण छे कि हम ज्यादा है ज्यादा वृक्षारोपण करूँ, और अगर जो वृक्ष हमू लगा राखी, जो पेड़ पौध हम लगुण लाग रिया, उनू में हम लगातार उनर देखरेख करूं, पानी बखत उनके पानी दियूं, खादक बखत उनके खाद दियूं, लगातार उनर देखरेख करूं, उनके देखूं हूं। अगर हम उन जंगल में लगा रखी तो बखत बखत पर लगातार उनर देखरेख हम करूं, उनके देखूं हूं जूं, तो तब हमार ये जो पेड़ लगोना कार्यक्रम या फिर जो ये वन महोत्सव छू ये तब सफल है सकूँ। केवल पेड़ लगुणल हम वन महोत्सवक महत्व के नहीं समझ सकन, जब हम लगाई हुई पेड़ों के बचूल, जब हम उनर प्रति अपन कर्तव्य के पूर करूल, तबे वन महोत्सव जस यो जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाई जानी इनर उद्देश्य तबे पूर है सकूं। और श्रोताओं, हर साल वन महोत्सव एक थीम यानी कि एक विषय पर आधारित हूँ, तो यो साल एक यानी साल 2026 एक थीम छू हरियाली बणूनी वल पहलू माध्यमेल धरती के ठीक करण। तो बिल्कुल श्रोताओं, हम सबों के धरती के ठीक करण छू, किले की लगातार हमर धरती पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़न लाग रही, चाहे जलवायु परिवर्तनक माध्यमल कहो कि लेकिन लगातार गर्मी बढ़न लाग रहे, द्योग बखत द्यो नहीं हुन, ह्यूक बखत ह्यू नहीं पड़न, और पानी की तो कमी होने लाग रहे, पेड़ पौधों की तो कमी होने लाग रहे, हमर जो वन्य जीव जंतु छे उन्हें संख्या में लगातार गिरावट होने लाग रहे, तो यह सब कहें न कहें हमर प्रकृति के प्रभावित करण लाग रही, हमर धरती के नुकसान पूजन लाग रही। तो श्रोताओं, धरती के ठीक करण यह जो उद्देश्य छू यह तबे पूर है सकूँ जब हम सब अपन अपन कर्तव्युक निर्वहन भली भा करूल। और यह हम कसी कर सकनू, यह के हम पेड़ लगबेर, लगाई हुई पेड़ों देखभाल करबेर, यह के अलावा अपन आसपास गंदगी नहीं फैलेबेर, कचरा प्रबंधन करबेर, और ले बहुत से नन्नन जो रोजमर्रा के हमार आदत छे उनके सुधार बेर हम अपन पर्यावरण के, अपन प्रकृति के, अपन धरती माँ के बचे सकनू। और जब हम अपन नन्नन कर्तव्यों के निभूल तबे यो वन महोत्सव जस कार्यक्रम सफल है सकल। तो श्रोताओं, वन महोत्सव के अवसर पर वन के छे और वनों हमर जीवन पर के प्रभाव पड़ू कतुक जरूरी हमर लीजिए यो छे और इनर संरक्षण हम कसी कर सकनू यो सब चीजों की जानकारी लीजिए हमूल कार्यक्रम में शामिल कर रखो मानस खंड विज्ञान केंद्र शालीधार अल्मोड़ा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप मेहता जी के। तो कार्यक्रम में अघिल आप लोगों के सुनू डॉक्टर प्रदीप मेहता दगड़ करी हुई हमर यो बातचीत। आज हमने कार्यक्रम में शामिल किया है मानसखंड साइंस सेंटर अल्मोड़ा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप मेहता जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
0: नमस्कार जी।
3: सर जैसा कि पूरे देश भर में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये वन महोत्सव क्या है और इसे मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है।
0: देखिए नेहा जी, वन महोत्सव बेसिकली एक हमारा जो पेड़ों का त्योहार भी कहा जाता है, इसे आप जंगली पेड़ों की बात करें या जो फलदार वृक्षों की बात करें, ये सभी आते हैं। इसकी शुरुआत जुलाई 1950 में से शुरू हुई थी। को भारत सरकार ने वनों की कटाई के प्रभाव को रोकने पर जोर देने के लिए एक वन महोत्सव का प्रोग्राम तैयार किया था, जिसके थ्रू जो हमारे जो पहाड़ों में और जो मैदानी क्षेत्रों में जो जंगलों का प्रतिशत है वो उसका रखरखाव हो सके। इस कारणवश हम ये वन महोत्सव मनाते हैं और हमारे पूरे भारत में हम वन महोत्सव मनाते हैं। विभिन्न प्रकार के का योगदान है वनों का हम पे।
3: सर अब जैसे हम वन महोत्सव की बात कर रहे हैं, हम वनों की बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत सरल भाषा में यदि मैं जानना चाहूँ तो वन क्या है, किस प्रकार हम वनों को जंगलों को परिभाषित कर सकते हैं।
0: देखिए आप साधारण परिभाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉरेस्ट का जो पहला शब्द एफ है उसका मतलब है फूड, मतलब खाद्य। फॉर्डर मीन्स जो जो

0: पत्तियां हैं, चाहे आप घास के तौर पे कहें, फ्यूल माने जो लकड़ी, जलाऊन लकड़ी, या किसी भी तौर पे हम आम नागरिकों के काम आती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र पे, एक बार जैसे विभिन्न प्रकार के फल पदार्थ मिलते हैं, बात आती है ओ ऑक्सीजन। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है ऑक्सीजन है। अगर वनों को हम ऐसे ही अगर रखरखाव रखे रहें तो हमारे सबसे जो मुख्य बिंदु है वो ऑक्सीजन है,
1: बिल्कुल
0: जिसके द्वारा ही हम लोग जीवित हैं। और उसके बाद आती है वर्षा, रेन, बारिश की बात करते हैं। अगर वनों का कटान और अप्रत्यक्ष रूप से अगर इसका दोहन होगा तो आप देख सकते हैं कि इतने जो आपके भूस्खलन हो रहे हैं, आज आपके कहीं कहीं पे बादल फट रहे हैं, ये सब इसी कारण हो रहा है, अगर वनों को हम नहीं बचा पाएंगे तो। और चौथी,
1: बिल्कुल
0: तीसरी, इसमें जो चौथा बात आती है, जो इन्वायरमेंट, ई इन्वायरमेंट सेफ्टी की बात आती है, उसको कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण देखा जाए तो वन हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, कारण हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, चाहे हम कहें पानी के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, जलवायु परिवर्तन में, कोई भी जितने भी कोई भी घटक चेंज हो रहे हैं वो सब इसी जंगल के उससे हो रहे हैं। बात आती है एस की। एस का मतलब है सॉयल, मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो जो भू कटाव हो रहा है और जितने भी आजकल ये जो फ्लड, जितने भी बाढ़ें आ रही हैं, सब इसी कारण हो रही हैं, तो जंगल का होना एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब आती है टी, टिम्बर। टिम्बर इमारती लकड़ी, मेरी समझ से मैं कह सकता हूँ कि हर घर में, हर आदमी, हर किसी भी प्रकार से दिखा दो इमारती लकड़ी, उसके घर में करीबन 70 से 80% इमारती लकड़ी का उपयोग हो गया होगा। अगर जंगल की एक आसान परिभाषा में देखिए तो आप देख सकते हैं कि खाद्य, आपका ऑक्सीजन, बारिश, पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण और इमारती लकड़ी, ये मुख्य बिंदु हैं जो आपके फॉरेस्ट को, जो वन को परिभाषित करते हैं।
1: बिल्कुल
0: इससे आप एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि वन हमारे लिए एक तरह के, एक प्रकार का हमारा घर ही है, जिसे हम कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इसे हमें देखना होगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को वन की परिभाषा बहुत आसान शब्दों में समझाई है। तो सर, जैसे हमारे पूरे देश भर में बहुत अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते, तो आप हमारे श्रोताओं को हमारे उत्तराखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के जो वन पाए जाते हैं उनके बारे में बताइए।
0: देखिए, उत्तराखंड में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें जब हम हल्द्वानी से ऊपर को आते हैं वो एक उष्ण कटिबंधनी वन होते हैं, जिन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, जैसे कि उसमें हमें साल, शीशम, रल ये आदि मिलते हैं। उन्हीं के साथ साथ कुछ वन्य जीव भी साथ में उनके संग वन, तो उसमें बाघ, जैसे टाइगर, हिरन, हाथी आदि वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद हम जैसे ही थोड़ा ऊपर आके अगर देखा जाए तो 1000 मीटर के आसपास के एल्टीट्यूड, मतलब उस ऊंचाई पर आते हैं, तो हमें वहां पर चीड़ के जंगल और मिश्रित, चीड़ और साल के मिश्रित जंगल मिल जाते हैं। तो चीड़ में आपको चीड़ के संग साल मिल जाएगा, रोहिणी एक पेड़ है वो मिल जाएगा आपको। उससे थोड़ा ऊपर उठने पे हमें ये मिलेगा कि जैसे आप देखेंगे करीबन 1500 से 1800 के बीच जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, उस पर आपको बांझ और चीड़ के मिश्रित वन मिलेंगे, जहां पर आपको बांज के साथ साथ आपका बुरांस, तिलौंज और बहुत सारे। उसके बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि ठंड वाली जगह, जहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट जो कहते हैं, थोड़ा सा उपोष्ण वन मिलते हैं, जहां पर अधिकतर तापमान करीबन 10 से 15 या 20 डिग्री तक जाता है, मैक्सिमम 20 डिग्री जाता है। तो वहां पर आपको बांस की कुछ प्रजातियां मिलेंगी अधिकतर, उसके साथ साथ उतीस मिलेगा और तिलौंज मिलेगा, ये प्रजाति मिलेगी। उसके बाद आती है सब अल्पाइन, जैसे कि उच्च हिमालयी क्षेत्र, जहां से वनस्पति का होना लगभग लगभग खत्म हो जाता है, तो उन क्षेत्र में बांस की एक प्रजाति मिलती है खरसू, वो मिलती है। साथ साथ में भोजपत्र, जो कि देखा जाए तो पौराणिक तौर पर काफी उपयोग रहा है और औषधि और खाद्य पदार्थ में भी काफी उपयोग रहा है। उसके बाद जो हम लास्ट में जब हम देखते हैं ऊपरी सबसे उच्च हिमालय क्षेत्र में, जो लगभग लगभग 4000 मीटर की हाइट पे होते हैं, उस जगह पे हमें घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल कहते हैं। वहां पर अधिकतर देखिए, देख रहे होंगे कि आप अधिकतर बुग्याल में घास के ही मैदान मिलेंगे और कुछ बुरांस की एक दो प्रजातियां मिलती हैं। और खासकर साथ साथ वहां पर जो हिमालय की उच्च कस्तूरी मृग और आपके थार, ये वहां पर जीव मिलते हैं। और इन बुग्यालों में आपको जो कीड़ा जड़ी, कुछ कुछ क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी वगैरह, जो उच्च औषधि जिनकी बहुत ज्यादा आजकल मांग है बाजार में, वो पौधे मिलते हैं।
1: बिल्कुल, क्या वनों का जलवायु परिवर्तन से संबंध है? क्योंकि आजकल हम जलवायु परिवर्तन की बहुत बात कर रहे हैं, तो वनों का और जलवायु परिवर्तन का आपसी संबंध किस प्रकार है?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जब हम किसी शहर पे या कोई बाजार पे जाते हैं, वहां का तापमान और कोई जंगल के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आप किसी वन में जाएंगे तो आपको लगभग लगभग 3 से 4 डिग्री का तापमान का अंतर मिलेगा, वो उस शहर के तापमान से उतना कम होगा। अगर 20 डिग्री तापमान अगर शहर का है तो लगभग लगभग 15 से 16 डिग्री तापमान आपके जंगलों का होगा। तो इसी से आप एक सोच सकते हैं कि जंगल कितने महत्वपूर्ण हमारे लिए, खासकर देखिए।

0: जैसे कि मैं यही बोल रहा था कि ऊंचाई के बढ़ते बढ़ते क्रम पे
1: हाँ
0: जंगलों का परिवर्तन होता है, उनका योगदान भी उसी तरह बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन की बात आ रही है और आजकल के जो वैश्विक स्तर पर देखिए तो तापमान का बढ़ना घटना ये एक ये चलता आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान रख रहे होंगे कि बारिश का भी जो आजकल जो पैटर्न है, जो उसका भी बदलाव है, आप देख सकते हैं कि जाड़ों की जो बारिश है वो आपका लगभग लगभग खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से परिवर्तन होके एक मुश्त बारिश जिसे हम कहते हैं कि एक संत बारिश होना, वो
1: जी
0: बरसात में बारिश कर रही है। इस बार देखिए एक जलवायु परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है, आपको गर्मी में बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं हुआ,
1: जी
0: क्योंकि जो मई जून और अप्रैल मई जून तीनों महीनों में बारिश प्रचुर मात्रा में हुई है। इसको ये देख सकते हैं कि हमारा जो बारिश का जो एक जो गिरने का जो टाइम है या उसका समय है वो परिवर्तन हो रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये कारण बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि हम पौधा लगाने के बाद हम छोड़ देते हैं।
1: जी
0: हमारा सिर्फ एक सप्ताह तक ही हमारा ये रहता है कि हाँ हम वन मौसम मना रहे हैं, लेकिन उसके बाकी पूरे साल भर हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कैसे वनों के साथ साथ उन पौधों का कैसे ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जब कहते हैं कि वनों की एक बहुत अच्छी परिभाषा जब देते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा जंगल की जो हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर एक जंगल को हम अच्छा जंगल कैसे कहें, तो परिभाषा है अगर एक जंगल में चार अगर पौधे हैं उसके बाद चार पौधों में से उसका जो प्रौढ़ावस्था जो युवा अवस्था होगी उसमें से अगर दो बचने चाहिए, उसमें से एक पौधा अगर आपका पेड़ बन गया तो ये आपकी जंगल की बहुत अच्छी परिभाषा है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अगर चार पौधे हैं दो प्रौढ़ावस्था में हो गए बाकी एक आपका बड़ा पेड़ बन गया, तो ये जंगल को पूरी तरफ से बैलेंस करके रखता है। इससे एक अच्छा जंगल बनेगा और उसके जितने भी सहायक वनस्पतियां होंगी वो अच्छी तरह से फलीभूत हो सकती है। हमें ध्यान देना होगा कि हम पौधारोपण कैसे कर रहे हैं और कौन सी प्रजाति हम लगा रहे हैं,
1: जी
0: ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जंगल
1: बिल्कुल
0: को बचाने का तरीका यही है कि हम कोई बाहर की ऐसी प्रजाति न लाएं जिससे कि हमारी जो यहाँ की जो पुराने जो जंगल हैं जो प्राकृतिक रूप से जो हो गए यहाँ पर उनको कोई नुकसान न हो, तो
1: जी
0: उसका इस बात का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को।
1: बिल्कुल। तो सर जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छा एक जंगल बनाया या हमने बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगाए, तो क्या केवल वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना काफी होता है या फिर उनकी गुणवत्ता भी मायने रखती है वहां पर?
0: जी अभी हमने एक शोध किया था, उस शोध के अनुसार हमने जंगलों की वनाग्नि पर हमने एक शोध किया है जो कि पहला शोध है जिसमें हमने मौद्रिक आकलन कर रखा है, इकोनॉमिक आकलन जिसे कहते हैं हम, जिसको हमने पैसों पे उसका आकलन कर रखा है। भारत में पहली बार ये आकलन पे एक हमने शोध प्रकाशित किया है। तो इस शोध में हमने पाया कि जो एक पौधा है जो पेड़ है उसका करीबन 70% हिस्सा उसका जो इमारती लकड़ी में उपयोग होता है।
1: जी
0: तो इससे आप देख सकते हैं कि इमारती लकड़ी कितनी उपयोगी है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम अगर कोई जंगल में कोई पेड़ पौधा लगा रहे हैं तो पहली बात तो वो इमारती लकड़ी होनी चाहिए,
1: जी
0: ये भविष्य के लिए भी है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है। दूसरी
1: जी
0: बात आती है इसमें टूल की बात करते हैं, जलावन लकड़ी की बात। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर अभी भी देखिए गैस होने के बावजूद भी हम लोग लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो इसलिए हमें जंगल की जो लकड़ियां हैं सूखी लकड़ियां को उनका भी करीबन करीबन 8% योगदान है एक जंगल पे जलाऊन लकड़ी का।
1: बिल्कुल
0: बात करते हैं घास की, करीबन 2% घास का योगदान है जंगलों में। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग जो जंगल हैं उन जंगलों में घास का प्रतिशत कितना है, क्योंकि अगर हम देखते हैं साल के जंगल में जाएंगे तो आपको घास नहीं के बराबर मिलेगी। लेकिन अगर चीड़ की बात करें, चीड़ का जंगल एक ऐसा जंगल है जिसमें सिर्फ आपको घास की प्रचुर मात्रा मिलेगी,
1: जी
0: घास की 10 से 15 प्रजातियां मिलती हैं उस जंगल में। तो उससे ये साबित होता है कि चीड़ का जंगल, हम कहते हैं कि हम काफी लोग कहते हैं कि चीड़ का जंगल में बहुत सारे नुकसान है, लेकिन नुकसान भी नहीं कुछ फायदे भी हैं उसके।
1: जी
0: घास काटने के, घास अगर कोई चरवाहे हैं घास जंगल में अगर अपने गाय को अपने जानवरों को ले आते हैं तो वो बहुत उपयोगी है, तो 2% उसका उपयोग होता है। अब बात आती है इसमें अगर औषधि पौधों की बात, तो वो भी बड़ा योगदान देती है, उनका करीबन 1% ही योगदान है भले ही। बात आती है इससे हमारी वाइल्ड एडिबल जो हम वन्य खाद्य फल की बात करते हैं, तब मैं यही बोल रहा था कि हमारे जो अलग अलग वनों के हिसाब से वन्य खाद्य फलों का भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। साल फॉरेस्ट में आपको देखने की हरड़ आपका आंवला मिल जाता है, वही आप चीड़ के जंगल में आएंगे तो कहीं कहीं पर आपका काफल इसके जो चीड़ के जो सूते होते हैं वो भी काम आ जाते हैं। ऐसे ही आप बांस के जंगल में जाएंगे तो आपको काफल तो खूब प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, बुरांस भी खूब प्रचुर मात्रा में मिलेगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हम किसी का हम अगर पौधारोपण कर रहे हैं तो उन पौधारोपण के साथ साथ ये भी ध्यान देना कि प्रजातियों का आकलन कैसे करें और
1: बिल्कुल
0: उसका कौन सी प्रजाति कहाँ पर लगानी, ये हमें पहले जानना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हमें वृक्षारोपण करना है वनों

0: में हम वृक्ष लगा रहे हैं, तो हमें प्रजातियों का खास ख्याल रखना है ताकि हमारे वनों की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो सर आप हमारे श्रोताओं को कुछ अलग अलग प्रजातियों के नाम बताइए जिनको लगाना काफी फायदेमंद हो सकता है, और साथ साथ आप ये भी बताइए कि वृक्षारोपण करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।
1: फुटहिल जो नीचे मैदानी क्षेत्र में शिवालिक, क्योंकि अधिकतर वहाँ पर साल और सागौन का ही उपयोग होता है। साल सागौन बहुत अच्छी बात है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साल सागौन पे ही ज्यादा निर्भर रहता है, क्योंकि उनको उस इमारती लकड़ी और लुगदी के लिए काफी काम आता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम मिश्रित वन भी लगाएं, जैसे आपका हरड़, भेड़ा और आपका आंवला और एक मोरिंगा एक पेड़ है, काफी उसका उपयोग है, अजी अमलतास है, तो इन पौधों का साथ साथ भी यहाँ पर देखा जाए कि एक कुछ प्रतिशत उनका बना दिया जाए। अगर हम दो पेड़ साल के लगा रहे हैं तो कम से कम एक पेड़ हमारा इन फलदार और औषधीय पेड़ों से भी लगना चाहिए। अब बात करता हूँ चीड़ जंगल की। चीड़ जंगल में वैसे तो कोई और वनस्पति थोड़ा मुश्किल से होती है, तो उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें चीड़ के साथ साथ किस ध्यान पे है उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बांज और बांज की कुछ प्रजातियां और साथ साथ में आंवला और कचनार और आपके बुरांस और काफल, इन पौधों का भी चयन करना जरूरी है, ताकि इससे जो जंगल की आग लगने का जो खतरा होता है कम होता है। क्योंकि चीड़ के साथ साथ और पौधे भी जमेंगे तो उससे क्या होगा कि जो पतझड़ होगा वो एक मुश्त न होकर धीरे धीरे पतझड़ होगा और वहां पर उनको नमी मिलेगी और आग लगने की संभावना कम रहेगी। यही बात करता हूँ बांस की। बांस का जंगल खुद में एक बहुत बड़ा एक स्रोत है, चाहे जल की बात करें, चाहे आपका जलवायु परिवर्तन की बात करें, उसके लिए भी बड़ा बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, जो ऊंचाई की सीमा है वो करीबन आपको जो 2000 मीटर तक की आसपास का मिलेगा। तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसके साथ साथ ऐसे कौन से पौधे लगा जाए या पेड़ लगा जाए जिनसे बांज को भी सुरक्षा मिल सके और उसके साथ साथ उन जंगलों का भी विकास हो सके। तो उसमें मैं यही बात करूंगा कि कुछ पौधे जैसे हमें नीली गुलमोहर लगती है, पांगर लगता है, इन पौधों को भी हम साथ साथ में लगाएं, ताकि वनस्पति जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी उपयोगी हो फलदार वृक्ष के तौर पे और पशु पक्षियों के लिए भी उनके लिए भी उपयोगी हो।
0: तो सर आपने वन्य जीवों की अभी बात करी, तो वन्य जीवों का और वनों का आपस में किस प्रकार का संबंध है दोनों का?
1: देखा जाए तो वन्य जीव और वन्य जो पौधे हैं, वन्य जीवन है, वो काफी एक सामाजिक जीवन यापन करते हैं। जैसे कि हम लोग, हमारा समाज है उससे भी बेहतर समाज की तरह रहते हैं। आप देखेंगे कि हर जंगल हर वन में अलग अलग की विविधताएं मिलती हैं। जब हम बात करें रामनगर हल्द्वानी या देहरादून साइड की बात करें, तो वो बेसिकली नीचे तराई क्षेत्र का एरिया आता है। उस क्षेत्र में देखेंगे आपको अधिकतर चौड़े पत्तेदार रोहिणी और ऐसे पेड़ मिलेंगे, वो जिनमें आप विभिन्न प्रजातियां मिल जाएंगी, जो हॉर्नबिल मिल जाएंगी, वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के जो तोते हैं, जो पैराकिट्स कहते हैं, वो मिल जाएंगे आपको, और विभिन्न प्रकार के जैसे बाघ है, तेंदुआ है, काफी विभिन्न प्रकार के सांप मिल जाएंगे, और जो वाइल्ड बियर है भालू मिल जाता है। तो ये इनका एक अलग सा एक पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है, जिससे कि ये उस क्षेत्र को पूरी तरह से संतुलित करते हैं। अब बात करता हूँ चीड़ के जंगलों की। चीड़ के जंगलों में अधिकतर मिश्रित ही मिलता है, घास के बुग्याल जब मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको अधिकतर देखिए कि जो जंगली खासकर मृग जिसकी हम बात करते हैं, काकड़ और भरल, ऐसी चीजें मिल जाती हैं यहाँ पर, और साथ साथ में तेंदुआ, बंदर, लंगूर भी होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर प्रचुर मात्रा में घास भी प्रचुर मात्रा में होती है और फल भी, पुष्प भी प्रचुर मात्रा में होती है। चिड़ियां भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की होती है, कुछ कुछ जो गाँव के आसपास आ जाती है और कुछ कुछ जंगलों में रहती है। अब बात करते हैं बांज के जंगलों में और उच्च हिमालय की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं और कुछ ऐसे वन्य जीव हैं और कुछ ऐसे वन्य पक्षियां हैं जो कुछ समय के लिए अपना जगह परिवर्तन करती हैं। जैसे कि जाड़ों में उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है, तो वो ठंडे से बचने के लिए वो करीबन 2000 मीटर तक भी नीचे आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उनको अपने भोजन की पूर्ति के लिए। तो एक बड़ा अच्छा पर्यावरण का संतुलन, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन किया हुआ है वन्य समाज ने, मैं समाज ही बोलूंगा इसको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ऊंचाई के परिवर्तन के साथ साथ इनका भी परिवर्तन होता है। तो ऊंचे हिमालय में देखेंगे आप कस्तूरी मृग मिलता है, थार मिलता है, मोनाल जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, मोनाल मिल जाता है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर कीड़ा जड़ी जो ग्रामीण और ऊंचे हिमालय क्षेत्र के लोग हैं उससे अपनी आमदनी अर्जित करते हैं। एक संतुलन बना हुआ है।
0: बिल्कुल, यानी कि सर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वन्य जीव है वो अलग अलग वनों के हिसाब से अपनी जीवन शैली को संतुलित करते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो सर क्या सरकार द्वारा भी कोई योजनाएं चलाई जा रही है वन के संरक्षण के लिए?
1: वन के संरक्षण के लिए वन महोत्सव तो सबसे बड़ा उदाहरण है, और साथ में अभी हम एक परियोजना में काम कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं। अब कार्बन क्रेडिट एक भविष्य का एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से एक हब बनने वाला है, एक बहुत बड़ा एक बैंक बनने वाला है। जैसे आज तक हम लोग किसी भी जंगल का आकलन करते थे, जैसे मैंने कोई इमारती लकड़ी की बात करी तो मैंने पेड़ को काट के मैंने उसके इमारती लकड़ी का मैंने आकलन किया कि हाँ ये इमारती लकड़ी इतने लाख रुपए की है और इतने लाख रुपए मैंने इसका ऐसे आकलन कर दिया। लेकिन अब आने वाले टाइम पे जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और ग्रीन जो हरित गैसेस की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें कार्बन क्रेडिट का बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। और आप कुछ सालों में भारत में शायद ये पॉलिसी भी नियम लागू हो जाएंगे कि अपने जंगल को बचाओ, और जितना जंगल आपका जितना आपका क्षेत्र हरा भरा रहेगा, चाहे वो फॉरेस्ट रिजर्व की बात करें, आपकी वन पंचायत की बात करें, और साथ साथ में जो आपके पुराने जो आपके खेत हैं उन एरिया पे भी बात करें। हालांकि थोड़ा कुछ पेचीदे मामले हैं इसमें अभी, लेकिन अभी हम लोग जो शोध कर रहे हैं उसमें हम ये स्कोप ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस पे आने वाले समय पे हम लोग ग्रामीण स्तर पे उन लोग को, या वन पंचायत स्तर पे या अन्य स्तर पे जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, उन लोगों को कैसे उससे धन अर्जित कर सकें। तो
0: बिल्कुल
1: कार्बन क्रेडिट देखा जाए तो एक शोध का ही विषय है, जिसमें हम शोधार्थी लोग जंगल में जाकर उसका मापन करते हैं कि जंगल कितना प्रतिशत भाग जंगल का हमारा है, उस प्रतिशत भाग से हम उसका एक मापन करते हैं। मापन करने के बाद हम देखते हैं कि हर साल जैसे पेड़ों में भी परिवर्तन आते हैं, क्योंकि वो इतने जो प्रदूषण को चाहे कार्बन को इसको वो सोख लेते हैं, तो उससे जो उनकी पेड़ के जो गुलाई में जो वृद्धि होती है, चाहे गुलाई की बात करें, चाहे टहनियों की बात करें, चाहे पत्तों की बात करें, उनमें जो वृद्धि होती है उसका मापन करने के बाद हम लोग उसका आकलन कर सकते हैं। उसका आकलन करने के बाद हम उसको उसका एक आर्थिक रूप से हम उसका आकलन करके कितने रुपए टन के हिसाब से उसका हम आकलन कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान जो आकलन चल रहा है, करीबन 450 से 600 रुपए प्रति टन कार्बन का आकलन चल रहा है। एक ध्यान दे सकते हैं कि अभी तो यहाँ पर लागू हुई नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें इसमें काम कर रहे हैं। हमने एक पुस्तिका भी इसमें प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक है उत्तराखंड के पंचायती वनों में कार्बन अवशोषण का आकलन। एक बहुत सरल भाषा में हमने प्रकाशित की है कि कैसे आने वाले समय पर हम लोग वन पंचायत ही नहीं और अन्य जगहों पर भी हम इसका आकलन को हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है ये हमें एक बहुत बड़ा स्तर पर एक स्रोत दे रहा है कि हम लोग स्रोत को जारी रखकर और आम नागरिक को जागरूक करके हम ये कार्बन क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं और आम नागरिक को लाभान्वित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि पौधे कार्बन अवशोषित करते हैं और उससे हम आजकल कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो सर कौन से वन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन का अवशोषण करते हैं?
1: जी देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो चीड़ का जंगल एक ऐसा जंगल है जो सबसे ज्यादा कार्बन अवशोषण करता है, कि
0: जी
1: चीड़ के आपने पत्तियां देखी होंगी वो बेसिकली स्पाइक कांटे की तरह होती हैं, नुकीली होती हैं। तो जिस पत्ती का जितना क्षेत्रफल कम रहेगा तो वो उतना उत्सर्जन कम करेगी, खाना तो खाएगी
0: हाँ
1: लेकिन वो छोड़ेगी कम। तो इस चीज से ये ध्यान रख सकते हैं कि चीड़ के जंगल हैं वो लगभग लगभग बांस के जंगल से कार्बन ज्यादा कार्बन का अवशोषण करती हैं। उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे चीड़ के जंगल में वो कम लेगा लेकिन कम छोड़ेगा तो अपना भी ज्यादा हो गया। अब बांस के जंगल में देखा जाए तो हम कार्बन के साथ साथ और चीजों को भी देखें, काफी और चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो जल की बात करें, आप चाहे तापमान की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात पूरी बात करें, तो बांस के जंगल को हम थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। लेकिन कार्बन के केस में बांस, चीड़ और साल ये तीनों ही एक दूसरे से काफी संघर्ष कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा आगे चीड़ जाता है। तो चीड़ के जंगल थोड़ा सा ज्यादा कार्बन क्रेडिट को एक मुनाफा दे रहे हैं इसमें, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चीड़ के जंगल को हम मुनाफा दे रहे तो हम ज्यादातर इसके पीछे भागे। लेकिन हमें भी ध्यान रखना होगा कि पूरा ऑल ओवर जो पूर्ण रूप से देखा जाए तो कौन सा जंगल हमको ज्यादा फायदा दे रहा है या हमारे लिए फायदेमंद है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा।
0: जी
1: इसके लिए हमें पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान देना पड़ेगा।
0: तो सर, अब हमने इतनी सारी हमने बातें करी हैं, तो अब वन को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम आम लोगों की भागीदारी उसमें बढ़ाएं, आम लोगों को उस चीज के लिए समझाएं, उन्हें जागरूक करें। तो सर क्या ऐसे उपाय हैं या किन तरीकों से हम आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं वन संरक्षण के लिए?
1: वन देखा जाए तो पर्यावरण का एक हमें एक उपहार स्वरूप पर्यावरण मिला हुआ है वन का। वन से हमें वन का दोहन उतना ही करना चाहिए जितना हमें हमारी आवश्यकता है, और उससे ज्यादा नुकसान करने पे हमें बहुत सारे व्यापक नुकसान दिखने को मिल रहे हैं जो आजकल हाल के दिनों में काफी दिख रहे हैं। ये ध्यान देना होगा कि अगर हम एक पेड़ अगर काटते भी हैं तो अगर कोई परमिशन के उसके भी काटते हैं या अपने खेतों में भी कहीं भी काट दे, तो ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमें एटलीस्ट 2 पौधे तो लगाने। साथ में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पौधे लगाइए, उन पौधों में जो लगे हुए हैं उन्हीं का संरक्षण कर लीजिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी तरफ से योगदान हो जाएगा।
0: जी
1: साथ में ये ध्यान दीजिए कि जो पौधे प्राकृतिक रूप से उसी जगह के हैं, उसी जगह से अगर पैदा हुए तो उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि कोई ऐसे बाहर से कोई नया पौधा लेके आए जिससे कि नुकसान बढ़ जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कुरी घास, एक लेंटाना कैमरा करके काफी प्रचलित है आजकल, वो

0: पूरे जंगल में फैल चुका है, तो उसका नुकसान आपको दिख ही रहा है। वो जंगल को जंगल का स्वरूप न देके अब वो कटीली झाड़ियों का स्वरूप दे चुका है। आप कहीं भी जाइए, आप चीड़ के जंगलों में भरपूर, साल के जंगलों में पूर्ण रूप से उसने कब्जा कर लिया है। आप कुछ टाइम पे आपको बांस के जंगलों में कब्जा करता हुआ दिख जाएगा। तो यही मैं आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी श्रोता जन है और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो मैं उन्हीं से यही मैं निवेदन करूंगा कि लेंटर कैमरा को या तो उसका कोई उपाय निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उस पर भी हम लोग एक शोध पे शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हमारा उस पर शोध का कोई कार्यक्रम शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले भी आप लोग अपने तरीके से अगर उसको समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि उसका उपयोग तो अभी जो हमारे जो नीचे जो दक्षिण भारत में वहां पर काफी उपयोग हो रहा है, क्योंकि वो जो कुरी घास है वहां पर वो बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, और बड़े उसके जो जो डंठल होते हैं वो पेड़ काफी बड़े बड़े रूप में होते हैं, तो वो उसके काफी उपयोगी प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, हमने वहां देखा था कि कुछ लोगों ने एलिफेंट्स वगैरह बनाए थे, कुछ लोगों ने बास्केट वगैरह बनाई थी, जैसे कि ये कुर्सियां हैं ये बनाई थी। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी वो उस स्वरूप में नहीं है, तो हम लोग उसका कोई दूसरा स्वरूप जरूर निकाल सकते हैं कि कैसे इसको हम खत्म करें, और खत्म ना भी हो तो कैसा इसका उपयोग कर सकें। तो ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर अपने पर्यावरण को संतुलित करना है, तो क्योंकि आने वाले टाइम पर देखिएगा जितने भी हमारे प्लान हो रहा है उन खेतों में आपको कुरी घास और ये काला बांस दोनों मिल जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए वन महोत्सव में एक इस चीज का वचनबद्ध रहिए कि जंगल लगाने के साथ साथ उसका उपयोग भी जानिए।
1: जी
0: आप कैसे उसको बता सकते हैं, संरक्षण बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे लगाइए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम पेड़ पौधे लगाने का संरक्षण नहीं करें तो फिर वो तो कोई फायदा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेरी एक आप लोगों से विनती है कि संरक्षण पर जोर दीजिए। आप
1: जी
0: चाहे दो ही पौधे भी लगाएं, लेकिन उनको इतना अच्छा संरक्षित कर दीजिए कि वो आने वाले समय पर एक मिसाल बन के उभरे। तो
1: जी
0: इस तो अपने वन पंचायत पे खूब सुदृढ़ीकरण कीजिए, ताकि उससे आपका जो वन वाला क्षेत्र है वो बचा रहेगा, आपके पर्यावरण संतुलित रहेगा, आपके जो जल आपूर्ति है और जो आपके जो जितने भी चारागाह और जितने भी और आपूर्तियां हैं वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो सके।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप लगातार इतने शोध कार्य करते आ रहे हैं, तो एक शोधकर्ता के रूप में आप पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, वनों को संरक्षित करने के लिए हमारे श्रोताओं को, खास करके हमारे युवाओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: क्योंकि सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उन लोग को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वन हमारे लिए कितने उपयोगी थे और हैं और रहेंगे। अगर वन में ध्यान दीजिए कि जंगलों को हम बचे वनों को हम कैसे बचा सकें, उनका संरक्षण कैसे कर सकें, और उन वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं उनका भी ध्यान देना है, ताकि वो लाभ बड़े लंबे स्तर तक जा सके, दीर्घकालिक रहे। अगर ऐसा ना हो कि हम कोई हमें पता है कि कोई जंगल में कोई पौधा ऐसा है जिसका बहुत औषधि या खाद्य पदार्थ में होता है, तो उस चीज का ध्यान देना है कि वो एक ही टाइम के लिए नहीं, वो लंबे समय के लिए उसका उपयोग किया। जिसके जैसे आजकल बुरांस की बात हो रही है, तो बुरांस का देखिए कि बुरांस का आजकल काफी पेय पदार्थ जूस काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बाजार में मिल रहा है और काफी उपयोग हो रहा है। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बुरांस के जो फूल हैं उनका भी, उनके साथ साथ जब फूल तोड़ने आते हैं अगर हम, तो उन पेड़ों का भी बचाव किया जा सके। ऐसा ना हो कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में पेड़ों का नुकसान कर रहे हैं, और उनकी जो रिजनरेशन, खासकर जो नए पौधे उगने की क्षमता है उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम पुराने पेड़ों पर निर्भर रहेंगे तो नए पौधे कैसे उगेंगे, तो इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे इस बार काफल का प्रचुर मात्रा में था, तो लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि इस बार आग नहीं लगी थी, वनाग्नि नहीं थी। वनाग्नि ना होने के कारण हमें वन्य खाद्य प्रचुर मात्रा में मिला, पूरे महीने भर, 1.5 महीने भर मिला हमको। तो ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि वन का अगर हम ध्यान दें तो वन खुद ब खुद हमारा खुद ब खुद ध्यान देंगी।
1: जी
0: तो मैं यही आप लोग यही बात कहना चाहूंगा कि वनों को जितना हम लोग संरक्षण कर सके, क्योंकि वन महोत्सव के दौरान बात को देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा समय होता है किसी भी वन को नया बनाने के लिए, चाहे पौधरोपण की बात करें, चाहे हम उसकी और जितने विभिन्न स्वरूप है उनकी बात करें, तो उसके लिए हम लोग को ये यही ध्यान देना है कि सबसे बड़ी बात तो हम कौन से पौधों को लगा रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वन संरक्षण के साथ साथ यही ध्यान देना है कि पौधों को लगाने के साथ साथ हम उसका संरक्षण भी करें, वनाग्नि से बचाएं और कम से कम नुकसान दें उन जंगलों को।
1: जी
0: गांव से यही निवेदन है कि वो थोड़ा सा उसको विज्ञान की भाषा के साथ साथ अपने जो ट्रेडिशनल है, पुराने पौराणिक भाषा से भी उसको जाने, और अपने जो बुजुर्ग जो वैद्य हैं, जो हमारे दादाजी लोग उम्र के रहे हैं, उन्होंने इस पे काफी अपने जंगल को पहचाना है, तो उनसे भी थोड़ी ये कुछ कहानियां या उनसे सीख के ये चीज के बारे में जान सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो सर आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमें वनों के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, वन महोत्सव अवसर पर वनुक संरक्षण के लिए बेर आप लोगों सुनी मानसखंड विज्ञान केंद्रक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप मेहता दगड़ करी हुई हमर यो बातचीत। और अब कार्यक्रम में अगिल बढ़नू और आप लोगों को मनोरंजन करनू
2: यह कुमाऊनी लोकगीतक दगड़।

श्रोताओ, तारा सिंह लुधियाना गई यही कुमाऊनी लोकगीतक दगड़ आजक उत्तरायण कार्यक्रम इतिक संपन्न करने की दियो आज्ञा। भो आप लोगों दगड़ फिर भेंट करूल। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी जिलों में की गई मॉनसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने पर रोक लगाई। और विकसित भारत जी रामजी योजना के शुभारंभ अवसर पर चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय राज्य कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में आज मॉनसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक अभ्यास का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित विभिन्न राहत व बचाव अभियानों ने वैज्ञानिक सोच, आधुनिक तकनीकों, त्वरित निर्णय क्षमता और टीम वर्क की उत्कृष्ट मिसाल प्रस्तुत की है। एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने मॉक ड्रिल के दौरान प्राप्त अनुभवों और कमियों का गंभीरता से विश्लेषण करने और सभी जिलों को 3 दिन के भीतर अपनी विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता और राहत व बचाव तंत्र की वास्तविक क्षमता का व्यापक परीक्षण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को केवल राहत व बचाव तक सीमित न रखकर जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और तकनीक आधारित प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाए।

0: धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व तो नहीं बल्कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना और राज्य के सभी जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का विमोचन किया। इसके अलावा उन्होंने SDRF, NDRF और अग्निशमन विभाग द्वारा लगाए गए आधुनिक राहत व बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
1: राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय के अंदर पूरा किया जाएगा। साथ ही नौकरी पाने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति मिल सके, इस पर भी कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र की राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप राज्य में नई खेल नीति तैयार करने तथा उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार हल्द्वानी में अगले माह से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम, राष्ट्रीय खेलों से विकसित खेल अवसंरचना के रखरखाव और 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की तैयारियों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक में बताया गया कि अब तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा एक ब्लॉक एक मिनी स्टेडियम के तहत अब तक 48 मिनी स्टेडियम बन चुके हैं, जबकि 10 का निर्माण जारी है। वहीं लोहाघाट में देश के पहले महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज और गौलापार स्थित राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के खाला गांव में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए गांव को जोड़ने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षति की जानकारी लेते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरा किया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
2: भारी वर्षा से ये खालेगांव को जाने वाला मुख्य मार्ग जिसमें पीछे खेवार रहते हैं वो तो क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे सूचना मिली हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपए डीएम साहब ने इसके लिए सूचित कर दिया। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोलने की है, उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय है चेक डैम लगाना है उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम गाँव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारा सुबह होना चाहिए, उसको हम काम कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से रस्ता में
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और हिमालयी क्षेत्र में मानसून के सक्रिय होने के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा इनर लाइन परमिट जारी करने पर विचार किया जाएगा।
4: आज 2 जुलाई 2026 को उत्तराखंड में मॉनसून आगमन पर और क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं, इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रेवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उनके सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को वर्तमान में स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
1: रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने मॉनसून के दौरान केदारनाथ यात्रा पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ करने की श्रद्धालुओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है, लेकिन लगातार हो रही वर्षा और मौसम के बदलाव को देखते हुए यात्रियों को प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।
5: श्री केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है और बरसात के कारण और चूंकि छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं तो यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि बरसात के महीनों में विशेष ध्यान रखें।

0: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रेनकोट इत्यादि जो वस्तुएं हैं उनको साथ लेकर के चलें। कई बार आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर आपको थोड़ी देर रुकना भी पड़ सकता है, कई जगह लैंडस्लाइड भी रहते हैं, तो अलर्ट होकर के चलना है। शासन और प्रशासन से और आपदा प्रचार केंद्र से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं आप उनका पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार तीर्थयात्री के तौर पर यात्रा करें।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना के शुभारंभ अवसर पर आज चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण प्रतिभागियों को दिखाया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को योजना के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और संभावित लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि जिले में योजना के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
2: हमारे राज्य में भी विधि जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया है और ये योजना में पहले हमारे 268 कार्य थे जो कि अब की बढ़ा करके 318 कार्य कर दिए गए हैं। जो पहले 100 दिन का रोजगार मिल रहा था वो अब 125 दिन का रोजगार ग्रामीणों को मिल पाएगा, मजदूरों को मिल पाएगा। और साथ ही इसमें बहुत सारे जो ऐसे कार्य थे जो पहले नहीं कर पा रहे थे या जो बहुत आवश्यक थे तो वो भी अब किए जा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि ऐसी अवसंरचनाएं भी डेवलप की जा सकेंगी जिससे कि विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित चमोली बन पाएगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी जिलों में की गई मॉनसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आदि के

0: प्रदेश के सभी जिलों में की गई मॉनसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने पर रोक लगाई और विकसित भारत जी रामजी योजना के शुभारंभ अवसर पर चमोली जिले के गोपेश्वर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना हम आपको सुना रहे हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में।

अनूप जलोटा की गायसी भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 6:50 हुए हैं। अब आप गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: समाचारों का दगड़ मी दीपक सिंह रावत। पहली मुख्य समाचार, राज्य में विकसित भारत जी रामजी योजना लागू, अकुशल श्रमिकों थे वित्तीय वर्ष में 125 दिनों को रोजगार की व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में प्रभावी और तकनीकी आधारित आपदा प्रबंधन के निर्देश दिन। सरकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर ली, जैसे चिकित्सकों थे आधुनिक तकनीकों का अनुरूप प्रशिक्षित करे जाए साग। और मौसम विभाग ने भोल, नैनीताल और बागेश्वर खून ऑरेंज और राज्य के अन्य सभी जिलों खून येलो अलर्ट जारी कर। राज्य में मनरेगा के जगह पर विकसित भारत जी रामजी योजना 42 बटे लागू करेगा। इन योजना से अकुशल श्रमिकों थे एक वित्तीय वर्ष 125 दिनों को रोजगार का प्रावधान करेगा।
1: केंद्र सरकार ने योजना का तहत राज्य खुनी 300 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित करी। ग्राम्य विकास विभाग का सचिव धीराज गब्रियाल ने बताया कि प्रदेश में 91.57% सक्रिय श्रमिकों की EKYC पूरी भेज चुकी थी। उन बचा सभी जॉब कार्ड धारक परिवार और श्रमिकों से अपील करी कि वो एक सप्ताह का भीतर अपना संबंधित ग्राम पंचायत या विकास खंड कार्यालय में जाके EKYC जरूर करा लें, ताकि उनके योजनाओं का तहत अकुशल श्रम रोजगार को लाभ सुगमता से मिल सकू। उन बताया कि वर्तमान में मनरेगा का अंतर्गत चलना कामों को विकसित भारत जी राम जी योजना में अनुमन्य कार्यों का अनुसार समाहित करे जालू। येगा खातिर सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को क्षमता विकास का खातिर जिला स्तर पर कार्यशालाओं को आयोजन भी करे जालू। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन, मैं रविन्द्र सिंह।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों से प्रभावी आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने बोली कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नीचे बल्कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता छ। उन्होंने बोली कि मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटण होने पूर्व तैयारी फटफटाक, निर्णय बढ़िया समन्वय और आधुनिक तकनीकों को समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक छ। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र को क्षमता थे सुदृढ़ बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण पहल छ। उन्होंने बोली कि यू केवल एक अभ्यास न बल्कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचार व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता और राहत और बचाव तंत्र के वास्तविक तैयारियों को व्यापक परीक्षण छ। उन्होंने बोली कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल आपदा के बाद राहत पहुँचाने नहीं बल्कि आपदा जोखिम थे कम करण, जनधन को सुरक्षा सुनिश्चित करण छ। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खून नामांकन आमंत्रित करीन। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष का बच्चों को असाधारण उपलब्धियों खून दिए जान। नामांकन जमा करने का अंतिम तिथि 31 जुलाई च। मंत्रालय ने बताया कि नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर करे जाए सकदन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करण वाला बच्चों थे प्रदान करे जांद। यह पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस का प्रदर्शन करण वालों थे भी दिए जांद। हरेला पर्व ये बार देहरादून जिला में 1,50,000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखे गया। 16 जुलाई बटे शुरू होने वाला हरेला अभियान 1 माह तक चाललू। ये दौरान पौधारोपण के माध्यम से इको टूरिज्म थे भी बढ़ावा दिए जालू। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के बोलने चो कि यू अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रह गया बल्कि पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन बनलू। यहाँ कौन सभी विभागों थे रोपण स्थलों को चयन करी माइक्रो स्तर पर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिए गए। अभियान की निगरानी खून विशेष हरित कंट्रोल रूम स्थापित करे जालू। वन विभाग के अनुसार लगे जाने वाला पौधों में 50% फलदार और 4 प्रजाति के होला और उनका संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी

0: अगला 5 वर्षों तक तय करे जाली। सभी विभागों थे 10 जुलाई तक गड्ढों की खुदाई, जैविक खाद, ट्री गार्ड और पौधों के परिवहन की व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिए गया।
1: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणु छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: राज्य सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित कर ली। जैसे चिकित्सकों थे आधुनिक तकनीकों का अनुरूप प्रशिक्षित करे जैसा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने यह घोषणा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में कहरी। श्री उनियाल ने बोली कि वर्ष 2026 आखिरी तक सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे जाली। उन्होंने बताया कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों को अलग कैडर भी बने जालू जैसे स्वास्थ्य सेवाओं थे और अधिक मजबूत करे जय साख। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं को 32 चिकित्सकों थे डॉक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार, 3 चिकित्सकों थे आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड और 3 चिकित्सकों थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करे गया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन थे लेकिन पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित करे गया। बैठक में कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपड़ा अपड़ा विभागों को कार्य योजनाओं और प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने बोली कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गाँवों के विकास के मुख्य धार से जोड़ने च वक निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाण च।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहां पर अभी आयोजित की गई थी जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहां से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर यहाँ से भी उसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है और लाइवलीहुड जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इम्प्रूवमेंट, उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज हैं वो टूरिज्म आधारित वहाँ पर जो वर्क हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म उसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें दिया गया है, उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें, उसको ग्रो करवाएं।
0: राज्य का विभिन्न क्षेत्रों में ब्याली हुई बरखा के दगड़ दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में दस्तक दियाल। आज भी राजधानी देहरादून सहित विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुए। पिछला 24 घंटों के दौरान पर्वतीय जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज करे गया। जैसे मौसम सुहावनु हुए गया, मौसम विभाग ने भोल, नैनीताल और बागेश्वर जिले खून ऑरेंज अलर्ट और अन्य सभी जिलों खून येलो अलर्ट जारी करी। विभाग के अनुसार राज्य में 6 जुलाई तक हल्की से मध्यम वर्षा का दौरा जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय नागरिकों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम पूर्वानुमान थे ध्यान में रखे की यात्रा करने का अपील करी। विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचन, मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रुकन और नदी नालों और गाढ़ गदरों से दूर रहने की सलाह भी दे। कांवड़ मेला ये साल वर्ष 30 जुलाई बटे 11 अगस्त तक आयोजित होला। मेला की तैयारियों थे लेकिन हरिद्वार जिला प्रशासन व्यवस्थाओं थे अंतिम रूप देन शुरू कर रियाल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों थे 25 जुलाई तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिए गए। बैठक में भीड़ प्रबंधन, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं को समीक्षा करे गया। जिलाधिकारी ने बोली कि कांवड़ यात्रियों तय सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्रशासन का प्राथमिकता। ऊल बोली कि विद्युत, पेयजल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, कांवड़ पटरी मार्ग, झाड़ियों की कटाई, पेड़ों को लॉम्पिंग और अन्य तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने का निर्देश दिए गए। दगड़म राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण थे निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करण, सड़क से निर्माण सामग्री हटाना खून भूले गया। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने पुलिस अधिकारियों थे भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना और सभी विभागों को दगड़ समन्वय बैठक की कार्य करने का निर्देश दे। आखिर में समाचार एक बार फिर से। राज्य में विकसित भारत जी रामजी योजना लागू, अकुशल श्रमिकों थे वित्तीय वर्ष में 125 दिनों को रोजगार की व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में प्रभावी और तकनीकी आधारित आपदा प्रबंधन का निर्देश दे। सरकार राजकीय मेडिकल

0: कॉलेजों में एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेली जैसे चिकित्सकों थे आधुनिक तकनीकों को अनुरूप प्रशिक्षित करे जाए साक। और मौसम विभाग ने भोल, नैनीताल और बागेश्वर खुण ऑरेंज और राज्य के अन्य सभी जिलों को येलो अलर्ट जारी करी। यहाँ का दगड़ ही गडोली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हों। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनेर सभी श्रोता दगड़ियों के मी आपू दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं, हमारे यो कार्यक्रमक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं, भारत समेत कई देशों में धानक खेत करी जा और यो एक मुख्य फसल छू। यो फसल बटी ज़्यादा उत्पादन लेणक लीजिए एक सही देखभाल और आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक छू। एक अभाव में फसल पर विपरीत प्रभाव देखने तय मिलनी। सही मात्रा में उर्वरकों इस्तेमाल न होने पर फसलों के उचित पोषक तत्व नहीं मिल पान जल फसलों उत्पादन और गुणवत्ता प्रभावित हो जा। एक लीची उचित मात्रा में उर्वरकों इस्तेमाल और सही बखत पर जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक छू। धानक लीजिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के 50:12:12 किलोग्राम प्रति एकड़क हिसाबल खेत में मिलोण चाहें। एक लीजिए 110 किलोग्राम यूरिया 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम म्यूरेट और पोटास प्रति एकड़क हिसाबल खेत में मिलोण चाहें। पौधों को रोपाई के बखत प्रति एकड़ खेत में 20 किलोग्राम यूरिया डालन चाहें। पोटासक पूर्ति के लीजिए प्रति एकड़ खेत में 15 किलोग्राम MOP मिलोन चाहें। माट में जैविक कार्बनक मात्रा 1% बटी कम होने पर प्रति एकड़ खेत में 10/12 टन कार्बनिक खाद मिलोन चाहें। फास्फोरस और नाइट्रोजनक पूर्ति के लीजिए प्रति एकड़ खेत में 40 किलोग्राम PS मिलोन चाहें। पौधों को रोपाई 25 दिन बाद प्रति एकड़ खेत में 35 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल करन चाहें। फल पैदावार के लीजिए प्रति एकड़ भूमि में 4 किलोग्राम देहात स्टार्टर को प्रयोग करन चाहें। पौधों को रोपाई 42 दिनों बाद प्रति एकड़ खेत में 35 किलोग्राम यूरिया फिर से डालन चाहें। पौधों को रोपाई 42 दिनों बाद प्रति एकड़ खेत में 10 किलोग्राम MO प्रयोग करन चाहें। पौधों में जिंक कमी पूर करने के लिए प्रति एकड़ खेत में 3/4 किलोग्राम देहात जैविक जिंक या सिंगल सुपर फास्फोटॉक इस्तेमाल करन चाहें। ठाड़ फसल में खैरा रोग का लक्षण नजर ऊन पर 800 ग्राम जिंक सल्फेट और 400 ग्राम बुझा हुआ चूना 180 लीटर में पानी में मिले फिर छिड़कन चाहें। ज़्यादा उत्पादन और स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों माट में उपलब्ध मात्राओं रासायनिक गुणों निर्धारण करण ले परीक्षण छू। पौधों फल वृद्धि और विकास के लिए मुख्य रूपल जो इनमें पोषक तत्व होनी उनर देखभाल करण ले बहुत ज़्यादा आवश्यक छू। श्रोता, यह के अलावा जो हमार मृदा परीक्षण छू उले हमार खेतक लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण छू। यह हमको पता चलो कि जो हमारे माट में को पोषक तत्व मौजूद छन और के तत्वों कमी छू सही जाँचक

बटको आपूयो खादक उपयोग कर सकता जमें फसलक पैदावार फल होण और जो हमार आय छू जो हमारे पास डबल छन वीगल बचत हूँ माटक नमूना लिवेर वीग सही तरीका जाँचक रिपोर्ट तब और अपन माटक नमूना सही तरीका लेण जाए नमूना लेण वक्त जो हमको जागोक चुनाव करण से जमें हमका अपन खेत में 8 बटको 10 अलग अलग जागू बटको माटक इकट्ठा कर फिर पूरा खेतक माटक के मिल भर एक नमूना तैयार करण से और यह लीजिए जो आकार हूँ जो तरीका माट लेण से ऊ बटको घास फूस हटा भेर उमें अंग्रेजी वी आकारक 6 बटको 9 इंचक एक गैर गड्ढो खोदन से ऊ बटको वी आकार बटको जो गड्ढक तरफ बटको जो माट निकाली जा उकले एक मोट मोट परत चिन्ह भेर निकाल दें से एक बात है उमें नमूना तैयार करण से और वो जो भेजणक प्रक्रिया छू उको सुकून छू माट के सब 8-10 जागू बटको निकाली हुई जो माट छू उके हमके छाया में सुकून से और माट के तब फैला भेर आदो आदो कर भेर उ सुकून से वीक बाद उमें लेबल लगून छू और किसानों का नाम लिखण छू खेतक जो खसरा नंबर छू खेत नंबर छू उके लिखण से एक अलावा जो पिछाड़ी फसल में ऊनी वाल फसल नाम छू यो तरीके का एक जांच तत्व परीक्षण छू वीक बाद जो भौतिक और रासायनिक स्थिति छू और जो पीएच मान जगह हम कोनो यह बताई जा कि माटक अम्लीय छू या क्षारीय छू विद्युत चाकता छू मैं ये मैं माटक लवणों की मात्रा बारे में पता चलूँ जैविक कार्बन और माटक उपजाऊ शक्ति और सेहतक मुख्य पैमान छू तो यह तरीका अगर हम जो एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बढ़ू हमारे पास उके हम जाँचक बाद उके सरकारक एक लैब में तरफ जगह हम भेजनू और उमें अपन माटक स्वास्थ्य के बारे में पूर्व विवरण लिखी जा जैल हमका यो पता चलूँ कि जो हमार स्वास्थ्य कार्ड छू मृदा परीक्षण उमें बटको हमका यो पता चल जाए कि जो हमारे पास माट में के कमी छन वीक स्वास्थ्य में कदुक महत्वपूर्ण और उमें के इजाब करी जा सकूँ के वीक पूर्ति करी जा सकूँ तो यो लीजिए हमके मृदा परीक्षण कराना बहुत ज़्यादा जरूरी छू अगर हम यो तरीका चीज़ों की तरफ अगिल बढ़न तो निश्चित ही हमार जो खेतक एक स्वास्थ्य छू उल बढ़ी रहा और हमार पैदावार अगिल बढ़े कार्यक्रम अगिल आपको प्रणाम लग रहा शंकर उपरेतिक स्वर में यो जोड़।

जोता सिकड़ी पायों की इथले

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल आपको शाना लग रही है भेंट वार्ता। बृहद स्तर पर बैकुली उत्पादन करते प्रगतिशील कृषक प्रकाश चंद्र उपाध्याय दगड़ प्रमोद पांडे की बातचीत।
7: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी अल्मड़ा स्टूडियो में अभी ब्रोकली उत्पादक कृषक श्री प्रकाश चंद उपाध्याय जी। यू रोनीवाल छन ग्राम सभा खनोली विकास खंड चौखुटिया जिला अल्मड़ा इनंदगढ़। आज हम बातचीत करूँ ब्रोकली उत्पादन पर, क्योंकि ब्रोकली एक इस साग जो कि कब महंगे बिका और यो अपन क्षेत्र एकमात्र ब्रोकली उत्पादक लक्षण जनरल की कोरोना काल है पहली कुछ समय पहली ब्रोकली के दिल्ली बाजार में 700 रुपए प्रति बल्ले बेचो और एक भलखास आमदनी प्राप्त कर लेनी ब्रोकली ब्रोकली वेटी। और वीक अलावा आप ओनले साकपात लघु छा वीकले उत्पादन कर छा और वीकले विक्रय कर छा। तो उपाध्याय जी सबने पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अल्मड़ा स्टूडियो में। उपाध्याय जी, हम आपू थे जान चाहन कि यो ब्रोकली उत्पादन आप कब बटी करवाना छा?
8: यो हम करीब 3-4 साल में करूँ, 2020 से लगभग ये हम करूँगी।
7: अच्छा,
8: और अब पहले तो हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मेरा संपर्क दिल्ली मंडी वालों दुआ हो तो उन्होंने एक गाइड में लेकर भेजो पहाड़ और बोल गया ब्रोकली बहुत भल उत्पादन एक आइटम है सब्जी का और इसकी ये मांग जो थी दिल्ली में बहुत ज़्यादा थी दिल्ली मंडी में।
7: अच्छा।
8: और 5-स्टार होटल में ये बहुत यूज हो।
7: अच्छा।
8: और एक बार तो यश हो गया कि आपदा आई थी उमोक पे बरसात में, तो उस टाइम पे हिमाचल माल ज़्यादा आ तो उतंजू 700 रुपये किलो तक उतंजू ले, परंतु हिमाचल माल कुछ बेहतर रहो तो उन्हें 700 रुपये किलो तक नहीं हुए। तो हम उनको किले नहीं का आगे बढ़ाई जाओ खूब करी जाओ और यह एक युवाओं लीजिए प्रेरणा स्रोत रहो। तो मैं बताने लगे बीच बीच में मीटिंग ले लूँ लोग बाबू भी तुम आओ आगे बढ़ो करो एक ये इसके ये फायदे बहुत से ये स्वास्थ्य लीजिए बहुत बहुत जो पौष्टिक ये आइटम छू और 5-स्टार होटलों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी सलाद के रूप में सब्जी रूप में कश ये हर तरह भले हमारे पहाड़ में ये तो मांग नहीं छू मतलब वो तो यूज नहीं करें पर जो प्लेन्स में रहनी लोग पहाड़ में आनी और मेरे पास आनी ओहो वो तो ब्रोकली पली मांगनी में भाई लाओ ब्रोकली मुझे दियो बढ़िया ब्रोकली दियो तो बड़ा अच्छा।
7: ब्रोकली शुरुआत इसी करी तो मगर ये बताओ कि कतो नैल पे लग रहा है कि ब्रोकली
8: 50 नैल
7: पे ब्रोकली लग रहा है जी और कतो उत्पादन है यार?
8: अब वो उत्पादन लगभग 50 क्विंटल रहेगा।
7: 50 क्विंटल
8: 50 क्विंटल
7: तो जो ये ब्रोकली चाहिए कहें आप उसे दिल्ली में छा या हमारे जो लोकल बाजार छे?
8: लोकल बाजार में मतलब भेजने कोशिश करी पर जब ज्यादा मांग ज्यादा खपत नहीं है जब फिर हम एकमात्र दिल्ली मंडी चुनी
7: तो
8: और जो लोकल वो मांगनी तो हम उनको दे दू 1-2 क्विंटल लोकल में चौकटिया
7: ये भाव बेचा यहाँ
8: या तो हम 50 से लेके 100 के बीच में बेचे।
7: अच्छा एक बात बताओ ना कि ब्रोकली उत्पादन या हमारा कोई भी साग सब्जी छे उसमें रख रखाव की जरूरत पड़े और यह उत्पादन आपको कसी लीचा को बीज एक में इस्तेमाल कर छा और खाद पानी की व्यवस्था हूँ या जो वातावरण एक लीजिए कस हो
8: ये वातावरण यहाँ 35 डिग्री से 33 ये टेम्परेचर ही मांगो और 25-30 है जो बहुत बड़ी तो दिल्ली में हम शोधित बीज उत्ती व आरती द्वारा ही हम बीज मंगानो और वह तो हम साल भर बोते रहनु साल भर परंतु जो बल्क मात्रा में जो ज्यादा मात्रा में हम उगानो वो यह टाइम है पीक टाइम हर हम जुलाई में नसीडर और ताकि ये दिवाली से पहली पहली वो मंडी नहे जो
7: साल भरी हम
8: यो 60 जनवरी में 90 जन बीज
7: ये पौध लगनी या बीज लाओ
8: ये बीज नर्सरी थी बीज हो बीज
7: अच्छा
8: बीज लगनी है बीज नर्सरी थी भाई फिर पौध ट्रांसप्लांट
7: उसके लगा आला जैसे कि हम और गुबले पत्ता गोभी
8: सेम सेम सेम बिल्कुल
7: प्रोसीजर
8: सेम
7: हुआ हमारे जो नजदीकी कृषि विभाग दफ्तर छन वंटी जो वैज्ञानिक भी हूँ उन्हीं लगूना
8: उन्हें लगाना
7: अच्छा
8: वो तो विभाग कौन उद्यान विभाग कौन सा तुम यदि बेहतर बीज न चाचा तो हम तुम्हें योगदान दो उन्होंने एल एल करो में कि तुम बड़ी मंडी से यदि बीज जिसा तो हम तुमको कुछ न कुछ उसमें योगदान देंगे 50% हम तुमको लाभ देंगे ये उन्होंने हमको वचन दे रहा
7: एन आपको कोई सरकार द्वारा तो योजना चल रही है कोई योजना वाला फायदा दिलाओ चाहे
8: अभी सरकार द्वारा वो लोग उद्यान विभाग वाली भी उद्यान विभाग उन्होंने ही मेरे को जरा प्रमोट किया मेरे मनो मन उन्होंने बढ़ाया
7: अच्छा जी तो जो उद्यान विभाग बड़ी जो योजना चल रही है सब्सिडी प्राप्त हो लीचा पर
8: हाँ
7: और ये फसल बीमा ले करा रखो
8: फसल बीमा नहीं करा रहे
7: और सम्मान निधि मिले
8: सम्मान निधि मिल गए
7: सम्मान
8: निधि मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई व्यवस्था हमारे यहाँ रामगंज बगल पर बही तो हम कभी कभी तो हम बांध बना के पानी लेने बांध बने हुए और यदि नदी गहर रहेगी जब फिर पंप चलाना पंप चलाना
7: ब्रोकली का हम बात करना लगे
8: जी
7: ब्रोकली हमारे शरीर रिजिल भलू
8: जी
7: और खाने में स्वादिष्ट
8: स्वादिष्ट रहा
7: तो जो जो ब्रोकली है
8: जी
7: अपन क्षेत्र में अपो अलावा और कोई दुहर उगना
8: ना ना ना ना
7: अपन क्षेत्र के लोग जो और छन उले का उगना प्रयास नहीं करण या
8: आई कुछ लोग जरा जरा कर्मी 150 पौंद ये कोशिश कर में ले जा में मैं 2 पौंद और लगानी 150 ठीक हो अपन
7: अवर जी तो सब पहाड़ पे खेत जो छे आज जंगली जानवर ने उजाड़ा दी
8: जी
7: तो ब्रोकली का तो नुकसान पहुंचो जंगली जानवर
8: वो मेरे जो एरिया थे ना सब एक में तारवाड़ कर ले 400 रुपए तारवाड़ कर ले और दोहर वहाँ न बंदर आन प्लेन है वो बड़े पेड़ नहीं है
7: अच्छा।
8: उनका के लिए शेल्टर कुछ नहीं है अच्छा। बंदरों के लिए तो वो ये नुकसान मेरा लगभग नहीं होता
7: तो यानी कि गुड़ अपन
8: बच्चा
7: यम टी जो दिल्ली आपको माल का भेजा
8: जी
7: तो तय लीजिए जो खर्च हो
8: हाँ जी
7: वो क्या आप खुदा वहन कर या
8: मंडी वाल वहन कर हम यश करना जो चौकटी पे आजकल तो टैक्सी वगैरह खूब चल रही है दिल्ली है तो उन्होंने हम कुछ दियो साग हम कुछ दियो साग हम ले जाओ तो हम उन्हें छत में डाल दिनो और वो दिल्ली एक निर्धारित जगह से उठ के आनी और उद्वो आरती जो से उठ के अब टेम्पो लिवा आँच और किराया लिवा आँच उन्हें किराया जो किराया हम फोन पर बात कर लेनो कि यह किराया इनको दे दिया बस वो किराया दे दिया और और हमको कहीं जाना जरूरत नहीं
7: आपको
8: कहीं जाना जरूर हम लोग उधर चले
7: ब्रोकली उत्पादन कर
8: बस बस
7: बल्कि जो और हमारे किसान भाई छन उन तक उनकी अपने ब्रोकली उत्पादन करो और आत्मनिर्भर बनो
8: जी
7: अच्छा कतो कमा लीजिए ब्रोकली उत्पादन बढ़ी
8: हम लगभग औसत जो खर्च लो बहुत है खर्च लो बहुत है लगभग लाख रुपये महन में एवरेज ब्रोकली उत्पादन
7: और यह के अलावा
8: जी
7: और साग लगा
8: हम सब लौक हो गया तौरिया हो गए भिंडी है गए गद्दू हो गए और एक एल में 56 कद्दू लगा रहो और जुगनी है गई भिंडी है गई शिमला मिर्च है गई मक्के हो गए

0: बहुत सारे आइटम, अदरक ये चीज़ें सारे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं उगाता हूँ। और उम्र लोकल हुआ मांग, आजकल जैसे प्लेंच में आजकल बहुत लोग पहाड़ में आ रही, ओ हो ये तो भीड़ मेरे फार्म में, ब्याह भी बिहार में लोग आई है, तो कोई लोग दीजो को गद्दू दीजो को करल दीजो को भिंडी दीजो को, तो अच्छी खासी एक मतलब 2-4-5 हज़ार शेल हमारे डेली उच्ची के बह जाए
1: घर बैठे
0: घर में बह जाए।
1: यानी कि हम योगों की अगर हम कृषि कार्य मन मनल ढंगल अगर तरीकल करूँ तो हमारे सामान तो घर बैठ जाओ।
0: हाँ सर, अब जैविक जैविकता हम ये प्योर जैविक हमारी ऑर्गेनिक ये सब्जी होती है, और ये लिए मैं मुद्दी गुड़ धरी और 30-40 बकर धरी, ताकि उन्हें खाद उनको खेत में ले जाओ और फल उत्पादन है जो, और लोग खुश ही लोग, और वो कोई रेट नहीं पूछन, मैं हूँ कि रेट नहीं पूछन, ये रेट के बहुत हूँ वो 56 कद्दू पनी में 50 रुपये का चीज मणि कम होता, जो वो उत्पादन मणि कम होता मैं 80 कर दू 80 मदद लीजा।
1: अच्छा, तो लॉक कितना है कि लगे
0: लॉक में आज 25 दिन में पली में बेच मुई, आज से 25 दिन पहले
1: जल्दी अपन जो लॉक पहाड़ लॉक जो हूँ
0: ना मैं बीज सर वो कुछ हाइब्रिड वाला में लाता हूँ, रुद्रपुर से लाया रुद्रपुर पर ले आई और वो हाइब्रिड, और आज 25 दिन पहले से मैं वो लॉग में शुरू होगी लॉग और गदू, तो वो पूर्ति नहीं कर पाऊंगा ये तो मांग
1: जी। और ये अलावा गदू
0: का ककड़ दीजिए गर्म घाटी से ककड़ वो तो भल ध्यान गगासपुर और बेल्ट में होती हैं,
1: और हम तो सुना कि आप कम से कम साल लॉग तो इतु बेच दिशा एक ट्रक बराबर लॉग बेच दिशा।
0: सही सुनो
1: यो मांग का काम बेचा पे
0: चौकटी माइश लोकल में दौराड़ जान पड़ो कहीं है, फिर गैरसैंड जान पड़ो कहीं है भिकियासैंड, तो चारों तरफ जान पड़ो तो बिकी जाता है।
1: ऐसी बहुत बड़ी बात की आपको मेहनत करना सा, सबसे मुख्य बात तो आपको मेहनत करना सा, और मेहनत का फल आपको अवश्य मिला ये तो निश्चित छे
0: जी।
1: तो अब उपाध्याय जो आपको हमारे जो और सुनने वाले श्रोता छन
0: जी
1: उनसे आपको के कौन चाला की खेती के बारे में ब्रोकली बारे में साग सब्जी उत्पादन बारे में।
0: सर जी पहाड़ में की मिट्टी ही ऐसी है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है, यदि इसमें ढंग से काम कर जाए, यहाँ मिट्टी की तासीर ही ऐसी है कि यहाँ हर चीज़ होती है और स्वादिष्ट हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। और नंदन जो आज इधर सोशल मीडिया से जुड़े हैं बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, यदि वही करी वो यह साग उत्पादन ढंग करी और जैविक खाद प्रयोग करते हुए एक करी जब तो एक अच्छी खासी आमद, और 10-20 हज़ार प्लेंच में अपन कर्मी और अपशर्ट से हैं, तो यहाँ अपन ठाठर अपन नना बीचम रहें, अपन घर दे दूध खें और अपन साग अस्वस्थ रहें और भलो हवा वातावरण में रहें, जब स्वस्थ रहें सब कुछ बड़ी रहो और लोगों के करुण चाहें ईश्वर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी जलवायु बहुत बेहतर है। जैसे आम को ले लें सर, मैं आम का भी काम करता हूँ, और आम यहाँ प्रिंस का आम अब ये 15 जुलाई 20 जुलाई में ख़त्म हो जाएगा, और हमारा आम अगस्त सितंबर तक चलो और भल रेट मिलनी, मजे इस पर कलकत्ता आम भेज दूँ, कलकत्ता मेरा आम जा और आरती भो बोल रहे मेरे पास आनी थे, और क्योंकि देर में हो और हम बगीचे लगाऊँ तो चौसे की तो बहुत अच्छी मांग ओ रही मांग बहुत ज़्यादा, और मैंने कम से कम 3-4 लाख आम ले ले रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: तो वो आम मैं वो कलकत्ता भेज रहा।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो उपाध्याय
0: जी
1: आपको हमारा आकाशवाणी हमारा स्टूडियो में अच्छा आप ब्रोकली उत्पादन और सब्जी उत्पादन बारे में ये तो बड़ी जानकारी हमको दे, हम उम्मीद कर लो कि हमारे जो सुनने वाले श्रोता छन वो आपको बताइए जानकारी बड़ी अवश्य लाभ उठा, आपको हमारा आकाशवाणी हमारा स्टूडियो में अच्छा आप बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता आप सुन लग रहा है भेंटवार्ता बृहद स्तर पर ब्रोकली उत्पादन करते प्रगतिशील कृषक प्रकाश चंद्र उपाध्याय दगड़ प्रमोद पांडे की ओर बातचीत।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, वर्मी कंपोस्ट जका हम कैचवा खाद कोनू, यो एक बेहतरीन और पुरतरीकल प्राकृतिक जैविक खाद छू। यो कैचुक मदद बटी डाइबोटों अवशेषों बटी गोबर और रसोईक गीले कचरे साग फलों छिलकों के अपघटित कर फिर बनाई जा। खेती और बागवानी के लीजिए ये कह काला सोना लगाई जा। वर्मी कंपोस्टक जो मुख्य लाभ छन उमें भरपूर पोषक तत्व होनी, इमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और पौधों के लिए जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होनी। माट में एक सुधार हूँ, यो माटक जल धारण क्षमता के बढ़ूँ और माटक भुरभुरा और हवाधार बनूँ। जल पौधों जड़ों में तेजी बटी विकास हूँ। पौधों की सुरक्षा बट को हम देखने की मौजूद कैचों के जो में एंजाइम से होनी और नान बैक्टीरिया पौधों की बीमारियों और फंगस बट को लड़ना उनका ताकत देनी। यह पूरी तरीके सुरक्षित छू। रासायनिक खादों की तरह यह ज़्यादा इस्तेमाल ले पौधों के जलन या खराब होने का कोई खतरा नहीं रोन। यह का तैयार कराने के लिए जी जो एक बेड तैयार करी जा, जमीन पर या कोई टैंक पावर हाउस या छायादार जग में द्वी बट को 4 फीट चौड़ और अपन सुविधा के अनुसार लंबी बेड बनाई जा। कचरे एक परतों में सबसे तलीबटी सूखी पत्तियां, घास और फिर पुराना गोबर जस गर्म नहीं हो रसोई गीला कचरा परतों के डाली जा। वीक बाद उसमें जो कैचवा होनी उनके छोड़ी जानी। यो कचरे एक मलबट की विशेष प्रजाति कैचुआ जस की छोड़ी जानी। नमी और छाया कैचू के सिद्ध घाम बट को बचौने के लिए बैठ कर जूट और बोरियन ढक देने चाहें और बखत पर पानी छिड़काव कर भी 40-50% नमी बनाए धरी जा सकूँ। और खाद तैयार करने के लिए लगभग 60 बट को 90 दिन का कैचुओं का एक पूरे कचरे के बेट को खबेर चहाक पत्ती और हल्की और दानेदार खाद में बदल देनी। तो यह तरीका अगर हम वर्मी कंपोस्ट अपन घरों में बनाने लग रहा है तो निश्चित तौर पर यह हमका एक भल फैद दे सकनी। कार्यक्रम अगिल आपको सुनान लग रहा शेर सिंह रावतक स्वर में यह लोकगीत।

श्रोता अपसरण लग रहा है यह लोगी शेर सिंह रावतक स्वर में और यही लोकगीतक दकार हमारे किसान वाणी कार्यक्रम इन लगाए संपन्न हूँ। हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अपदगा भो एक नई

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठिक कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। राज्य में विकसित भारत जी रामजी योजना लागू। अकुशल श्रमिकों के वित्तीय साल में 125 दिनों का रोजगारक प्रावधान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामेल, मानसून है पहली, राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में प्रभावी और तकनीक आधारित आपदा प्रबंधक निर्देश दें। सरकार राज्य की मेडिकल कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर ली। जेल चिकित्सकों के आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण दी जा सकल। और मौसम विभाग भूल नैनीताल बागेश्वर लीजिए ऑरेंज व राज्य दूसर सपे जिलों के लिए येल्लो चेतावनी दी रखी। और अब समाचार विस्तारल। राज्य में मनरेगा जाग पर विकसित भारत जी राम जी योजना भूल बठे लागू है जाली। यो योजना के भीतर अकुशल श्रमिकों के एक वित्तीय साल में 125 दिनों के रोजगारक प्रावधान करी गयो।
1: केंद्र सरकार योजना भीतर राज्य लिजी 300 रुपया रोजक मजदूरी दर निर्धारित कर रखी। ग्रामीण विकास विभाग सचिव धीरज गर्ब्याल बता कि प्रदेश में 91.57% सक्रिय श्रमिकों की EKYC पूरी है गे। उन्होंने शेष सभी जॉब कार्ड धारक परिवारों और श्रमिकों थे प्रार्थना कर रखी कि वो एक सप्ताह भीतर अपन संबंधित ग्राम पंचायत या विकास खंड कार्यालय में जेबेर EKYC जरूरी कर रहे। जैल उनको योजना के भीतर अकुशल श्रम रोजगारक लाभ भलिके मिल सको। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मनरेगा के भीतर चलनी कामों को विकसित भारत जी राम जी योजना में अनुमन्य कार्यों के अनुसार समाहित करी जाल। एक लीजिए सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों क्षमता विकासक लीजिए जिला स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन ले करी जाल। आकाशवाणी देहरादून के लीजिए समाचार कक्ष बटी मी ज्योति जोशी।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मानसून है पहली मॉक ड्रिल दौरान अधिकारियों के प्रभावी आपदा प्रबंधक निर्देश दें। उनलको कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि राज्य सरकारक सपन है ठूल प्राथमिकता छू। उनलको कि मानसूरक दौरान संभावित आपदाओं थे भली के निपटनक लीजिए पहली है पूर्व तैयारी झट्ट फैसल भल तालमेल और आधुनिक तकनीकों समुचित उपयोग बहुत जरूरी छू। मुख्यमंत्री को कि राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन तंत्र की क्षमता के मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल छू। उन्हें को कि केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल संचार व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता व राहत एवं बचाव तंत्रक वास्तविक तैयारियों के व्यापक परीक्षण छू। उन्हें को कि राज्य सरकारक लक्ष्य केवल आपदा के बाद राहत पुजूर्ण है बल्कि आपदा जोखिम के कम करण जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित करण छू। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लिजी नामांकन आमंत्रित करें। यो पुरस्कार 5-18 सालक नानतीनों के लिजी असाधारण उपलब्धियों के लिजी दी जानन। नामांकन जमा करनक अंतिम तारीख 31 जुलाई छू। मंत्रालय बताए कि नामांकन awards.gov.in पोर्टल पर करी जा सकनन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल सामाजिक सेवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण कला व संस्कृति क्षेत्र में भल प्रदर्शन करण वाल नानतीनन के दी जा। यो पुरस्कार कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहसक प्रदर्शन करण वाल नानतीनन के दी जा। हरियाल त्योहार में यो बार देहरादून जिले में 1,50,000 पौधे लगोणक लक्ष्य रखी गयो। 16 जुलाई बठे शुरू होने वाल हरियाल अभियान एक महर जाने चलोल। यो बीच पौध लगुणक माध्यमल इको टूरिज्म के लिए बढ़ावा दी जल। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान कोण छू कि यो अभियान केवल

0: पौध रोपण जारे सीमित नहीं रोल बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनोल। यह लीजिए सपे विभागों के रोपण वाल जागों चयन कर बेर माइक्रो स्तर पर काम योजना तैयार करने का निर्देश दी गई। अभियानक निगरानी के लिए विशेष हरित कंट्रोल रूम स्थापित करी जाल। वन विभागक अनुसार लगाई जाने वाल पौधन में 50% फल वाल और चारा प्रजाति खोल व उनर संरक्षण और देखभाल की जिम्मेदारी अगिल 5 साल तक सभी विभागों के 10 जुलाई जाने गड्ढों की खुदाई व जैविक खाद ट्री गार्ड और पौधों परिवहन की व्यवस्था पूर्ण करने का निर्देश ले दी गई।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपन लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: राज्य सरकार सपे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करल। जेल चिकित्सकों के आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षण दी जल और स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में मंत्री सुबोध उनियाल यो बताए कि घोषणा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर राज्य की दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में करी। श्री उनियाल को कि साल 2026 तक अंत जाने सपे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाली। उनियाल बताए कि राज्य में विशेष चिकित्सकों के लिए अलग कैडर ले बनाई जाल जेल स्वास्थ्य सेवाओं के और जात मजबूत करी जा सकोल। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 32 चिकित्सकों के डॉक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 3 चिकित्सकों के आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड व 3 चिकित्सकों के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानल सम्मानित करी गयो। केंद्र सरकारक महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमक प्रभावी और बखत पर क्रियान्वयन के लीबेर पिथौरगढ़क जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक आयोजित करी गई। बैठक में कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न विभागों के अधिकारियों अपूर्ण अपूर्ण विभागों की कार्य योजनाएं और प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी को की वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत गांव के विकास तक मुख्य धारा से जोड़ते हुए वाक निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लूट छू।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम चरण में 27 ग्राम जो है वो चयनित किए गए हैं और द्वितीय चरण में जो हमारे जनपद के अंतर्गत 24 ग्राम है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मीटिंग यहाँ पर अभी आयोजित की गई थी जिसमें जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से भेजे जाते हैं स्टेट और फिर सेंटर यहाँ से जो इसकी फाइनली सैंक्शनिंग होती है तो उसके संबंध में डिस्कशन किया गया है और लाइवलीहुड जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इम्प्रूवमेंट उन सबको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा जो ये वाइब्रेंट विलेजेज हैं वो टूरिज्म आधारित वहाँ पर जो वर्क हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और टूरिज्म उसके माध्यम से प्रमोट हो सकता है तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को उसमें लिया गया है उनका समावेशन किया जा रहा है जो टूरिज्म को उसमें और प्रमोट करें उसको ग्रो करवाएं।
0: राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भोल भे बरखगदगड़ दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में दस्तक दी हालो। आज ली राजधानी देहरादून दगड़ विभिन्न जगहों में हल्क बर्ख हुए है और पछिल 24 घंटे के दौरान पहाड़ी जिलों में अधिकतम तापमान में बहुत कम दर्ज करी गयो। जैल मौसम बहुत भल है गयो। मौसम विभागल भोल नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी व दूसर सपे जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी करी। विभागक अनुसार राज्य में 6 जुलाई जाने हल्के है मध्यम बर्ख हुणक और विभागल गाड़ गधेरों थे दूर रूणक सलाह दी रखी। कांवड़ म्याल यो साल 30 जुलाई बठे 11 अगस्त जाने आयोजित होल। म्यालक तैयारियों के लिए हरिद्वार जिला प्रशासनल व्यवस्थाओं के अंतिम रूप दिन शुरू कर हालो। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सपे विभागों के 25 जुलाई जाने जरूरी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दी गई। बैठक में भीड़ प्रबंधन यातायात स्वच्छता स्वास्थ्य सेवा और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा करी गई। जिलाधिकारी को कि कांवड़ यात्रियों के सपे जरूरी सुविधा उपलब्ध करूँ प्रशासन की प्राथमिकता छू। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लरल पुलिस अधिकारियों के भीड़ नियंत्रण यातायात प्रबंधन की विस्तृत काम योजना तैयार करण और सपे विभागों दगड़ तालमेल बनाबेर काम करने का निर्देश देन। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज। राज्य में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू। अकुशल श्रमिकों के वित्तीय साल में 125 दिनों को रोजगार को प्रावधान। मुख्यमंत्री

0: मंत्री पुष्कर सिंह धामिल, मानसून है पहली राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में प्रभावी और तकनीक आधारित आपदा प्रबंधन को निर्देश दें। सरकार राज्य की मेडिकल कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर ली। जेल चिकित्सकों के आधुनिक तकनीकों अनुरूप प्रशिक्षित दी जाए सकल। और मौसम विभागल भूल नैनताल बागेश्वर के लिए ऑरेंज व राजग दूसर जिलों के लिए चेतावनी दी रखी। यह कदगढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक खत्म भयो। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz
2: पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:00

0: गढ़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नौकियों अंक खत्म भयो। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz
2: पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। संध्या के 7:40 में है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं शान और कैलाश खेर की आवाज में फना फिल्म से। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं द डर्टी पिक्चर फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज़ में। रजत अरोड़ा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलन ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं एक्सपोज फिल्म का गीत हिमेश रेशमिया और हनी सिंह की आवाज़ में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

एक्सपोज फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मंसूर अनवर के कलाम से, एक फनकार है मेहंदी हसन।

मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला नगमा ये सुनते हैं अभिजीत की आवाज़ में।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण का गाया ये नगमा।

उदित नारायण के गाए इस नगमे के बाद कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं। हसरत जयपुरी का कलाम फनकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए सी नगमे के साथ सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा रेखा जोखा लेकर के हमारे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान की खबर और हर खिलाड़ी का हाल, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन हेडलाइंस की जिन पे आज का हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज रात स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से, इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर तथा महिला सिंगल्स में आर्यना सबालेंका और कोको गौफ तीसरे दौर में पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ और वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए फुटबॉल के महासंग्राम के साथ जो कि चल रहा है कनाडा और अमेरिका में, फीफा विश्व कप जिसके राउंड ऑफ 32 यानी नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो गए हैं। और आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होना है, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा और कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। इससे पहले आज की बात की जाए तो इंग्लैंड, बेल्जियम और अमरीका फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हरा दिया। सैन फ्रांसिस्को के एरिया स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही अमेरिका ने अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। मैच की शुरुआत से ही खेल पर अमेरिका का नियंत्रण देखने को मिला। पहले हाफ के इंजरी टाइम में बालोगुन ने मलिक टिलमैन के शानदार पास और डिफेंडरों को छकाते हुए गेंद को गोलकीपर निकोला वासिलस के नीचे से नेट में पहुंचाकर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में 64 मिनट में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा जब बोलागुन को रेड कार्ड दिखा दिया गया। मैच के अंतिम चरण में मलिक टिलमैन ने फ्री किक पर बेहतरीन गोल कर टीम की बढ़त 2-0 कर दी।
2: It is Tillman, and it's in. If this stadium had a roof, it would have just lifted off. A second goal that the USA desperately wanted. For the United States of America, the dream continues. Their World Cup ambitions very much alive. USA 2, Bosnia and Herzegovina 0.
1: अब अमेरिका 7 जुलाई को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम से भिड़ेगी। इससे पहले बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। मैच की शुरुआत में सेनेगल की टीम बेल्जियम के डिफेंस पर हावी नजर आई। सेनेगल की तरफ से मैच के 24वें मिनट में हबीब डियारा ने बेहतरीन गोल किया और स्कोर 1-0 कर दिया। मैच का दूसरा हाफ रोमांच से भरा रहा। 51वें मिनट में इस्माइला सार ने बेहतरीन गोल दागते हुए सेनेगल की बढ़त को 2-0 कर दिया। अब तक बैकफुट पर नजर आ रही बेल्जियम की टीम ने इसके बाद मैच में बेहतरीन पलटवार किया। 86वें मिनट में रोमेलू लुकाकू ने बेल्जियम के लिए पहला गोल दागा। इसके ठीक 3 मिनट बाद ही यूरी टाइलेमांस ने बेल्जियम की ओर से दूसरा गोल करते हुए स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। थोड़ी देर पहले सेनेगल की जीत की तरफ जा रहा मुकाबला 90 मिनट में 2-2 की बराबरी पर आ गया। अतिरिक्त समय में दोनों ही टीमों की तरफ से कई प्रयास किए गए, लेकिन इस दौरान यूरी टाइलेमांस ने पेनल्टी को गोल में तब्दील कर बेल्जियम की टीम को जीत दिला दी।
3: Will now take the penalty, and he scores. They were down, they were out from the brink to the next round. Belgium squeezed through.
1: दिन के पहले मैच में भी लोगों को एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां हैरी केन ने 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड के डीआर कांगो को 2-1 से हरा दिया। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 गोल किए और मैच में 1 गोल से पीछे इंग्लैंड को वापसी कराते हुए राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। डीआर कांगो के लिए 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने पहला गोल किया। इसके बाद दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के कई मौके बने पर कोई भी सफल नहीं हो सका, लेकिन 75वें मिनट में हैरी केन ने का गोल किया और 86वें मिनट में शानदार विनिंग गोल कर

0: के मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। हैरी केन, इट्स केन, ओह वाओ, दैट इज सो गुड फ्रॉम हैरी केन, इंग्लैंड आर देयर इनटू द राउंड ऑफ 16 दे गो। अब 6 जुलाई को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियम में मेक्सिको के साथ होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि फीफा विश्व कप में इस समय फुटबॉल के मैदान रोमांच का टॉप गियर लगा चुके हैं। और अब इसके बाद बात की जाए साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की। इस टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं, जबकि महिला सिंगल्स में आर्यना सबालेंका और कोको गौफ भी तीसरे दौर में पहुँच गई हैं।
2: 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को सीधे सेटों में हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। जोकोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सित्सिपास को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। जोकोविच को सित्सिपास से पार पाने में सिर्फ 98 मिनट लगे और उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। टूर्नामेंट ही अपने पहले मैच में 4 सेट तक मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले जोकोविच इस मैच में पूरी तरह शानदार लय में नजर आए। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और सित्सिपास को ज्यादा मौके नहीं दिए। इसी का परिणाम रहा कि जोकोविच ने पहला सेट मात्र 27 मिनट में 6-3 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में सित्सिपास ने वापसी की कोशिश की और जोकोविच को कड़ी चुनौती दी, लेकिन जोकोविच ने धैर्य बनाए रखा और सही समय पर ब्रेक हासिल कर सेट को 6-4 से जीत लिया। तीसरे सेट में जोकोविच पूरी तरह हावी नजर आए और 3-2 की बढ़त के बाद सित्सिपास की सर्विस तोड़ी। लगातार शानदार शॉट्स लगाते हुए उन्होंने सेट को 6-2 से अपने नाम करते हुए शानदार जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन इटली के यानिक सिनर ने नूनो बोर्गेस को 7-6, 7-6, 6-4 से हराया। अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो अमेरिका की कोको गौफ ने सोलोना सियरा को 6-3, 3-6, 7-6 से हराकर महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका ने भी मैकार्टनी केसलर पर 6-1, 7-6 से जीत दर्ज की। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो विंबलडन अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद अब राउंड ऑफ 16 और प्री क्वार्टर फाइनल्स का दौर शुरू होगा। इस पूरे टूर्नामेंट पर ताज़ा जानकारी लेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, बहुत ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, बहुत फेरबदल और बहुत चैंपियन बनने देखे हैं हमने इस टूर्नामेंट में। बड़े खिलाड़ियों का सफ़र अब कहाँ तक पहुँच रहा है
3: ये शक्ति? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला और पुरुष सिंगल्स दोनों में ही अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो हैं वो वॉल्टन रॉयर के साथ खेल रहे हैं और 2 सेट जीत चुके हैं। अगर वो ये मुकाबला जीत जाते हैं तो तीसरे राउंड में उनकी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। वहीं महिला सिंगल्स में अमांदा अनिसिमोवा जो है वो सोफिया केनिन के साथ खेल रही हैं और उनका जो सेट है वो 1-1 से बराबरी के साथ चल रहा है, तो वहाँ मुकाबला जो है कांटे की टक्कर का देखने को मिल रहा है। अगर ज्वेरेव जीत गए तो वो मेदवेदेव, सिनर और जोकोविच के साथ तीसरे राउंड में पहुंच जाएंगे। और वहीं महिला सिंगल्स में इगा स्वाइटेक पहले से ही पहुंच चुकी हैं। एलिना रायबकीना का जो मैच है वो कैटी मैनेली से अभी होगा कुछ ही देर में। और इसी के साथ ही नाओमी ओसाका, अरेना सबालिंका, जेसिका पेगुला, कोको गौफ और इगा स्वाइटेक ये लोग अपनी जगह तीसरे राउंड में बना चुकी हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने तमाम दिग्गज खिलाड़ियों की बात की। श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय खिलाड़ी जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उनकी स्थिति इस समय कैसी है?
3: जी, भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ पुरुष डबल्स में अपनी चुनौती पेश कर रहे थे और पहले ही राउंड में यूकी भांबरी अपने साथी माइकल वीनस के साथ हारकर बाहर हो गए। वहीं अनुरुद्ध चंद्रशेखर भी टकेरा युजुकी के साथ हारकर बाहर हो गए और एन श्रीराम बालाजी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह भारत का जो सफर था इस टूर्नामेंट में वो समाप्त हो चुका है।
1: जी, तो कहा जा सकता है कि हालांकि भारत का सफर समाप्त हो गया लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी दर्शकों के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां कल मौसम ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ते हुए नजर आया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल बारिश के कारण रद्द हो गया।
4: भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश की बेट चढ़ गया और मैच का नतीजा नहीं निकल सका। चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवर्स साइड ग्राउंड पर भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। संजू सैमसन महज एक रन और ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 6 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 गेंदों में 82 रन जुटाकर टीम को संभाला। अभिषेक 24 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए।

0: इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद कप्तान अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ 36 रन और शिवम दुबे के साथ 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अय्यर 47 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 68 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दुबे ने 21 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 42 रन की नाबाद पारी खेली। मेजबान टीम के लिए साकिब महमूद ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। आदिल रशीद और सैम करन ने एक एक विकेट निकाला। भारतीय पारी के दौरान बूंदाबांदी होती रही। 20वें ओवर के बाद जब खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तभी बारिश तेज हो गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के इंतजार के बावजूद लगातार बारिश होती रही। आखिरकार अंपायर्स ने फैसला किया कि मैच दोबारा शुरू नहीं हो सकता और इसे रद्द कर दिया। अब श्रृंखला का दूसरा मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैट।
1: वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी एक खबर आ रही है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी। ये दोनों मैच मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल

0: मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैट।
1: वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए भी एक खबर आ रही है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए श्रीलंका जाएगी। ये दोनों मैच मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा होंगे।
2: टेस्ट क्रिकेट को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है, उन्हें भारतीय टीम जल्द ही एक बार फिर सफेद जर्सी में नजर आएगी। भारत श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगा। सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त तक गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त को कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। यह मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। यह सीरीज 2017 में श्रीलंका में 3-0 से शानदार जीत के बाद भारत का पहला टेस्ट दौरा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अहम पॉइंट्स दांव पर होने के कारण दोनों टीमों की नजर जीत पर रहेगी। फिलहाल भारत पॉइंट्स टेबल में 5वें और श्रीलंका 6ठे स्थान पे है। अगर दोनों टीम के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मैच जीते हैं। वहीं श्रीलंका को 7 मुकाबलों में ही जीत हाथ लगी है, जबकि 17 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि टेस्ट प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है कि दो और मैच उनको देखने को मिलेंगे। और अब सुनते हैं कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबलों का हाल।
3: हाल ही में हुए यूएस ओपन के उपविजेता 33 वर्षीय किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मलेशिया के ली जिया जिया के खिलाफ 10-11 से पिछड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कोच बी साई प्रणीत से चर्चा के बाद मैच से हटने का फैसला किया। महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप ने फ्रांस की अन्ना तात्रानोवा को 21-14 21-12 से हरा कर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका सामना अमरीका की चौथी वरीयता प्राप्त बेईवेन झांग से होगा। दूसरी ओर तानिया हेमनाथ ने अमरीका की दिशा गुप्ता को 21-16 21-18 शिकस्त दी और अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुल मिलाकर दिन निराशाजनक रहा। कल मैदान पर उतरे 9 भारतीय खिलाड़ियों में से 7 पहले ही दौर में बाहर हो गए। 5वीं वरीयता प्राप्त देविका सिहाग चीनी ताइपे की तुंग सियो तोंग से 14-21 15-21 से हार गई। कनाडा की रेचल चान के खिलाफ रक्षिता रामराज ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 15-21 21-14 15-21 से हार कर बाहर हो गई। इस साल अबू धाबी में अल एन मास्टर सुपर 100 का खिताब जीतने वाली श्रेयांसी वालीशेट्टी को चीनी ताइपे की हुआंग चिंग पी के हाथों 9-21 18-21 से पराजय झेलनी पड़ी। अनमोल खरब ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मेजबान खिलाड़ी मिशेल ली को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 6-21 26-24 13-21 से मुकाबला गवा बैठी। पुरुष सिंगल्स में सनीत दयानंद और शंकर सुब्रमण्यन भी पहले दौर की बाधा पार नहीं कर सके। सनीत को जापान के तीसरी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो ने 21-7 21-11 से हराया, जबकि शंकर को दक्षिण कोरिया के यूते बिन ने 19-21 21-15 21-15 से मात दी। पुरुष सिंगल्स में भारत की एकमात्र जोड़ी अच्युतादित्य राव और अर्जुन रेड्डी पोचाना भी शुरुआती दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। आज आकर्षि कश्यप का मुकाबला बेईवेन झांग से होगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कनाडा ओपन से भारत को कोई अच्छी खबर मिलती हुई नजर नहीं आई। इस बीच भारतीय बैडमिंटन संघ बाई ने यह फैसला किया है कि इस महीने से होने वाले सभी घरेलू बैडमिंटन टूर्नामेंट नए नियमों के अंतर्गत होंगे, जिसमें 3 गेम खेले जाएंगे और प्रत्येक गेम यानी सेट 15-15 पॉइंट्स का होगा। अब बात करते हैं स्क्वाश की, जहां वेलवन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में पीएसए चैलेंजर्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को 15-13 11-4 11-3 से हराया। वहीं तन्वी ने जापान की जोई फू को 11-6 11-7 8-11 11-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और श्रोताओं, आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है और ये दिन उन तमाम पत्रकारों को समर्पित है जो अपने अथक प्रयासों से अपनी मेहनत से खेल के मैदान की तमाम खबरों को हम तक लेकर के आते हैं, श्रोताओं तक लेकर के आते हैं और उनको खेल से जोड़ते हैं। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे इस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। आप अपने सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में

0: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, When the going gets tough, the tough get going। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत

0: भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
1: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
2: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
1: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

0: मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takai.

आज के इंद्रधनुष कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए कुछ गाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है घर फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी वर्मन ने।

इंद्रधनुष कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

कार्यक्रम इंद्रधनुष। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार के बोल हैं और धुन बनाई है खयाम ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरोहर।
1: श्रोताओं, कवि अपूर्ण एक युगक
0: धरोहर कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं प्रख्यात कवि शेर सिंह बिष्ट

0: अनपढ़ से बताओ शेरदा तुमूल कविता कसी करी विषय पर शंकर उप्रेती की भेंट वार्ता।
1: युगक प्रतिनिधि हूँ जो कवि अपुन युगक पंथ प्रदर्शक युग दृष्टा और एक नव युगक प्रवक्तक हूँ। आज हमारे स्टूडियो में यो अंचलक यो प्रदेशक और यो देशक एक गणमान्य प्रतिष्ठित कवि श्री शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ जी रही। तो शेरदा अपन स्वागत छू नमस्कार छू। आज तुम आकाशवाणी अलमण में आ रहा भैरो था हम तुम्हारा स्वागत करनू सत्कार करनू और तुम दगड़ यो विषय पर कि बताओ शेरदा अनपढ़ तुमुल कविता कसी कर पर एक लंबी बातचीत करनू। तुम्हारे परिचय संचय जीवनी और तुम्हारे साहित्य यो विषय में आज बातचीत करनू। तुम्हारे दुख सुख हम और हमारी पहाड़ी जनता सुनें जाने। तुम्हारे गीत कविताओं और कहानी कब बटिक भय और कसिक भय और आज तक के करो कांका रोछा कांका गुछा मणि मणि के और माठू माठी के हम उनका सुनाला और सुनाते जाला। तो अब शुरू करनू आपनों परिचय आपने मुखल जरा दी दियो।
2: क्या बात है उप्रेती जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब हैं पहली मैं आपों के और अपने पहाड़ी जनता के मैं पहला कुनु नमस्कार कुनु। यो मेर सौभाग्य छु आज कि आकाशवाणी अलमरल में अपन दुख सुख और अपन गीतू भरी सफर अपन जिंदगी सफर के बथुण सुनण मौक दे। सचमुच मैं आभार मानू अपन सबू और बहुत बहुत धन्यवाद दियो। तो उप्रेती जी तुम ले कान खोल भीर सुनो और आज मिले दिल खोल भीर बतूँ
1: बिल्कुल
2: कि मेर जीवन कौश छू और मेरी कविता कैसी शुरू है।
1: अच्छा
2: तुम्हारे कुण आखिर कि अपने शब्दों में अपन
1: परिचय हो
2: सुन लियो भला में सो पहाड़ा रूनेरो नान ठूला सब सुनो यो मेरो कूर दो दीदी बहनी सुनी लिया रज करुनु चार बाता दुख सुख तुम संग कुन अपन परिचय दिनो पर
1: हो जो
2: पढ़िया लेखिया नाती ने बुद्धि छो ज्ञाना मैं मूर्ख मानुष हरी पशु का समान अनपढ़ आदमी सचमुच पशु का समान हूँ। पढ़िया लेखिया नाती ने बुद्धि छो ज्ञाना मैं मूर्ख मानुष हरी पशु का समाना नान छना गरीबी ले नी पढ़ई स्कूला यो चतुर जमान में कसिक खोला नाम मेरो शेर सिंह गोछ मेरो माला पट्टी मेरी खास प्रजा जिलियल माला शहर नजदीक भयो गोमजी में रुनू चिट्ठी पत्री डालन हूँ अलमारे उनू।
1: बहुत बड़ी छेड़
2: मैं परिचय दिनो अपन तुम्हारा कौन आखर पूज्य नाम पिताजी को बच्चे सिंह कुनी पूज्य नाम शोभन सिंह म्यारा बुबू हुनी पूज्य दाजू भीम सिंह देवता समाना पूज्य दीदी कुन थी छी जो म्यारा पराना पूज्य माता लक्ष्मी छी मैं जनु ले पाओ जो नाम ले पूज्य माता लक्ष्मी छी मैं जनु ले पाओ गाओ गाश गाड़ी भेर मैं जनु ले से तो अदानी उमर मजा बजू नसी गया अदानी उमर मजा बजू नसी गया निसम्भला आज तक नादान रे गया छर मुया छर भया निसिखो इलमा छर मुया छर भया निसिखो इलमा लाख बारी पछतानो अपना दिल आसुनु में डूबी रह मेरी गाणी माणी आसुनु में डूबी रह मेरी गाणी माणी जानी को भी दाता लेखी यो मेरी कहानी जानी को भी दाता लेखी यो मेरी कहानी।
1: वाह शेरदा वाह यो तुम्हारे गीतों भरी

0: कहानी लागने की छू बहुत है पुरानी, लगभग करूँ पुरानी।
1: उपरेदी भाई क्या पुनी बाव की देसी भूल गो और भूल की देसी मर गो। बहुत पुरानी बात है कि तो जमाने बात है कि आज बटी 40-45 साल वह बेल में सोचनो जब यद किस्मत में जीतूँ रचना करी करछी और जो उदित पुरानी बात है।
0: अच्छा शेरदा अब तुम बताओ कि कब पैद भेजा, नानछना दिन कस गुजरी, अमीरी में या फकीरी में?
1: उपरीति जू सुनो पे मेरी कहानी बढ़ने।
0: अच्छा
1: गरीब घर में पैद है।
0: अच्छा
1: अब हम छी बौजू हृदय, गरीब घर में पैद है हूँ अब हम छी बौजू हृदय, तब पड़ोसिया मकान में रुचि रूण होला मकान में भाई, जर जमीन बौजू बीमारी में गिर भी पड़ गए और इजाफर मुसीबत पड़ गए, ढूंग बोग भेर पेट भर छी बल बुध कर भेर झुकुल लू छी, दिन बार बीतने गई महारा दुख दगाड़ हिटने गई। दुख दगाड़ हिटने
0: आहा शेरदा फिर दुखन के करो?
1: उपरे दीजू दुख के कर छी 5-6 साल उम्र में मैं गाँव में नौकरी करण फेटू।
0: अच्छा
1: 5-6 साल उम्र छी गाँव में नौकरी करण फेटू, 8-8 में है तनख्वाह मिली छी पेट भरण फेटू।
0: आहा
1: काम छी नान भोग डाल हलकून।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: काम छी नान भोग डाल हलकून, उले डार निमार छी और महारा मिले डार निमार छी, दिनू के हरों छी मन बहनू।
0: आहा हा फिर के आगे के भाव श्रद्धा?
1: उपरेती जू अगले कहान ले चलते के मेरे दुखों कहान, मैं ले और पेट ले ठूल होने को।
0: अच्छा
1: मैं ले और पेट ले ठूल होने को गाँव की नौकरी छोड़ी, शहर में घर घर नौकरी करने फैटू, भान माजने गई हूँ धोने गई हूँ, 8-8 बटी दुर्बे महल तक पूछ गई हूँ, क्या पूछी वो छह पाटे घागेरी मेरी होने का मैं छू तो सर मिल है भर।
0: अच्छा।
1: दुर्बे महने मिनेर भाई तो मैं पेट भरण फैटू, एक मालकिन मास्टरनी मिली जेल पार्टी में खड़े हलकून शिका।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जानी के देखो बिन बाबो के चोल में ओ आ सुखोण लगा, 10-12 जाग नौकरी करी छोड़ दे, एक मालिकल एक कोट बना महारा जानता उल्ले खोल दे, आँखों में आँस तो सूख गाछी फिसने भिसने रो हसने कने ईजा मुक्तिर उन्हें रहूँ इजल जा हरी खूब डाल मार दी।
0: आहा तो शेरदा आगे का सुनाओ काका गेछा और काका डोड़ा छा।
1: उपरेती जू निर्बुद्धि राजा काथे काथे मणि मणि लंब लुतौड़ज है गई हूँ।
0: अच्छा
1: अपने मित्र दुकान में चाह पानी बेचने फेंकू।
0: अच्छा
1: मिश्री गाठे मूँगफली बिड़ सिलाई बेचने फेंकू, तब तक भड्डू की दाव लाई गई थी।
0: अच्छा
1: मणि मणि अकल और मणि मणि शकल भय होने फेंक गई थी।
0: आहा हा आगे के भाव पे
1: फिर बामला गो परदेश हो।
0: अच्छा
1: दुमणिया तौली हिट शेरवा परदेश में दिखनी डॉ। लगभग 11-12 साल उम्र में भाई भेर आगरा नह गई।
0: अच्छा
1: कुछ महन कुछ साल भान माजने धोने आगरा इलाहाबाद रम गई, मच्छरों बुके मलेरी है गो, बीमार पड़ गई हूँ लू लाई गो, क्या कुनी के निखार दिन खोर के निखार दिन शोर, महारा मर मरने बज गई हूँ दांड पानी बाकी नाल।
0: दान पानी बाकी छन बाकी रवाल, नतर पहाड़ लोग तुम्हार कविता कैसे सुना शेरदा आगे का के भाव बताओ तो।
1: उपरेदी जू आगे के भर्ती है गई।
0: अच्छा
1: क्या पुनी झुगली को फिर के लिखी छू शेरदा जो टिटेर भिटेर, एक दिन डोईने डोईने आगरा भर्ती तो फिर पूछ गई।
0: अच्छा
1: बॉय कंपनी की भर्ती होने ची मेला ठाड़ है गई।
0: अच्छा
1: चार फेल बते भेर ए एस सी बॉय कंपनी में 31 अगस्त 1950 में जो मुझे भली के याद छू।
0: अच्छा
1: भर्ती है गई हूँ।
0: अच्छा
1: भर्ती है भेर ए एस सी सेंटर बॉय बटालियन मेरठ नह गई हूँ।
0: अच्छा
1: जी मेरठ नह गई हूँ, म्यार खुशिल बेहाल छी उम्र 14 साल छी, यारो म्यार गुल गंगनाथ मैं हूँ देन है।

0: री ऊपरी दीजू भानमा जनी हाथ में राइफल है पड़ी।
1: अच्छा तो शेरदा ये बताओ राइफल दगा तुम्हारे दिन कस गुजरी?
0: ऊपरी दीजू कब है हंसी कब है खुशी कब है दुख कब है सुख कब है नरे कब है निशास कब है डाल कब है भूख। नानती ने भाई फौजी जिंदगी में शुरू है ये कब है नरे कभे निशास कभे डाल कभे भूख कभे प्रेत और कभे पीटी कभे ड्यूटी कभे खेल। बीत गई महारा 3 साल होने गई उपास के बॉय कंपनी पास करी रंगरूट।

0: अरे कभी निशास, कभी डाल, कभी भूख, कभी प्रेत और कभी पीटी, कभी ड्यूटी, कभी खेल, बीत गई महारा 3 साल, होने गई उपास फेल। बॉय कंपनी पास करी, रंगरूट बन गई हूँ।
1: अच्छा,
0: रंगरूटी पास करी, ड्राइवरी सीखने फेंक गई हूँ, ड्राइवरी पास करी, सिपाही बन गई हूँ। कसम प्रेड है, हमूल कसम खै,
1: अच्छा,
0: जल थल हवाई बाट जान लकवाला वाँचू, खून पशुन बगे, प्राणी की बाज लगे, देश के बचून। भारत हमर देश, हम सब भारतवासी, तिरंग हमारे शान अभिमान महान, 5 फुट 9 इंच मालगांव शेरू उप्रीति जू, गीता कसम खबे बन गए सिपाही ड्राइवर जवान।
1: आहा, तो सिरदा पे काका गोछा के बणछा, यो जब तुम्हारा राइफिल थामे, हवलदार या सूबेदार?
0: क्या आप कुनियो अनपढ़े भई, जहाँ तक सवाल छू उप्रीति जू, फौज में रहू जब तले में मौज में रहू, घूमू ले खूब घूमो, घाट घाटो पान ले पे, चुल चुला कर वाटले लगाई, जाग जागे हावले लागी।
1: अच्छा,
0: और महाराज अखिल के में मेरठ बटी झांसी, झांसी बटी जलंधर, जलंधर बटी जम्मू कश्मीर, नारियां रजौरी झंगड़ पुंछ नौशेरा, बेंगलोर बटी ग्वालियर मेरी पोस्टिंग होने गए।
1: अच्छा,
0: कहें पीटी उस्ताद, कहें ड्राइवर, कहें ड्राइवर उस्ताद, बढ़ने गई हूँ। हाँ, रैंक माते निबड़ हो, सिपाही के सिपाही रही हूँ।
1: तो सिरदा अखिल के बड़ों पे सारे कहते कूने जाओ, यो सार पहाड़, यो हमार श्रोता सब लोग सुन रहे तुम्हारे बातचीत के, अखिल के बहुत ज़रा बताओ दें।
0: उप्रीति जी, अखिल के पूछा, ग्वालियर में मैं बीमार पड़ गया।
1: अच्छा, की बात है?
0: ग्वालियर में मैं बीमार पड़ गई हूँ, भयंकर बीमारी लाई गई, 2 साल लीजिए इलाज कर रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं ग्वालियर बटी लगभग 2.5 साल लीजिए।
1: अच्छा,
0: बीमारी इलाज कर रहा हूँ, पूना नहीं गई हूँ।
1: अच्छा,
0: पूना में इलाजा के बीच में बीमारों के बीच में रही हूँ, उना दुख सुने रही हूँ, अपन दुख होने गई हूँ। वो जो मेरे देखकर फौजी थी, उससे कोई नेफा बटिया राशि, कोई लद्दाख बटिया राशि, सब 3 जगह हमें लड़ने ला रही थी।
1: अच्छा,
0: तो उनमें सब वो कहकर हाथ टूटो छी, कहकर खुद टूटो छी, और वो बेचार सब पड़ी बे। तो वो महती कूण फैटी एक एक कभी, मैं हौलदार मैं 10 गोल लगी, कोई कुना में सिपाही मैं 5 गोल लगी, कोई कुना में सूबेदार मैं और दें टांग महती, कोई गुना में लैस नहीं मेरे वो हाथ कटी छू। मैं 7 दिन तक मोर्चा में भूखे प्यासे लड़ते रहूं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और मैं कहीं सैकड़ों मेरे दुश्मनों को मारो, तब मैं घायल है भी आज अस्पताल में भर्ती है रहो। तो महाराज 2 साल तक वहाँ रह भेज, उन्हें कहानी में सुनने को, उन्हें जुबानी और मन भिजने गई हूँ, उनको देख भेर आंसू गाड़ने गई हूँ, शब्दों को शूर दुखों के धाग मनो कागल फिर बुने गई हूँ, कविता लिखने गई हूँ। ये कहानी है नेपाल लद्दाखे की, कविता किताब वह लिखी।
1: अच्छा,
0: और वह प्रकाशित कर दी जो उन्हें बाद में थी।
1: अच्छा,
0: और दूसरी घटना, हमारे पहाड़ा की बहनी पूना में बाजार में बैठ फिर उन्हें प्यासा के दे फिर उन्हें नरक में पड़ी जिंदगी की दे फिर उन्हें दुखी जीवन देख फिर महाराज मैं बड़ो नोख लागो, मैं बहुत मेरे दिल भीतर कांपण फेटो, मन मेरे डाल मान फेटो। तो उन्हें जिंदगी बार में वो बेणिया बार में जो हमारे पहाड़ा थी उन्हें मेरे दुख लिखो, वो किताब मिल, ये किताब धरो दीदी बहनी। तो
1: अच्छा,
0: वो किताब मिल मैं लिखी, जानी भीतर किस रोची मेर जानी भीतर भी के जागो उपरी दीजू, तब बटी मैं वहाँ कविता के सुर लागो, कविता के सुर लागो।
1: अच्छा, मतलब जब तुम फौज में छिया तो वहीं बटी तुम कविता करण अपन शुरू करें। अच्छा, वो किताब नाम बताओ जो तुम लिखी।
0: किताब नाम थी दीदी बहनी।
2: अच्छा, तो शेरदा अब मालूम पड़ रहा कि तुम कलम जो है कलम पकड़ है। बताओ तो अब तुम कहाँ गोछा और कहाँ कहाँ का बाट लगा
0: उपरी दीजू, क्या आपको नहीं शेरदा सिपाही पछल के लौटो।

0: यानी पलटनी घर पलटो। उपरेती जू पुना इलाज भेर कसौली आ गई हूँ।
1: अच्छा,
0: एक साल वहाँ रह भेर और वहाँ बटी डिस्चार्ज है भेर।
1: अच्छा,
0: शीत घर अलमाल।
1: अच्छा,
0: माल।
1: अच्छा,
0: गाँव में।
1: गाँव में
0: नौकरी लगभग 13 साल।
1: अच्छा,
0: योचन महारा पैद होने बटिक 1963 तक का हाल।
1: अच्छा,
0: अलमारा एभेर चाकी हो मेल तुम्हें सो अलमारे चमड़ी बाल एक ही इतिके बिसू।
1: अच्छा,
0: ऊपरे दीजू आगिल के सुनो हाल।
1: अच्छा, आप आगिल के भाव जब तुम अलमारा गया था माल में फिर काका गोछा किके करो
0: यार गीत झमाझम रमौल भगनौल गीत बैर झाड़ छपेली चाचेरी न्योली नाच यो पैद होने बटके पैद है गाची।
1: अच्छा,
0: जुलम शौक में।
1: अच्छा,
0: निगुर रफत में।
1: अच्छा,
0: अति नचई अति गवई थाई लोटी कंटर बजई घरपंता सब भाई नंचना बटिक रटन छी।
1: अच्छा,
0: मैं करीब 3-4 साल होनोली तब बटियो शुरू है गए।
1: अच्छा,
0: मैं बहुत रटन छी।
1: अच्छा,
0: इजले मेरी महारा बहुत भल गिदार छी।
1: अच्छा,
0: बहुत बड़ी गिदार छी उपरे दीजू।
1: अच्छा,
0: बहुत भल आवाज छी।
1: अच्छा,
0: बिणल बहुत भल बजू छी। आंगवल तो संसार बजू इज हमें जिबड़ल बजू छी।
1: आहा,
0: हाँ जिबड़ल बिणे बजू निर्भय।
1: अच्छा,
0: मैं सोचू अपन किस्मत एक छी बिणे हमेशा गावने रुचि।
1: अच्छा,
0: महारा जो मरण तागले दगड़े के।
1: आहा,
0: मैं नंचना 10 बार गीत रोज शेतन ताग।
1: अच्छा,
0: बाबू तो भय घर में इजे भे
1: हो
0: तो मैं जब तलक इज थे क्षेत्रता सुन नहीं लियूँ मके बिल्कुल नींद नहीं ऊँची। यो बात में तुम हती सत्य कुनो।
1: अच्छा,
0: यो रफत मके यो शौक मके इज दगे नांगड़े क्षेत्री भोगे पड़ी पची।
1: आहा,
0: 3-4 साल भी
1: हो
0: तो इस जगह अपने नांगड़े क्षेत्री भोगे पड़ी पची मके भली का फार्म चु मेरा आत्मविश्वास गुना इजा के गुण में दुगुण चौगुण है बेर भरण फैटी।
1: अच्छा,
0: और उस जमान में हमार पहाड़ में गीत ले बहुत बड़ी बड़ी चल छी। आइले मके याद छू मैं उमी रमी रुची नांचना बटी।
1: अच्छा, जो श्रीदा जो उ टाइम में गीत
0: जी जी जी
1: जो गाय छी याद छन त एक आदे
0: सुनाओ। हां, मके कुछ वो तो वो जो मैं सुन छी या मके वो थोड़ा बहुत याद छन वो। क्या कुनी वो तू किले नी आई धना डांके की गाड़ी। तू किले नी आई धना डांके की गाड़ी में धन सिंह ड्राइवरा डांके की गाड़ी में।
1: अच्छा,
0: टोटपड़ी डबल चली गजू आज का जमान में। टोटपड़ी डबल चली गजू यासे गीत चली।
1: अच्छा,
0: टोटपड़ी डबल चली गजू आज का जमान में नानभो भूखे रह गजू टिपुरी महल में। और या छोरे की पिरुल पधानी पान पिजा पानी धार में को देबू काका दे खजा दे जो हम सुन छी।
1: ओ हो, पहली
0: और पहली या एक और कद्दू किस्मा थी घुमराली दातुली को बाज के लागो बाज मेर अलबलू रन करू द्वाप के लागो द्वाप। क्या किस्मा ले गीत चली।
1: अच्छा,
0: कांति मारा बीड़ी सिलाई के केड़े ने एक गीत और बड़ी चलो छी उस जमान में मेरे को मुनमुन याद छू। कांति मारा बीड़ी सिलाई के केड़े ने और घर कसी के जानू मेर मन को जोड़े ने। और या फिर तेर धमेली पारा मेर मन के लारो टक दू पैसे धमेली धमेल के लाछे छक। और या फिर तल दुकाना फुंदे मेली मल दुकाना चूड़ हम छूटते रुचि गौ कुंडी तल दुकाना फुंदे मेली मल दुकाना चूड़ के करूँ सासू लमचोरेले रेवती बाजू बूढ़। और या फिर रेवती बाजू डाल बुड़नी रेवती जा सुप यहले चलो एक भगत। रेवती बाजू जो मगे मन में याद छू डाल बुड़नी रेवती जा सुप आजा का बॉडी मुख लागनी चुप रह जा चुप। और या फिर पकदे नंदी लाए को सागो हाल दे नंदी रोट खजा मोहना दूध मलाई जाओ मुहरी बाट। और या फिर गाल चना कुर मसूर जन टोड़िए ग्यू हिटवे चनू भावर जानू पहाड़ पड़ू ह्यू।
1: वाह वाह,
0: हाथ में तेरी लुए की चेना जेब फोंटिना पिन यश भी ले चलो आई। हाथ में तेरी जेब फोंटिना हाथ में तेरी लुए की चेना।
1: अच्छा,
0: जेब फोंटिना पिन एक घंटों को काम धनुआ लघु से सारे दिन।
1: वाह वाह वाह,
0: सैकड़ों गीत आज के समय जो मुके मुके यादें न्यूने
1: आई आई आज हम तो सुनाओ दें।

0: या किस्मा जो मेरे दिल में गड़ जा और हम सब लोग सुन छी, मैं सोचन उन्हें वो गीत ले चल छी और तब किताब या किस्मा ले छी वा यो सासबाई किताब जा ले छी।
1: अच्छा।
0: और के नाम जे पत्रोल घसारी की ले चल छी।
1: अच्छा।
0: जो हम सुन छी।
1: अच्छा अच्छा।
0: उन्हर उन्हें मतलब एक किस्म मैं सोचन उन्हर वो जो मेरे दिल में जो उन्हें यश उत्साह उन्होंने दे कि मैं सोची सी हे भगवान कभी मिले किस्म गीत रच लो और या मैं रचू शुरू कर दूँ, लेकिन अनपढ़ भाई एक किस्म नहीं है सक, लेकिन मन में मेरे बड़ ऊह नहीं रहे। और आई पहाड़ जोड़ ला अंक से किस्मा चल नहीं रहे जब
1: अच्छा
0: बोले देखो तो जरा जो जो मुझे याद होनी मैं तो मैं सोच रहा हूँ भूटहनी भट्टा चलीले सौरा जानो मडवल घट या बैरी आज किस्म ख्याल पौती को मैं जो जो मुझे याद छो मन में भूटहनी भट्ट चलीले सौरा जानो मडवल घट या गंगा जी में बगेरो एक बियो दाखोक देणी खानी अगलागो महारा बचन लाखोक।
1: वाह।
0: और या मिल सुनो निमुआ अनार काई घगेरी उके छाजे जो गरी फनार।
1: वाह वाह वाह।
0: आज किस्म गील में नंचना झुगली को फिर तू जैसी रसाई होनी मैं जो खानी
1: खाने, वा, वा।
0: या और कुछ सुनो मिल काटी हली रेंस हसन में चाल खानी महारा त्यार गोंग में क्या क्या गीत चली गगुरी को गुणी बयाव को गुस्से मरो मिल के लिए सुनी इसलिए हम झुगली को फिर आप भेचे घर बारी घर बजे भी या हम सुनी बकरी को बसो मैं छाती मलाश भी लो तू करे ली जोश या कुछ फूल गे छो देन नर रूठी के निहुर यारो निरूठो नारायण या कुछ बकरे की बकरी को भाट जून जी हंस खेली मेरी माट या कुछ हये की होट पानी समा छोट मुखड़ी देखुल कोची महारा डायलागी ओट। तो या से रंगील चंगली गीत जो चलन छी मैं सोचू उन्हें वो असर मेर आत्मा में मेरे शरीर में और मेरे वातावरण में वो घुल मिल गो और मैं सोची थी एक दिन मिले ऐसे कलाकार बनूँ ऐसे गीतार बनूँ और ऐसे मैं कवि बनूँ ऐसे गीत रचूँ। तो मैं पैद हूँ बटी भौज में घर ऊँ तक।
1: अच्छा।
0: ये कहानी है नेपाल लद्दाख की दीदी बहनी हंसने बहार और हमारे मैं बाप किताबा रूप में।
1: अच्छा।
0: सब ये पहाड़ किताब भाई घर ऊँ तक घर लेके ची घर है भेर ख्याल कौतिकु में जजे भेर।
1: अच्छा।
0: हाँ ख्याल कौतिकु में जजे भेर नानठुल स्कूल कॉलेजों में गैगे भेर जोकर बन बन भेर दूर दूर दूर तक बेचण फेंके छी।
1: अच्छा।
0: टोरी टोपी लगे जा छी।
1: अच्छा।
0: जाग जाग चमा चम वो लौंडा शेरवा त्यार गीत जमा जम।
1: वाह शेरदा वाह वाह गीतों का हैंडल खूब है तुम्हारी
0: जी।
1: तो शेरदा जरा आखिर का बढ़ लूप है
0: जी।
1: मैं सुनो कि तुम नाटक प्रभाग में ले छिया वहाँ कसी फटक मारी तुम जरा बताओ दे।
0: तो तुम ठीक है वहाँ कसी फटक मारी तुम ही लोग विद्वान लोग कुछ आज जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कब मैं तुम्हारा कौन छू और क्या कुनी वो धान कुटो मुसोवल है छिटो छुपल है दुनिया में घूम खाए शेरदा जोगी के रूप है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो उसी ले अबू कुने कुने कुने था दाने दाने में लिखा है
1: खाने वाले का।
0: हाँ
1: क्या बात।
0: तो महाराज उपरीति जी सुनो क्या अपनी वो हिड़ तुम्हारी बाटे बाट में की जानू बुढ़िया
1: बात।
0: तो मैं महाराज मैं तो सिर्फ बाट लागनो काम है। तो वो किस कहाँ जुड़ते गई मैं आगे बढ़ते बढ़ते गऊ तो कसी हो जरा सुनो कसी फट मारी तुम्हारे शब्दों में। जंगल में रुचि जंगल में गीत ले
1: वाह वाह।
0: जंगल में रुचि जंगल में गीत लिखी जंगल में गाछी मैं जंगलों चौकीदार गीत मेर चौकीदार न मैं जंगल छोड़ी छी न गीत मैं छोड़ी छी।
1: वाह वाह।
0: हाँ
1: वाह।
0: न गीत मैं छोड़ी छी लगभग 2 साल अखिल के सुनो हाल पढ़ के एक आदमी नजर मिलको रे तू मुके चेचे मिलको मैं गीत छोड़ भी नहीं सकूं मैं गीत छोड़ भी नहीं सकनी इनको तुले हिट त्यार गीत ले हिटाल गुंजाल गीत नाटक प्रभाग में। महाराज मैं चौकीदारी के प्रणाम कर भीर जंगल के सलाम कर भीर गीतू हाथ थमो छो लाग गयू बाट।

0: रिद्धि जू मैं लाट नैनीताल हूँ, वो आदिम बन गो डायरेक्टर,
1: अच्छा,
0: और मैं बन गो कलाकार, हाथ जोड़ू आदिम ब्रजेंद्र लाल हूँ, पांच रुपए रोज और 150 रुपए महावार,
1: अच्छा,
0: दीदार शेरू बन गो कलाकार,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: गीते लिभेर पैद हयूं, गीते दे जल दूध में, गीते लिबेर घूमी खा, गीते छी भाग में, और गीत पूजन पूजने पूज गए महाराज गीत नाटक प्रभाग में।
1: वाह वाह वाह शेरदार, ये तो बात गए अपन की गीत नाटक प्रभाग में आपको पहुँच गया। अच्छा ये बताओ, तुम रेडियो में ले मन मस्त प्रोग्राम दी, और कब तुम पहली प्रोग्राम दे रेडियो में कशिक दी, जरा ये बार मैंने हमारे श्रोता सुनन चाहनी तुम्हारा मुखल।
0: पीड़ का किस्से कहाँ सुने रो, दुख सुख लाख लगने रो, मेरी पहाड़ी जनता सुनो आगे लिखे मेरी कहानी की, उपरेदी जो पूछने में सुनते कहते जानो नौक भल जस छू तुम लाख लगने रहा तो अब नछा कशिक पूजू मैं
1: रेडियो
0: रेडियो। महारा 30 जनवरी 1970,
1: अच्छा तारीख याद छू,
0: तारीख याद छू बिल्कुल, किले एक मान लीजिए तो रेडियो बड़ी बहुत विचित्र बात है उस जमाने में,
1: हाँ।
0: और पहले तो 30 जनवरी 1970 कवि सम्मेलन में पूछ गो,
1: अच्छा।
0: महात्मा गांधी पुण्यतिथि सी 30 जनवरी
1: हो,
0: तो कवि सम्मेलन में पूछ गई हूँ दर्जनों गीत कविता लिवेर, ओ परवा बौजूद गए घर घर छ गई हूँ, बीना तिवारी विमल पंत चंद कला जोशी दगे गीत गहने रही,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: गीतुमणि रम गई हूँ परिवार के लिए भूल गई हूँ,
1: अच्छा।
0: नानतिन एक ले निभे गीतों को नहीं नानतिन समझन फे गई,
1: हाँ हाँ शेरदा क्या बात,
0: गीतों को नहीं,
1: वाह वाह वाह,
0: हाँ
1: बहुत बड़ी बात,
0: गीतों को नहीं नानतिन समझन फे गई हूँ, गीते म्यार घर बार है गई, गीते म्यार मैं बाप है गई, गीते लिभेर गोंगो पूजू, गीते लिभेर घर घर पूजू, काथ कुड़ किस कैसीट बुलान फे गई, अनपढ़ शेरदा के उपरेदी पढ़ी लिखी तुम्हारे जा पहचान फे गई,
1: वाह वाह वाह क्या बात है शेरदा। तो शेरदा अब हिटने हिटने कुछ जानकारी और देते जाओ, एक भली भली ताजी ताजी एक कविता ले सुनाते जाओ, लेकिन वह पहले ये बताओ कि आज तक तुम कदू गीत कविताओं किताब लिखी उन्होंने किके छू, और साथ में ये बताओ कि तुमन के आज तक कदू पुरस्कार मिली छन।
0: आज तक जो ले मेरे भगवान ने मेरे पर कृपा करी, थोड़ा बहुत मैं जो लिख पाऊँ कुछ किताब, ये कहानी नेपाल लद्दाखे, दीदी बहनी,
1: अच्छा,
0: हंसने बहार, मेल लटपट, जाठी घुंगूर और फचैक
1: फचैक,
0: तो इनमें मिल ये कहानी नेपाल लद्दाखे में फौजी जिंदगी पर लिखी,
1: अच्छा।
0: जो नेपाल लद्दाख में लोग बाग घायल है गया थी,
1: अच्छा,
0: जनू दुश्मन तक लड़ते लड़ते अपन जान चढ़े दी, दीदी बनी किताब हमारे पूना में बाजार में बैठी कोठा में बैठी मैं बहनिया बार में छू, उन्हों दुखी जीवन देख भेद में उन्हों दीद बहनिया दुख सुख में लिखो, तो दीदी बनी किताब,
1: अच्छा।
0: हंसने बहार हमारे पहाड़ में दुख ज्यादा हूँ सुख कम हूँ, तो मिल लोगों मनोरंजनल जी और दुख बेमनल जी, और उनमें हल्का फुल्का गीत कविता दिवेर हंसने बाहर किताब लिखी, मेल लटपट किताब।
2: धरोहर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रख्यात कवि शेर सिंह बेस्ट अनपढ़ से बताओ शेरदा तुमूल कविता कशी करी विषय पर शंकर उप्रेती की भेंट वार्ता, इसी के साथ धरोहर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, रात्रि के 10 बजे
3: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
4: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
3: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है।

0: 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूड़ियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: Shri Margi Madhu is one of the foremost exponents of Koodiyattam, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Mulikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Mulikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Mulikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarb Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarb Divya Pashupatastra Ki Prapti Ke Liye पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Shri Margi Madhu. Kiratam, author Melpatur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: Dear listeners, you have just heard the Chakyar Kutha presented by Shri Margi Madhu and party. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur.
0: Kshetriya Lok evam Sugam Sangeet ki Akhil Bharatiya karyakram ki agli prastuti mein hum aapke liye Shri Amal Antony dwara prastut Malayalam Sugam Sangeet lekar aaye hain. Shri Amal Antony ek parshva gayak, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani, a gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions. Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. In charum geetom ke bol, Malayalam ke prasidh film geetkar evam kavi Shri Rafiq Ahmed ne likhe hai. इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: टुनाइट श्री अमल एंटनी प्रेजेंस

0: मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yawning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: फर्स्ट लव इज एन एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इन द हार्ट। इट इज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी, ड्रीम्स, होप्स एंड इनोसेंट इमोशंस। Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishchika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: In the national program of regional folk and light music, you were listening to a presentation of Malayalam light songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T.S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K.X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C.N.K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है, तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
2: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many